एफएम बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। श्रोताओं, आज मंगलवार है। शक संवत 1948 की श्रावण माह की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। हिंदी समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा है कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांग पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार 3 स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी संदीप सिक्का से भी मुलाकात की। उन्होंने खुदरा निवेश बढ़ाने और भारतीय बाजारों में वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के अवसरों पर चर्चा की। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा के कारण कल 87 सड़कें

0: अवरुद्ध हो गई और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु इसमें फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती खुंदीवाली मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है। सोरेन जिले में चक्की मौर के निकट भूस्खलन से कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। मौसम विभाग ने बिलासपुर कांगड़ा मंडी और सिरमौर जिले में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। राज्य आपदा कार्रवाई केंद्र के अनुसार कुल्लू में सबसे अधिक 33 सड़कें बंद की गई हैं, मंडी में 27 और शिमला में 9 सड़कें अवरुद्ध हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई। वहीं महिला डबल्स में कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को 22-20, 21-14 से हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। वहीं उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार हुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्य और अमृता प्रमुरिये तुर्की के एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्टा से मुकाबला करेंगे। FIH महिला हॉकी विश्वकप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। दक्षिण अफ्रीका अपने पहले मैच में इंग्लैंड से 4-0 की हार के बाद वापसी की कोशिश करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए पेश है देश वंदना और भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। प्यारा प्यारा मेरा देश, सबसे न्यारा मेरा देश, दुनिया जिस पर गर्व करे वो जगमग सितारा मेरा देश।

जगजीत सिंह और साथियों का गाया भक्ति गीत आपने सुना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, सावन के आगमन के साथ ही प्रकृति भी शिवमय हो उठती है। वर्षा से धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, खेत लहलहाने लगते हैं और पूरा वातावरण नवजीवन का संदेश देता है। ये हरियाली भगवान शिव की कृपा, समृद्धि और पुनर्जागरण का प्रतीक है।

ब्रज सरोरी और साथियों का गाया भक्ति गीत आपने सुना। इसे लिखा था ब्रज सरोरी ने और संगीत तैयार किया था गोविंद पैत्री ने।

पंडित सुखदेव और गोपाल शर्मा का गाया भक्ति गीत आपने सुना। रचना थी पंडित रामानंद शर्मा की और संगीत तैयार किया था मुरली मनोहर स्वरूप ने। और इसी के साथ आज की आराधना संपन्न हुई। FM बैंड 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। खेती की बात कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है, ट्रैक्टर खरीदने से पूर्व किसानों के लिए जानकारी, और इस जानकारी का वाचन किया है अभिनव गौरहानी।

किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। का हाल चाल है, कैसन हा भाई? आजकल के खेती में ट्रैक्टर के उपयोग बड़ा जरूरी हो गए है। आज हमार खेती के हर काम बूता में ट्रैक्टर और ओखर अन्य उपकरण से ही हमार खेती हो पाते है। चाहे खेती किसानी में खेत के काम हो, चाहे जिनिस मल्ला डोहारे के काम हो। लेकिन कभू कभू कई पैत का होते, हम ट्रैक्टर एजेंसी में जाके ओखर मीठ मीठ बात मन में फंस जाथन। तो सात ऐसन जागरूकता के बात बताहो जेखर से आप मन अगर ए चीज में काम कर ले हा, तो ट्रैक्टर खरीदे जहा पहली पैत तो आप मन कुछ फायदा बचा के ही आहा। तो सबले पहली जानकारी आप मन ला दे हो कि बिना जानकारी के हमन ला कोनो भी ट्रैक्टर के शोरूम में नहीं जाना चाहिए। कई पैत का होते किसान मन बिना तैयारी के ऐसा है पहुंच जाते और जौन जौन ओमन कही थे ओकर झांसा में आ जाते। भले ही गांव के मनखे अपन गांव में शेर रही थे, लेकिन दूसर के आगो में ओमन ओखरे बात ला सुनल पड़ जाते। त आप मन ला यही कहबो कि पहली पेपर, स्थानीय प्रचार के माध्यम और अलग अलग कंपनी के ऑफर, कीमत और डिस्काउंट के जानकारी ले लेना है, ओकर बाद ही हमन ला एजेंसी में जाना है। दूसर बात, ट्रैक्टर के जरूरत और बजट के सही अनुमान लगाना। कई पैत किसान अपन जरूरत से ज्यादा ताकतवर और महंगा ट्रैक्टर ले लेते, जेखर से उखर जेब में बोझ पड़ते चे डीजल के खपत घलव ज्यादा होते। एखर बर पहले तय करना है कि आप मन के खेत के जमीन कैसन है, आपके गांव के जमीन कैसन है और कतका हार्स पावर के कतका मजबूत ट्रैक्टर आप मन ला लेना है। तीसर बात होते, ट्रैक्टर खरीदत खानी मोल भाव जरूरी है। भाई जब हम साग खरीदथन तब मोल भाव करथन तो अतका बड़ हम जब

0: मशीन लेथन तो मोल भाव करना बड़ जरूरी है। बहुत जी किसान भाई मन ट्रैक्टर के बताए कीमत में ही फाइनल मान लेते, जबकि असल में ट्रैक्टर के कीमत में बढ़िया मोल भाव करे ले हम मन लाभ मिल सकते है। शोरूम के जिन सेल्समैन होते ओखर से खुल के बात करना है और ज्यादा से ज्यादा छूट के मांग हम करना है। चौथैया बात जिन होते गारंटी वारंटी से जुड़े जिन सवाल है ओला पूछना। जानकारी हम नहीं लेवन वहाँ ओखर मीठ मीठ बात में आ जाथन, बाद में कुछ परेशानी होते तो बाद में बोलते कि भाई एला तो हम अपन ला बताए रहें, तब फोरिया के हमन ला कुछ भी जब जिनिस लेथन ट्रैक्टर लेथन तो मैं कौन कौन चीज में कौन कौन पार्ट में वारंटी है गारंटी है सर्विसिंग कैसे हो ही लिखित में हमन ला ले लेना है। पांचवा बात आप मन ला बताए बीमा के पूरा जानकारी लेना है। नवा ट्रैक्टर खरीदत समय ओखर बीमा जरूर कराना है। शोरूम में बीमा एजेंट के नंबर लेके रखना है। बीमा से जुड़े जम्मो बात ला समझना है, जैसे बीमा क्लेम कैसे करे जाही, कौन परिस्थिति में बीमा रिजेक्ट हो सकत है ताकि भविष्य के नुकसान से हमन बचे रही और सुरक्षित रही। छठवा बात अपन ला बताबो अपन असली बजट जौन आपके बजट है चाहे 5 लाख 6 लाख 10 लाख ओला शोरूम वाले ला नहीं बताना है। अगर आप शोरूम ट्रैक्टर एजेंसी वाले ला अपन सही बजट बता दे हा तो आप मतलब वही हिसाब से महंगा मॉडल और एक्स्ट्रा फीचर वाले जिन ट्रैक्टर है ओला बेचे के कोशिश करिए। एकर बर अपन बजट थोड़कन कम बताना चाहिए और खुद ला ओ बजट मा ट्रैक्टर खरीदे तक सीमित रखना है। सातवा और आखिरी बात सबले जरूरी बात कि पुराना ग्राहक और मिस्त्री मन से ट्रैक्टर खरीदत थन तो राय जरूर लेना है। कई पाई ट्रैक्टर दिखे में अच्छा लगते बढ़िया चिकन चिकन रही थे ऊंच रही थे लेकिन असल मोखर परफॉर्मेंस खेत मा या ढुलाई मा कैसन है ओखर जानकारी आप मन ला पुराना जन किसान है या पुराना ट्रैक्टर ओ ट्रैक्टर उपयोग जन करत है ओह देही या फिर जन ट्रैक्टर मिस्त्री है ओ मन देही ओही सलाह में ही आप मन ट्रैक्टर के असली ताकत ला पहचान पाहा और ओखर कमजोरी ला भी जान पाहा। तो ये 7 बात के चेत आप मन ला करना है। ट्रैक्टर नहीं कोनो भी चीज ला खरीदे जाई हमन ला ये सब चीज के जानकारी हो तबे हमन ला लाभ मिल पाए। तो संगवारी हो किसान भाई हो कल फिर नवा विषय संग मैं आहो, तब तक राम राम जय जोहार।
1: कार्यक्रम खेती की बात में अभी आप जानकारी सुन रहे थे, विषय था ट्रैक्टर खरीदने से पूर्व किसानों के लिए जानकारी और इस जानकारी का वाचन किया था अभिनव गौरहा ने। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायक कलाकार हैं श्रीकांत पारगांवकर और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया।

चित्रकूट की महिमा का बखान कर ऋषि वाल्मीकि ने उसे सभी प्रकार से निवास के योग्य स्थान बताया। लक्ष्मण ने पयस्विनी नदी के उत्तर वाले ऊंचे कागार की ओर दृष्टिपात किया, जिसे अपने घेरे में लिए हुए धनुष के आकार का एक नाला था। मंदाकिनी नदी मानो उसकी प्रत्यंचा है और शम, तम और दान उसके बाण हैं। कलयुग के समस्त पाप ऐसे हिंसक पशु हैं जिनका निशाना चित्रकूट रूपी शिकारी कभी नहीं चूकता। जब देवताओं को यह प्रतीति हुई कि वो मनोरम स्थान श्री राम के मन को भा गया, तो वे कोल भीलों के वेश में विश्वकर्मा सहित वहां पहुंचे और पत्तों तथा घास से वहां अत्यंत सुंदर दो कुटियों का निर्माण किया।

श्री राम वहां ऐसे अवस्थित हैं मानो स्वयं कामदेव मुनि वेश धारण करके पत्नी रति तथा सखा ऋतुराज वसंत के साथ सुशोभित हैं। देवलोकवासी चित्रकूट आकर अपने स्वामी के दर्शन करते हैं।

0: रामचरितमानस का गायन अभी आप सुन रहे थे। मुख्य गायक कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। चिंतन कार्यक्रम में आज सुनिए आस्था और अनास्था विषय पर सुश्री निशा रहटगांवकर का आलेख।
1: आस्था अनास्था के बीच झूलते रहने से इंसान के लिए यही अच्छा होगा कि वो घटनाओं से कुछ या बहुत कुछ सीखने का प्रयत्न करें। हमें ये नहीं देखना है कि घटना सत्य पर आधारित है या कपोल कल्पित। हमें ये देखना होगा कि उस घटना का सार हमें क्या शिक्षा देता है और हम उससे क्या सीख सकते हैं। समाज या मानव को हम उससे क्या दे सकते हैं। राम को हुए और रामायण जैसा महाकाव्य की रचना को लगभग 7,000 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, परंतु उस समय की घटनाएं आज भी चर्चा में रहती हैं और मानव समाज को एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ के शतकोटि श्लोकों की अद्वितीय रचना की, जिसके कारण मनुष्य के मन में उसे पढ़ने और जानने की

इच्छा बलवती होती गई। हर किसी को रामायण प्राप्ति की धुन लगी। जब इस ग्रंथ की रचना पूर्ण हो गई तो इसके स्वामित्व को लेकर देव, दानव और मानव तीनों में घमासान मचा। हर कोई अपने अपने तर्क के आधार पर अपना हक जताने लगे। मानव ने अपने पक्ष में तर्क दिया कि श्री रामचंद्र जी यद्यपि साक्षात भगवान हैं, परंतु चूंकि उन्होंने मानव रूप में अवतार लिया है, इसलिए रामायण पर पहला अधिकार हमारा बनता है। इसके विपरीत देवों का प्रतिपादन था कि भले ही भगवान राम ने मानव के रूप में अवतार लिया हो, परंतु है तो उनमें भगवान विष्णु का ही अंश। इस आधार पर रामायण पर संपूर्ण अधिकार देवों का ही है। दानवों का तर्क था कि रामायण का केंद्र बिंदु चूंकि दैत्य राज रावण है, सारी रामायण उसके ही इर्द गिर्द घूमती है। इस प्रकार इस पर तो सिर्फ दानवों का ही अधिकार हो सकता है, दूसरे का हक

0: दानवों का तर्क था कि रामायण का केंद्र बिंदु चूंकि दैत्यराज रावण है, सारी रामायण उसके ही इर्द गिर्द घूमती है। इस प्रकार इस पर तो सिर्फ दानवों का ही अधिकार हो सकता है, दूसरे का हक दावा करना निरर्थक है। तीनों वर्गों में वाद विवाद सुलझने की बजाय बढ़ता ही गया। स्वयं ब्रह्मदेव को भी ये कहना पड़ा कि इस विवाद का हल मेरे पास नहीं है, आप सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाइए, वे अवश्य कोई ना कोई समाधान कारक हल अवश्य निकालेंगे जो तुम सभी को मान्य होगा। महादेव ने कहा कि तर्क तो तीनों का ठीक है, इसलिए इसके समाधान का हल एक ही है कि तीनों को समान वितरण होना चाहिए। रामायण की रचना शत कोटि श्लोकों की है, यदि इसे तीन में समान रूप से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक के हिस्से में 33,33,33,333 श्लोकों की प्राप्ति होती है। मैंने समान विभाजन कर दिया है, अब केवल एक श्लोक शेष बच गया है जिसमें 32 अक्षर हैं। यदि 33 होते तो मैं तीनों में बराबर 11-11 बांट देता, विवाद भी सुलझ जाता। अब मैं एक काम करता हूं, 10-10 तुम तीनों को बांटकर शेष 2 अपने पास रख लेता हूं। देव दानव और मानव राजी हो गए। महादेव ने 2 अक्षर राम को अपने पास रखकर तीनों को न्याय प्रदान किया। इस राम शब्द का महत्व ही इस घटना का सार है। राम ही तारेगा, राम ही वारेगा।
1: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप आस्था और अनास्था विषय पर सुश्री निशा रहटगांवकर का आलेख सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त होता है कार्यक्रम विवरण का। सुबह 8:30 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम मोर भुइया। रायपुर केंद्र से ही सुबह 10 रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। रायपुर केंद्र से ही शाम 7:30 पर रिले करेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम आज सुबह सुनिएगा सुबह 7:05 पर। सदाबहार नगमे सुबह 7:30 पर और नए तराने कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे सुबह 9 से 9:55 तक, 11:30 से 11:55 तक, 12 से शाम 5 तक और फिर रात 9:15 से रात 11 तक।

प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रसारण समय सुबह 11 बजे। एक और प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ आप सुनेंगे शाम 5 बजे। शाम 5:05 पर भुइयां के बोली कार्यक्रम में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति संघर्षों की भूमिका। इस विषय पर डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा की वार्ता, प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी। महिला सभा कार्यक्रम में शाम 5:35 पर सामयिक चर्चा का विषय तस्वीरों में जिंदगी। साथ ही सुनिएगा क्रम कौशल विकास, प्रस्तुति मोनाली ठाकरे की होगी। ईमेल करें, गीत सुने शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा।

0: हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर बता दें, शाम 5:05 पर भुइया के बोली कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा की वार्ता, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति संघर्षों की भूमिका। प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी। महिला सभा कार्यक्रम में शाम 5:35 पर सामयिक चर्चा का विषय होगा तस्वीरों में जिंदगी। साथ ही सुनेगा क्रम कौशल विकास। प्रस्तुति मोनाली ठाकरे की होगी। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत समाचार आकाशवाणी दिल्ली से
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ता। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह संसूचितवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे प्रशासनेन स्वातन्त्र्यदिवसात् पूर्वमेव आईएसआई इत्येतत् समर्थितं शहजाद भट्टी आतंकिजालं ध्वस्तीकृतम्। सः सूचितवान् यत् प्रशासनेन द्विशताधिकान् सदस्यान् गृहीत्वा तस्य विध्वंसात्मकाक्रमणानां योजनाः अपि विफलीकृताः। सामाजिकसञ्चारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे सः उक्तवान् यत् सुरक्षाबलैः 14 राज्याणां विभिन्नेषु स्थलेषु समन्विताभियानानि प्रचालितानि, यैः एतत् जालं ध्वस्तीकृतम्। एतत् भारतस्य आतंकवादं प्रति शून्य सहिष्णुतायाः उत्कृष्टम् उदाहरणमस्ति। सुरक्षा संस्थाभिः अस्य मासस्य 12 दिनांके राज्यारक्षिबलैः सह तत्क्षणं गुप्त सूचनानां आदान प्रदानस्य प्रणाल्याः उपयोगं कृत्वा शहजाद भट्टीजालेन सम्बद्धानां विध्वंसात्मक प्रयासानां प्रतिरोधाय समन्वितं बहुराज्यीयम् अभियानं प्रचालितम्। एतत् जालं विविधेषु आतंकिकार्येषु संलग्नम् आसीत्। झारखण्डे जेपीएससी अथ जेएसएससी चेत्येतयोः परीक्षयोः अभ्यर्थिनां 24-दिवसीय विरोध प्रदर्शनस्य अनन्तरं राज्यप्रशासनेन 24-2000 वर्षस्य जेएसएससी सीजीएल परीक्षा अथ च टीडीपीएल संस्थया आयोज्यमानाः सर्वाः प्रतियोगी परीक्षाः निरस्ताः। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ह्यः सायं विशेष मंत्रिमंडलोपवेशनस्य अध्यक्षतां कृत्वा एतत् निर्णयं उद्घोषितवान्। राज्य प्रशासनेन 14-2000 वर्षादारभ्य झारखंड लोकसेवायोगेन अथ झारखंड कर्मचारी चयनायोगेन च आयोजितानां नियुक्ति परीक्षाणां व्यापक परीक्षणस्य अपि आदेशः प्रदत्तः। किन्तु छात्रनेता पीयूष कुमारः उक्तवान् यत् 11-13 पर्यन्तानां जेपीएससी परीक्षाणां तथा केन्द्रीयान्वीक्षणाभिकरणस्य अन्वेषणात् सम्बद्ध प्रदर्शनकारिणां याचनाः अद्यापि विचाराधीनाः सन्ति। प्रदर्शनकारिणः छात्राः उक्तवन्तः यत् ते स्वीया अवशिष्ट याचना विषये चर्चां करिष्यन्ति तथा अग्रिम कार्याचरण विषये अपि निर्णयं करिष्यन्ति। दिल्ली प्रशासनेन चरणबद्धरीत्या स्नातक स्नातकोत्तर अतिविशेषज्ञता स्तरीय चिकित्सकीय शिक्षा संस्थानानां संख्यां वर्धयित्वा राष्ट्रिय राजधान्यां

0: चिकित्सा शिक्षायाः क्षमतां वर्धयितुं सज्जः अस्ति। अस्य योजनायाः अन्तर्गतं प्रशासनेन त्रिमुखी कार्यनीतिः स्वीकृता अस्ति। अस्यां नवसंस्थानां संस्थापना, विद्यमानसंस्थानां विस्तारः तथा स्नातकोत्तर उन्नत चिकित्सकीय कार्यक्रमाणां विस्तारश्च सम्मिलिताः सन्ति। केरले विजिंजम समुद्रपत्तनात् प्रत्यक्ष निर्यातः आयातश्च अद्य आरभ्यते। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन प्रातः पादोन एकादशवादने सेवायाः उद्घाटनं करिष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य झारखण्डे अतिवृष्टिमालक्ष्य रक्तवर्णपरा संचेतना प्रसारिता। ऋतुविभागेन अद्य बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्व मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिमोत्तर प्रदेशानां च विभिन्नेषु भागेषु अतिवृष्टेः संभावना पूर्वानुमानिता। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य आयुष शेट्टी नवदिल्ल्यां आयोजितायां BWF बैडमिंटन विश्वस्पर्धायां पुरुषाणाम् एकलवर्गस्य प्रथमचरणे विश्वस्य प्रथमक्रमांकितं वर्तमान विजेतारं च चीनदेशीयं शी यू क्यूई इत्येनं पराजित्य विजयम् अवाप्तवान्। तत्रैव पीवी सिंधुः तथा महिलानां युगलवर्गस्य भारतीय युगलं त्रिसा जौली गायत्री गोपीचन्दः अपि द्वितीय चरणे प्रविष्टे। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांगों पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार तीन स्तरीय प्रयास करेगी, जिनमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती हुई भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की परंपरा वर्ष 1950 में शुरू की गई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज बारिश के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती खुंदीवाली के मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का एक अस्थायी पुल बनाया। मौसम विभाग ने बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में आज अत्यधिक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का

0: अनुमान है। नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष सेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को हराकर एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी अब दूसरे दौर में पहुंच गईं। महिला डबल्स में कवि प्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुडा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेट हजार थुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्या और अमृता प्रमथेश तुर्की के एमरेसोन मेज और यासिमेन बेक्टास से मुकाबला करेंगे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त बना ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे। आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

0: आज सुबह।
1: श्रोताओं, सावन का पवित्र महीना प्रकृति, आस्था और अध्यात्म का अनूठा संगम माना जाता है। वर्षा के साथ साथ चारों ओर छाई हरियाली जहां मन को सुकून देती है, वहीं धार्मिक दृष्टि से भी ये विशेष महत्व रखता है। श्रोताओं, सावन केवल पूजा पाठ और व्रत उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के संरक्षण का संदेश भी देता है। हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए हम और आप पौधरोपण का काम जारी रखें और हरे भरे मौसम की इस सुहानी सी सुबह में आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आज सुबह में। और आज मैं हूं आपके साथ सीमा साहू।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए करते हैं दिन विशेष की चर्चा। आज का दिन है कभी हार ना मानने का दिवस। कभी हार ना मानने का दिवस हर साल 18 अगस्त को यानी आज के दिन विश्व स्तर पर मनाया जाता है। श्रोताओं, ये विशेष दिन मानवीय दृढ़ता, आंतरिक शक्ति और जीवन में कठिन समय में भी आगे बढ़ते रहने के साहस को समर्पित है। यह दिवस उन लोगों को सम्मानित करता है जो कठिन समय का सामना करते हैं और हार मानने से इनकार करते हैं। श्रोताओं, ये दिवस हर किसी को प्रयास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, चाहे प्रगति कितनी भी धीमी क्यों ना लगे। श्रोताओं, इस दिवस को मनाने के कई तरीके हैं। एक छोटा या बड़ा

लक्ष्य लिखें और उसे पूरा करने का संकल्प लें। कोई पुराना लक्ष्य जिस पर आपने काम बंद कर दिया था, आज उसकी ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाएं। ज़रूरतमंद ऐसे किसी मित्र को दयालु शब्द या संदेश भेजें जिसे किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

श्रोताओं, स्वतंत्रता दिवस का आगमन केवल उत्साह और उमंग के क्षण ही उपलब्ध नहीं कराता, बल्कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के संघर्ष और बलिदान की भी याद दिलाता है। और ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी को आज हम याद करते हैं, वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म कटक में हुआ था। इन्होंने ICS की परीक्षा पास की, लेकिन देश सेवा के लिए नौकरी छोड़ दी। स्वामी विवेकानंद के विचारों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया और कई नारे दिए जो प्रसिद्ध हुए, जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। श्रोताओं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के संघर्ष के क्रांतिकारी नायक थे। उन्होंने अपने साहस और लड़ाकू तेवर से अंग्रेजों को आश्चर्यचकित कर दिया था। उनके भाषण बहुत प्रेरणादायी होते थे। जीवन में प्रेरणा का संचार करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में 23 जनवरी को हुआ था और 1945 में आज ही के दिन यानी 18 अगस्त को ताइवान के ताइपे में एक विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। आज उन्हें हम याद करते हैं।

0: श्रोताओं, सड़क पर सुरक्षित यातायात केवल यातायात नियमों के पालन से ही संभव है। थोड़ी सी लापरवाही न केवल आपके लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसलिए नियमों का पालन आवश्यक है। और इस संबंध में प्रतिदिन आपको अवगत कराते हैं ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर में, तो आइए सुनिए आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: सुप्रभात, मैं हूं उमाशंकर पांडे। अब आप सुनेंगे आज की यातायात व्यवस्था पर आधारित हमारा दैनिक प्रसारण ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के शहरी क्षेत्र की सभी सड़कों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहनों का स्वतंत्र आवागमन बना हुआ है। यात्री एवं माल परिवहन बड़ी आसानी से हो रहा है। स्पष्ट है, संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। इसी प्रकार सुगम आवागमन के लिए आप सभी से अपेक्षा है, जब भी सड़कों में हो, किसी भी वाहन के साथ हो, धैर्य रखें, वाहन की गति में संयम रखें और यातायात नियमों का सदैव सम्मान करें। मित्रों, जिस प्रकार हमारी सुरक्षित यात्रा के लिए वाहनों का पूर्ण स्वस्थ होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक वाहन चालक को भी हमेशा तन एवं मन से स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। यदि स्वास्थ्य खराब है, शरीर के किसी भाग में दर्द है जिससे वाहन चलाने में कष्ट हो रहा है, तब मजबूरी में वाहन मत

0: चलाइए, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव कुशल वाहन चालन पर पड़ता है और ऐसी स्थिति में वाहन चालन खतरे से खाली नहीं है। ठीक इसी प्रकार यदि मन ठीक नहीं है, मन में किसी प्रकार का तनाव है, घर परिवार के किसी सदस्य अथवा ऑफिस में या अपने अधिकारी या मालिक से कोई विवाद हुआ हो, जिससे मन आंदोलित हो, मन में कुविचार आ रहे हो, वाहन चालन में पूरा पूरा मन ना लग रहा हो, तब जबरन या विवशता में वाहन मत चलाइए, क्योंकि ऐसी यात्रा सुरक्षित होगी इसमें 100% संदेह है। यदि वाहन लेकर जाना अति आवश्यक है तो कुछ क्षण रुकिए, ठंडा पानी पिए, अपने छोटे बच्चे की याद करें और सहज संभव हो तो उससे बातें भी करें। यदि नियमित कोई दवा लेते हैं तो वह भी लीजिए, देखिए कुछ ही क्षण में सब सामान्य हो जाएगा। तब यदि मन की अनुमति हो तो जाइए अपना वाहन लेकर। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये था आज का ट्रैफिक अपडेट। श्रोताओं, विजय लक्ष्मी पंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया है। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने आज़ादी के लिए आंदोलनों में भाग लेना आरंभ कर दिया। वह हर आंदोलन में आगे रहती, जेल जाती, रिहा होती और फिर आंदोलन में जुट जाती। 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली वह विश्व की पहली महिला थी। वे राज्यपाल और राजदूत जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर रही। सन 1900 में आज ही के दिन जन्म हुआ था भारतीय राजनीतिज्ञ विजय लक्ष्मी पंडित का।
2: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: श्रोताओं, संदीप मधुसूदन पाटिल यानी संदीप पाटिल एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं जो अपनी आक्रामक और स्टाइलिश बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वे दाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज और मध्यम गति के गेंदबाज थे। 1983 की भारत की ऐतिहासिक विश्व कप जीत में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई उनकी शानदार पारी शामिल है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बॉब विलीज के खिलाफ एक ओवर में लगातार 6 चौके जड़ने का उनका कारनामा काफी प्रसिद्ध रहा है। उनके मार्गदर्शन में केन्याई क्रिकेट टीम ने 2003 के विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा था। उन्होंने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने 1985 की हिंदी फिल्म कभी अजनबी थे में अभिनय भी किया और उनकी आत्मकथा सैंडी स्टार्म काफी चर्चित रही। 1956 में आज ही के दिन यानी 18 अगस्त को जन्म हुआ था भारतीय क्रिकेटर संदीप पाटिल जी का। उन्हें शुभकामनाएं आकाशवाणी के बिलासपुर परिवार की ओर से।

0: घराने के उस्ताद राहत अली खां से संगीत सीखने के बाद 1995 में उनका पहला पॉप एल्बम बोले तारा रारा रिलीज़ हुआ, जो सुपरहिट रहा। उसके बाद कई गाने जैसे दर्दी रब रब, हो जाएगी बल्ले बल्ले और तुनक तुन जैसे गानों ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। इनका असली नाम दलेर सिंह था। उन्हें संगीत से अत्यधिक लगाव रहा। प्रसिद्ध गायक परवेज मेहंदी की गायकी से प्रभावित होकर इन्होंने अपना नाम दलेर मेहंदी रख लिया। बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी उन्होंने गाने गाए जो कि लोकप्रिय हुए। 1967 में आज ही के दिन जन्म हुआ था गायक कलाकार दलेर मेहंदी का।
1: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
0: श्रोताओं, संपूर्ण सिंह कालरा यानी गुलजार हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। इसके अलावा वे कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार और प्रसिद्ध शायर हैं। उनकी रचनाएं मुख्यतः हिंदी, उर्दू और पंजाबी में हैं, परंतु ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मारवाड़ी और हरियाणवी में भी इन्होंने रचनाएं की हैं। 2002 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है और वर्ष 2009 में डैनी बॉयल निर्देशित फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में उनके द्वारा लिखे गीत जय हो के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीत का ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। इस गीत के लिए उन्हें ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1934 में आज ही के दिन जन्म हुआ था प्रसिद्ध गीतकार और शायर गुलजार का। उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं आकाशवाणी परिवार की ओर से। और आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते सुन लेते हैं उन्हीं का लिखा ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, भारत के पंजाब प्रांत के लोक गायक दलेर मेहंदी, जिन्हें भारत में किंग ऑफ भांगड़ा और पॉप संगीत को वैश्विक पहचान दिलाने वाले प्रमुख कलाकारों में गिना जाता है। इनका जन्म बिहार में एक संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। इन्होंने कम उम्र में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। पटियाला

0: इसी के साथ कार्यक्रम आज सुबह बस यहीं तक। आज्ञा दीजिए सीमा को।
1: आज सुबह।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा भक्ति गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में। संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और फिल्म थी सत्यम शिवम सुंदरम। सदाबहार नगमे इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
3: अरे ये

0: सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

0: तेरी मेहरबानियाँ फिल्म का गाना आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। गीत लिखा था SH बिहारी ने, धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज
5: और सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
4: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।

0: आपकी कसम, इस फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों के स्वर में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की थी राहुल देव बर्मन ने। सदाबहार नगमे इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
4: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण का गाया भैरवी फिल्म का गाना आपने सुना। इस गीत को लिखा था अमित खन्ना ने और धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इसी के साथ सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM बैंड 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 8 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात और उसके बाद मॉर्निंग न्यूज़ हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
4: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए, जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बुझने के बाद कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
3: और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद जेएससी सीजीएल के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल

0: बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने यह सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमरीका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमरीकी कांग्रेस से सेव गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। ये प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनाव में मतदान के लिए और अधिक सख्त नियम लागू करने की मांग करता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट।
1: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, कराईकल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलम और माहे में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तेज वर्षा जारी है। राज्य में कल अधिकांश स्थानों पर बहुत तेज बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 994 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आंध्र प्रदेश के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कोनासीमा जिले से मछुआरों को ले जा रही मछली पकड़ने की एक नौका समुद्र

0: में लापता हो गई है। ये मछुआरे इस महीने की 3 तारीख को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और उन्हें 10 दिन के भीतर वापस लौटना था। उनके वापस न लौटने पर परिवार वालों ने अधिकारियों को सूचना दी। तटीय पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। केरलम में विझिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन आज इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट।
1: विझिंझम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विझिंझम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम स्मिति एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे और आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की।
2: नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी चीन के शी यू की को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पाउला पेज और लूसिया रोड्रिगेज को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में ये जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा और झारखंड में छात्र आंदोलन के असर के समाचार छाए हुए हैं। पंजाब केसरी के मुख्य पृष्ठ पर पहला समाचार है, अब नितिन की नवीन टीम। पत्र ने उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, महासचिव स्मृति ईरानी और कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल के चित्र भी सबसे ऊपर प्रकाशित किए हैं। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, भाजपा की नवीन टीम 12 महिलाएं, 7 अल्पसंख्यक और 6 नए महासचिव। जनसत्ता में इस समाचार की सुर्खी है, माधव और ईरानी की वापसी, अमित मालवीय की हुई छुट्टी। हिंदुस्तान का शीर्ष समाचार है, टीम नवीन में जोश होश का मेल। नवभारत टाइम्स ने झारखंड के घटनाक्रम को पहला समाचार बनाया है, कई फजीहतों के बाद NTA ने बदली अपनी टीम, 600 एक्सपर्ट्स हटाए। पत्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को बॉक्स प्रकाशित करते हुए आंदोलनरत छात्रों की तस्वीर भी प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चित्र सहित इस खबर को शीर्षक दिया है, झारखंड आउटसोर्स एजेंसी की 2014 से अब तक कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। राजस्थान पत्रिका ने रेल यात्रियों की सुविधाओं की उपेक्षा और अनदेखी को संपादकीय का विशेष बनाया है। पत्र कहता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं। सवाल सिर्फ पानी के पीने का साफ होने का नहीं है, यात्रियों की दूसरी सुविधाओं की भी समयबद्ध जांच और सतत निगरानी करनी चाहिए, चूंकि यात्री सुविधाओं कोई भी अनदेखी चिंताजनक है। लोकसत्ता ने

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के ए अंक में आप सभी श्रोता साथी मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम महेंद्र साहू के तरफ ले। श्रोता साथी हो, आज मोर भुइया में क्रम है हमर संस्कृति हमर साहित्यकार। और एक क्रम में जैसा कि आप मन जानता हो कि हमर जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं जीवन छत्तीसगढ़ी में रचना करत हैं, ऐसे साहित्यकार मल्ला हमन आमंत्रित करथन और ओमन के जो साहित्यिक यात्रा है और छत्तीसगढ़ी भाखा ला बगराए के जो उद्यम करते हैं वो सब ला हमन जाने के प्रयास करथन। तो यही कड़ी में आज हमन आमंत्रित करे हन महंत पोखन दास मानिकपुरी जिला, आप ग्राम बिरकोनी जिला महासमुंद के रहवैयावा। पोखन दास जी, आपके स्वागत करथन आज के कार्यक्रम में, और स्वागत करते हुए आपसे आपके बारे में जानना चाहत हन। आपके पैदाइश कहाँ होइस, कब होइस और कैसे कैसे पढ़ाई लिखाई होइस आपके?
1: मोर नाम पोखन दास मानिकपुरी, मोर पिताजी के नाम जगेश्वर दास मानिकपुरी, वो स्वर्गीय हो चुके हैं। मोर माता का नाम श्रीमती देवाबाई मानिकपुरी, तो मोर पालन पोषण मोर नाना बिसाहू दास मानिकपुरी कोटवार रहिन है, ओकर छत्र छाया में होई से उही मोला पढ़ाई ने लिखाई ने। मोर गावे में मैं हाँ आठवीं तक के पढ़ाई करे, ओकर बाद फिर हमन हाई स्कूल पढ़े बर तुम गाँव जावन, वो याद ला हम नहीं भूलन, रेंगत जावन और रेंगत आवन।
0: कतका दूर रहीस?
1: वो 10 किलोमीटर है,
0: सुबह जावा और शाम तक वापस भी आवा।
1: हाँ, और हाँ। कभी एक्स्ट्रा क्लास यदि सर मन ले लें तब हो औ जाते और फिर आते हैं परीक्षा उरीक्षक समय एक्स्ट्रा क्लास ले सर मन। तो ऐसे मोर पढ़ाई है तो उन्हें 11वीं मैट्रिक तक के होइस, और ओकर बाद आगे पढ़े की इच्छा तो रही से, लेकिन आरंग में भर्ती हो और चूंकि फीस वीस के लिए बातचीत करे माफी होगी, तो एक जन वहाँ पार्षद रही से स्कूल के सदस्य रहीन है, वो मन कहा है तो फिकर जन कर फीस ला माफ हो जाए, लेकिन कहा भर और 3 महीना 4 महीना जब फीस ला मांगे स्कूल में तो एक जन लेकर आए छटेरा के, वो मोल बार बार कहते अतेक गरीब हस तो पढ़थस काबर जी कॉलेज में, ओकर बात ला ज्यादा ध्यान तो नहीं दो लेकिन ओकर बात हा लगे। और लगभग में हा 2 महीना 3 महीना तक के गए, और

0: कुछ हाइड्रोसिल के बोल शिकायत हो गृह से, डॉक्टर कहे साइकिल वाइकिल झन चलाए कर, और यही ये में मोर पढ़ाई है तन छूट गए। सर मन मोल बहुत प्रेम करे, और जब छुट्टी से ना तो अब काय करूँ, घर में एक ही जन यहू लड़का है, कोटवारी कर ही खेती किसानी कर ही, घरों के मन भी उतेक ध्यान नहीं देन, और मोर पढ़ाई है तनु है तक के रुक गए। और फिर मैं हाँ कोटवारी करे हूँ 5 साल तक के नाना के ओकर काम ल करो मैं हाँ,
1: अच्छा
0: और खेती करो, लेकिन वो बखत पैसा बड़ा कमी रहा है, तो यही बीच में कपड़ा दुकान में महासुन में काम करेल गए हूँ, 30 रुपया महीना, और कपड़ा दुकान में काम नहीं करावे घरों में करावे, और बाहर भी भेजे। मैं सोचे हूँ अतका काम यदि घर में करते हो तो फिर तो बातें अलग रहती, और मैं वहाँ 21 दिन काम करे हूँ, और ओकर बाद में मैं हाँ वहाँ ले राम राम कह दे, और घर में आके एक जन खेत जाओ, और सवेरे जाते 10-11 बजे आ जाते हूँ, अतका सुंदर खेत खार मोर बढ़िया बनीस, लेकिन का कर में नजर लग गए आजू बाजू कुछ पोठलक किसान मन के, ओ मन हा जेन पानी भाटा के तरिया में जावे वो तरिया में पानी नहीं जानदन की के सब पानी मोर खेत डहर।
1: ये तो बहुत चर्चा लंबा हो जाई हमन के, हमला तो, आपके जो साहित्यिक यात्रा है एकर बारे में चर्चा करवो आपसे। आप कोटवारी करा, फिर दुकान से जुड़ा, खेती बाड़ी करा, है ना, फिर आप गुरुजी भी बने रहा, तो कैसे गुरुजी
0: तो
1: बना आप?
0: यही कुछ मन में ठेस पहुंची, और फिर मैं चुप बैठे रहा तो कोई आदमी सलाह दिन जाते, पढ़े लिखे आदमी हस नौकरी काबर नहीं खोजस, और फिर मैं ऐसे तन मन से मैं जुड़ गया हूँ। मोला याद है वो दिन हाँ, मोर एक के झन के नाम से शिक्षकी आर्डर निकलीस, और भीम खोज के पास जोरतरी गांव है, और मैं बिना देखे एक ठन संदूक में सामान धरे हो चले गए, ऊहो तो आदमी राहत हो ही, वहाँ गए और पूरा 5 साल तक के वहाँ वो कमार बिंझवार सौरा गोड़ इकरे बस्ती है, और वो बांध में वो गांव की जमीन डूब गई रही से, वो गांव में बहुत गरीबी, और वहाँ स्कूल भी नहीं रही से, गांव के कोई आदमी के परछम पढ़ान। मैं प्रथम बार वहाँ 5वीं कक्षा लड़का मल निकाले हूँ।
1: अच्छा
0: हाँ
1: तो ऐसे करके लड़का मन आपसे जुड़त गिन,
0: हाँ
1: और वहां के बच्चा मन शिक्षित होत गेन, है ना। अच्छा वो मतलब आप शिक्षित करे, और चूंकि दूर दराज के गांव है, लड़का मतलब रोज स्कूल में उपस्थिति दिलाना भी बड़ा संकट वाला काम रहे।
0: बांध में पानी में छेका जाए वो बाजू गांव है, तो बस 1-2 महीने पहले आती और ओकर बाद छेका जतीस, ओकर बाद जब दसरा होतीस तेकर बाद आतीस। मैं मोर मन में पढ़ाएच की धुन रहा है
1: जी,
0: कोई भी जातीस ऐसा तक बिरल कोई नहीं पढ़ा मैं जी,
1: हाँ।
0: लेकिन मोर मन में धुन रहा है ओ मल्ला मोर दिलचस्पी के साथ ओ मल्ला पढ़ाओ, एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाओ, मोर घर में पढ़ाओ, ओ मल्ला खवा पिया पढ़ाओ,
1: लेकिन पढ़ात रहा
0: पढ़ाओ।
1: मैं आपसे ये पूछत रहे कि एक तो दूरदराज के गांव के लड़का आप मतलब स्कूल से जोड़े रखना, शिक्षित करना बहुत बड़ा काम है यहाँ, तो कुछ ऐसा आप कुछ नया खोज कर रहे कि मतलब गीत संगीत के माध्यम से, छोटे छोटे कविता के माध्यम से पढ़ाई से जोड़ना है?
0: वो गांव में मैं रामायण मंडली खोले हूँ, और वही लड़का मन रामायण में बैठे हैं, और गांव के कुछ आदमी मन भी बैठे हैं, और वो पहली बार वहाँ रामायण के हैं। उकर बाद में ट्रेनिंग में ग्वालियर चले गए हूँ,
1: अच्छा
0: 2 साल वहाँ ट्रेनिंग करे हूँ,
1: हाँ।
0: और वहाँ से जब आए हूँ तो मोर अपॉइंटमेंट हुई लुकू पाली कोमा खान के एक ठन पारा लुकू पाली का थे, वहाँ गए तो वहाँ स्कूल नहीं। अब मोर मन में पढ़ाई के शौक रहा है, मैं कह मोला जगह दो भाई, पहली मिडिल स्कूल में संलग्न चले सवेरे स्कूल, मैं एक ही जन हूँ और सवेरे स्कूल में काय करूँ, तो सराय ने मैं हाँ वहाँ 1-8 साल पढ़ा, ओकर बाद फिर स्कूल खुलिस स्कूल बनीस, और वहाँ माने हमन 6-7 जन टीचर हो गए, और वो गांव में वो लुकू पालिल नहीं जानत रही नहीं, लेकिन लुकुच पालिल जानी न वो मेरे
1: जी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ।

0: कि आपके जो लिखे के कविता लिखे के जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई, वो भी छत्तीसगढ़ी में?
1: रामायण में बैठन
0: हाँ
1: तो कुछ थोड़ा बहुत वो में तर्ज वर्ज बनाए के शौक मोल पहली चले रही से पढ़त रहन तब के, फिर नौकरी के बाद भी काबर की वही मोर जन संपर्क के पोठ माध्यम बनीस
0: अच्छा
1: रामायणे हा।
0: अच्छा
1: और फिर कुछ कविता लिखो कुछ कोनो कोनो देखाओ, लेकिन वो मन गाइड ठीक से नहीं करीन, ठीक से गाइड नहीं करीन, मोर मन एकदम ये होगी से। उकर बाद में एक बार हमर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रही से, अब वो देखिस अब यहाँ मैं क्या मदद कर सको, वो निराश कर दीस। अब आखिर में मैं ए लाइन से बिल्कुल हट गए हूँ। फिर रिटायर हुए, रिटायर होए के बाद जब जानी तो कुछ आदमी मन महासुन में काव्यांश कवि मन के संस्था है, कला संस्था, वहाँ कविता वगैरह हर प्रकार के कला के,
0: जी
1: वहाँ मोर लड़का वहाँ मोला संपर्क करीस। और वहाँ में जब मोर कविता वगैरह में हाँ लिखा जाऊँ, वहाँ जो प्रधान है वे वो हाँ हेडिंग दे, और वो हेडिंग मन में मैं कविता लिखूँ
0: जी
1: हर रहे में, तो वही संकलित टाइप के हो गए, हर हेडिंग वहीं से दी और
0: अच्छा
1: संकलित हो गए।
0: हाँ
1: और पहली जो लिखे रहे वो तो उदासीनता के नावले के फेंका आ गए, कहाँ गए, लेकिन ए
0: कभी
1: मन
0: खोजे
1: ला
0: के प्रयास नहीं करे कि जो पुरानी कविता मैं लिखत रहे वो कैसा रही
1: वो
0: से?
1: गए,
0: हाँ
1: निराश हो गए रहे मैं, हाँ बिल्कुल ए डहार से हटी गए रहे हूँ।
0: अच्छा
1: लेकिन ए में जब जुड़े ना काव्यांश संस्था महासुन में मोले एक ठन मंच मिलीस, एक
0: हाँ
1: ठन सहयोग मिलीस, तो ए रचना हमोर प्रकाशित में आईस। और एकर लिए वो द्विवेदी जी उहू मन हा इंटरनेट से जुड़ के कुछ मतलब बातचीत करें, और रुचि जगा दीस। हाँ और फिर ये लड़का है मोर लड़का ललित मानिकपुरी पत्रकार है, अब ओहू हर थोच मतलब संकलन करे में जुड़े में सहयोग करीन
0: जी
1: है।
0: अच्छा पोखन जी,
1: हाँ जी
0: आप शिक्षा जगत ले जब सेवानिवृत्त होया उसके बाद लिखना शुरू करे आप कविता, है
1: हाँ
0: ना?
1: हाँ हाँ
0: और आप बहुत समय गांव में बिताया है,
1: हाँ
0: गांव में रह रहे वहां के माटी से माया हो जाते, तो वो माटी ला सुरता करके कुछ दो चार लाइन कविता हमारे साथी मन ला सुना देवा।
1: मोरे गांव के माटी श्रद्धा के फूल चढ़ाऊं, सांस सांस तोर करो वंदना, सुघरे आशीष पाऊं, और जन्म भूमि तोर दया मयाला और कभू नहीं भुलाओ, जब जब जन्म धरो धरती में तोर कोरा में आओ, करो वंदना जम्मू जन के जे मन गांव बसाए है, लईका मन फल खाही कही के सुघर पेड़ लगाए है, रास्ता सुघर ताल तलैया सुघर खेती बारी है, और सुघर अमरैया मोहारी सुघर सब नर नारी है, प्यार जगा दे सबके भीतर और मन में निर्मल भक्ति दे, फलै फूलै सुख शांति बढ़े सुघर यकल यो शक्ति दे।
0: जी ऐसे करके आप गांव के माटी ला सुरता करत रहे हो, है ना? और वो एक रचना के रूप में आगे सामने एक कविता ला अभी आप सुनाए हमारे श्रोता साथी में, एकर पहले आप कहीं सुनाए रहा आप?
1: हाँ कवि
0: हाँ
1: सम्मेलन मन में कोई
0: अच्छा
1: जगह
0: जी जी जी
1: जरूरत पड़ते तो सुनाए हो,
0: हाँ हाँ
1: लेकिन अब
0: हाँ
1: सियानापन के नॉलेज ज्यादा
0: हाँ
1: आए जाए मर्चन हो जाते, मन तो होते कोई जगह होते पे जाओ कही के,
0: जी जी जी
1: लेकिन लाचारी बस जाए
0: हाँ
1: नहीं सको।
0: जी लेकिन रचना आप कविता अभी भी लिखा था वह, है
1: हाँ
0: ना?
1: लिखता हूँ मैं
0: तो ये
1: अभी,
0: जो छत्तीसगढ़ी में आप जो रचना करे के सोचा हो आप, वो कैसे मन में इसकी मोला हिंदी के साथ साथ छत्तीसगढ़ी में भी कविता लिखना है?
1: भाव जब जगते ना
0: हाँ
1: तो छत्तीसगढ़ी मोर मातृभाषा है,
0: जी
1: छत्तीसगढ़ी में ही ज्यादा कविता बन

0: और हिंदी चूंकि अब हम पढ़े लिखे हैं तो हिंदी में भी
1: जी
0: स्वाभाविक रूप से बन जाते। तो जिन समय में हिंदी भाव आते हिंदी में कविता बन जाते, और छत्तीसगढ़ी के तो फिर ज्यादा करके आते।
1: जी
0: और मैं हाँ मोर मन में हमर गांव
1: जी
0: के जौन देखता हूँ मैं हाँ, तो मोला भारतीय देश की याद आते। हाँ मोर भारतीय देश ये है, हमन जो अलग अलग छोटे छोटे देखथन ये हमर मन के दृष्टिकोण के थोकिन त्रुटि है। हमला पूरा भारत देश ल गावे में देखना है, कौन बताए सखी कति मेर भारत है कि के
1: जहां हाथ रख दिया वही भारत
0: जो
1: है।
0: ही भारत है नहीं। तो एक किस्म के मोर कविता मन में देश प्रेम के बात है, गांव के प्रेम के बात है, मोर छत्तीसगढ़ महतारी के प्रेम के बात है, और सबसे बड़े बात है कि कैसे मोर देश है तो एक हो जाए, मोर गांव एक हो जाए। काबर एकता में ताकत है, हमन जो अलग अलग अलग अलग सोच विचार रखे हैं ये हाँ बनावटी है। चूंकि भगवान भी एकेठन है, ये सृष्टि के रचनाकार एकेठन है, अलग अलग बांट के हम लोग कमजोर नहीं होना चाहिए। तो मोर रचना मन में अक्सर करके यही बात है कि जेमे सब्बो भगवान मन आ जत हैं, एकेच में आ जत हैं। मोर रचना में पूरा गांव मन देश में आ जत है, हर नार नारी में
1: हाँ
0: भगवान दिखते,
1: जी
0: ये बात हो जत है।
1: जी
0: तो जेकर मन में ये बात आ गए तो ओकर भेदभाव खत्म हो जत है,
1: जी
0: और ओकर पास इंसानियत जागत है।
1: जी जी
0: अब
1: जी
0: भेदभाव रही तब तक इंसानियत की कमी हो जत है। और हमर छल कपट झूठ लबारी अपन स्वार्थ वाला बात है, तो ये भगवान से दुरिहा एक बात है, ये देश से दुरिहा एक बात है। हमला भगवान से प्रेम करना है, देश से प्रेम करना है, तो अपन सच्चा ईमानदारी के साथ जौन भी काम हम करत हन तिहा जिम्मेदारी के साथ में
1: जी
0: हमला हर आदमी ला अपन जिम्मेदारी निभाना है, तब तो हमार आजादी सुरक्षित रह सकी और हमार ताकत सुरक्षित रह सकी। जिम्मेदारी के वहन हर आदमी ला वहन करना है, और
1: जी
0: हमार सरकार जौन विकसित भारत के जौन खाका खींचे है, तो इमें हर व्यक्ति ईमानदारी के साथ सहयोग करे, हर आदमी बदले तब देश बदल जेही।
1: हमारे छत्तीसगढ़ में चलन में है मितान बदना, है ना। तो हमारे मितान सही रही, सही रास्ता दिखा ही, और हर कोई एक दूसरे ला मितान मान ही, तो हमारे देश तो विकसित तो बन ही। तो आप मितान के बारे में भी कुछ रचना करें हवा का,
0: हाँ
1: तो वो रचना का है मितान के, वो हमारे श्रोता मल्ला सुना देवा।
0: हाँ आदमी सामाजिक प्राणी है,
1: हाँ
0: अब अकेला तो नहीं रह सके,
1: जी
0: तो मितान के बहुत जरूरत है। तो एमे में और रचना है, भारी है महिमा मितान के भैया मोर, भारी है महिमा मितान के, गुण लगावत हो मितान के दीदी मोर, भारी है महिमा मितान के, मोर खुशी में खुश हो जाते और मोर दुख में दुखारी, और अपन दुखला छोटे मानते मोर दुखला बड़ भारी, और संग मोर देते सीना तान के, भैया मोर भारी है महिमा मितान के, गलती होते बरज देते सुंदर रास्ता चलाते, गुणला मोर उजागर करते दोसला मोर दुराते, बड़ परतितिया मदद करैया पक्का है अपने जान के, भैया मोर भारी है महिमा मितान के, विपत के बेरा में मितान के प्रेम 100 गुना बाढ़ जथे, और पाँव में कांटा गड़ जाते मोर तब दांत में चाब के निकाल देते, रखे रथे सुरता मोरे आन बान शान के, भैया मोर भारी है महिमा मितान
1: जी
0: के,
1: जी
0: दीदी मोर भारी है महिमा मितान के।
1: जी बहुत बढ़िया रचना है ये आपके, और मितान के जो महिमा

0: मितान के जो सहयोग मिलते, अपन जो सगा जो होते हैं रिश्तेदार, ओकर से भी बढ़ के होते ये जो मितान है ये। और हमारे छत्तीसगढ़ में एकर चलन बहुत है।
1: हमर छत्तीसगढ़ में गंगा जल, गजा मूंग, महाप्रसाद, तुलसी दल,
0: गिया
1: अरे
0: बदना
1: कई ठन ऐसे जमारा, ऐसे कई ठन है जेकर से हमर छत्तीसगढ़ के आदमी रिश्तेदार कसम एक दूसर से गुथाए रथन। और हमला एकर बड़ा गर्व है कि हम हमर गांव में हर आदमी संग परिवार बरोबर रथन, चाहे वो कोनो जात के होए, काका, मामा, भैया, चाचा, ऐसे हमन सब
0: कछु
1: मिलजुल
0: ना
1: के
0: कछु
1: रथन।
0: रिश्तेदारी हो जाते
1: आओ,
0: हैं।
1: और यही चीज हमर देश ल मजबूत बनाते। आओ, हर गांव में हमर छत्तीसगढ़ के तीर रिवाज है, कितना भोलापन, छल कपट तो जाने नहीं, आराम तो हराम है ओकर बर, ऐसा हमर छत्तीसगढ़िया आदमी। आओ, वास्तविक में कहे

0: आओ, हर गांव में हमारे छत्तीसगढ़ के ये रिवाज है, कितना भोलापन, छल कपट तो जाने नहीं, आराम तो हराम है ओकर बर, ऐसा हमारे छत्तीसगढ़िया आदमी। आओ वास्तविक में कहे गए है छत्तीसगढ़िया सबले
1: सबले
0: बढ़िया,
1: बढ़िया।
0: बिल्कुल सही बात गए है, लेकिन काकरो भुलावम नहीं आना चाहिए। अपन जौन संस्कृति है, अपन जौन सीताराम वाला संस्कृति है, अपन जौन माया दुलार प्रेम दया करुणा सहायता एक दूसरे करके, ये संस्कृति है, ये हमार मन के लिए बहुत गौरव के बात है। और हमार एकर से हमला बड़ा खुशी लागते।
1: आप इतना बढ़िया चर्चा करा था, मुझे लगता है आपके जो रचना है, कविता जो आप लिखता है, ये मन में भी कहीं ना कहीं ये मन आ जाते हैं, क्या कि आपके विचार में ये सब चलत है ना,
0: जौने
1: और
0: भीतर थे तो
1: जी
0: उन्हें निकलते।
1: निकलते।
0: हाँ, तो मोर मन में बिल्कुल ये है कि भगवान एक ठन है, और हमला सबसे पहली हमर धर्म ल जानना चाहिए, मानव धर्म हमारे, इंसान में दया होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, तभी हमर देश एक हो ही, और तभी हमर देश मजबूत हो ही, और तब हमर देश विकसित भारत बन ही,
1: जी
0: और विश्व गुरु के पद में पहुंची जैसे पहली पहुंचे रही से।
1: जी जी और एकर खातिर साहित्यकार मन के बहुत बड़ा योगदान होते समाज में, है ना। आप एक साहित्यकार हो के नाते और छत्तीसगढ़ी भाषा में आपके एक बहुत अच्छा अधिकार है लिखे के, हिंदी में भी आप लिखता हो, तो ये जो छत्तीसगढ़ी भाषा है हमार, नई पीढ़ी हर हिंदी अंग्रेजी इंग्लिश ऐसे करके तो खिचड़ी जैसे हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा ला बचा के रखना है, छत्तीसगढ़ी बोली ला, छत्तीसगढ़ी में जो हमन के जो मुहावरा होते है ना अलग अलग तरह के, ओला बचा के रखना है, एकर खातिर कुछ प्रयास आप मन के तरफ से होते।
0: हमर छत्तीसगढ़े में ही कई ठन बोली है,
1: हाना के भी
0: बस्तर
1: चर्चा
0: में कई ठन बोली हैं,
1: जी।
0: अलग अलग एरिया में जाथन ना, तो ही छत्तीसगढ़ी है, कई प्रकार के अलग अलग
1: जी।
0: स्थान में बन जाते, और बड़ा अच्छा लागते, मीठे गुरतुर है, भावनक साथ जुड़े हुए है। और हमर देश के जतका भी भाषा हैं, और ये भाषा मन हा बाधक नो है, ये भाषा मन हमर मन के ना बढ़ाने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है। क्षेत्रीय भाषा ये मन हमर माता बरोबर है, जैसे महतारी दूध है हम लोग बढ़ाते, तो इसने। और हमर जन भाषा है में ये भाषा संस्कृत है, और भी आज अंग्रेजी के प्रति जन प्रेम है, तो हमर भाषा मतलब भुला के अंग्रेजी डहर एकदम एक मुस्त नहीं हो जाना चाहिए। अंग्रेजी आगे बढ़े बर गलो जरूरी है, लेकिन हमर जो भाषा है ये मन तो महतारी दूध बराबर है, और सबो भाषा मन कोई बाधक नो है, और हमला एके भाव से जुड़ना चाहिए। हमर राष्ट्रभाषा जोन हिंदी है, एकर तो विरोध किसी मात्रा में नहीं करना चाहिए। भारत देश लेने मजबूत बनाना है, तो ये जोन हमर जोन एकता है, एकर संबंध में राजनीति नहीं होना चाहिए, दूसर के
1: हाँ
0: सहयोग रहना
1: जी,
0: चाहिए।
1: एक चीज बतावा पोखन जी, कि हमार जो नई पीढ़ी के लड़का हैं ओमन खातिर आप का करत है, कि ओमन अपन जो महतारी भाषा है ओकर से जुड़े रहें, ठीक है हिंदी सीखें अंग्रेजी सीखें और भी जो भाषा है वाला भी सीखें, लेकिन हमार जो छत्तीसगढ़ी भाषा है एला तो जाने,
0: ये
1: एमा कोई
0: बहुत
1: संकोच जन कर, एकर
0: ये
1: खातिर का
0: वास्तविक
1: करना
0: में बहुत
1: चाहिए।
0: विचार की बात यह है। जैसे मोला आज मंच मिली से, तो आज मैं हे दे एकर पहली से यदि मोला कहूँ सहयोगी मंच मिले रहतीस, तो आज और कुछ पहले से मैं प्रोग्रेस में रहते हूँ। आज लड़का मल्ला नवसिखिया मल्ला एक नया मंच देख जरूरत है, और वो मल्ला प्रोत्साहन देख जरूरत है। और जतका हमारे जो कवि है में काहिस, यदि उकर मन के रचना केवल लाइब्रेरी तक के नहीं रहना चाहिए, उकरो मन के जे मल्ल हमन भारत रत्न और बड़े बड़े पुरस्कार दे हन, वो रचना मन केवल डिग्री स्कूल तक के नहीं रहना चाहिए। यदि समाज ल उत्थान करना है, तो हमर जो साहित्यकार हैं, कहानीकार हैं, कविताकार हैं, नाटककार, ये सब हमर समाज में आना चाहिए। और नया आदमी मतलब ही ना एक मंच मिलना चाहिए, वो मतलब प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तब हमर जो छत्तीसगढ़ी भाषा है और मातृभाषा है ये मन फल ही फूल ही। और तब हमारे

0: से तो उन्हें मजबूत बनिए।
1: एकर खातिर बेरा के पहचान करना जरूरी है, बेरा के महत्व ल समझना है, बेरा के पहचान करना
0: बिल्कुल, समय कीमती
1: है
0: है।
1: ना, समय
0: हाँ,
1: बहुत कीमती है।
0: कीमती
1: तो
0: है।
1: मैं कहतरन बेरा के चिन्हारी करते हुए एक और गीत आपके
0: हाँ,
1: सुन लेथन, हमर श्रोता
0: बिल्कुल।
1: मल्ल सुना देवा।
0: समय और चेतना ये दोनों के बड़ा घनिष्ठ संबंध है, और हमला ना जागरूक रहना जरूरी है, और हमला समय के पहचान करना जरूरी है, सचेत होना जरूरी है। और जबका हमर संत महात्मा है तेमन जागरूकते करे हैं, हमला स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। परमात्मा परमार्थ रूप है, परमात्मा है तो सब,
1: जी
0: तो ये बेरा के हमल ना सजग होना चाहिए,
1: जी जी
0: जिम्मेदार होना चाहिए अपन देश के प्रति, अपन भगवान के प्रति
1: जी
0: और अपन जीवन के प्रति।
1: जी
0: इंसान ना तो जरूर समय की
1: जी
0: चिन्हारी
1: जी
0: होना चाहिए।
1: जी
0: मोर रचना है, बेरा के कर ले चिन्हारी संगवारी मोर, पीछू फेर पछताए ल परही, भुगते के बेरा दुख भारी संगवारी मोर, बेरा के कर ले चिन्हारी। सुघर बेरा मिले है, और जैसे सुघर बिहनिया, मानुष चोला सुघर हावे, सुघर हावे दुनिया, मिले है सुघर तोला पारी संगवारी मोर, बेरा के कर ले चिन्हारी। शिक्षा के अंजोर में जीवन ल सुधार ले, और सूते झर्रा जाग जा, बने तय विचार ले, बीते बेरा लहूट के नहीं आही संगवारी मोर, बेरा के कर ले चिन्हारी। जैसन बीजा बोवत हावस तैसने फल ल पाबे, और दुख भोगे के बेरा काबर पर ल दोष लगावे। महाभारत में कौरव दल के हो गए उजारी संगवारी मोर, बेरा के कर ले चिन्हारी संगवारी, बेरा के कर ले चिन्हारी।
1: जी, बहुत बढ़िया रचना आप सुनाया। बेरा के चिन्हारी करे के आप हमार श्रोता मल्ल का प्रोत्साहित करे हवा आप, और ऐसे ही आप लगातार अपन लेखनी ले चलावत रहा, और हमार जो नई पीढ़ी है वो मल्ल भी आपके मार्गदर्शन मिलत रहे। आज आप स्टूडियो में आया और हमन से बातचीत करा, श्रोता मन से बातचीत करा, और आपकी जो साहित्यिक यात्रा है, आपकी जीवन यात्रा है, एकर बारे में, आपके बारे में जाने बर मिली से आप स्टूडियो में आया कर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद आपला। श्रोता साथी हो, अभी आप मन हमर संस्कृति, हमर साहित्यकार ये क्रम में महंत पोखनदास मानिकपुरी जी से हमर बातचीत सुनत रहो। आप ग्राम बिरकोनी महासमुंद के रहवैया, और एक लंबा समय आप शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में बिताया है, और एकरे संग छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां के आज के ये अंक ले मोला इहे विदा देवा। जय जोहार, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र साहू। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का

कार्यक्रम मोर भुइयां अभी आप सुन रहे थे, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। हम अपने सुनने वालों को याद दिला दें, सुबह 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। 11 बजे सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम 5:05 पर भुइया की बोली कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा की वार्ता, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति संघर्षों की भूमिका। प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी। महिला सभा कार्यक्रम में शाम 5:35 पर सामयिक चर्चा का विषय तस्वीरों में जिंदगी, क्रम कौशल विकास भी आप सुनेंगे।

प्रस्तुति मनाली ठाकरे की होगी। रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार होंगी सुनीता राव। ईमेल करें गीत सुने शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे आप सुनेंगे। कार्यक्रम रजनीगंधा रात 8:15 पर प्रसारित किया जाएगा। यह थी कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। 9:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: उदित नारायण महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में टशन फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। पीयूष मिश्रा ने इसे लिखा, विशाल शेखर का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहां से हुजूर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

0: श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45

0: 40-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

सलाम नमस्ते यथा फिल्म का नाम शान और गायत्री अय्यर की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। जयदीप सानी ने इसे लिखा और विशाल शेखर का संगीत।

नमस्ते लंदन, ये था फिल्म का नाम। हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और हिमेश रेशमिया का संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। नाम सोचा ही ना था है कि नहीं, अमा कह के बुला लिया एक ने, एजी कह के बुलाया दूजे ने, अबे ओ यार लोग कहते हैं, जब भी यूं जिस किसी के जी आया उसने वैसे ही बस पुकार लिया, तुमने एक मोड़ पर अचानक जब मुझको गुलजार कह के दी आवाज, एक सीपी से खुल गया मोती, मुझको एक मानी मिल गए जैसे, आह ये नाम खूबसूरत है, फिर मुझे नाम से बुलाओ तो सही।

आज के फनकार कार्यक्रम में हम नाम लेकर पुकार रहे हैं गुलजार को, जो विविध रंगी प्रतिभा के धनी हैं। एक संवाद लेखक, एक गीतकार, एक फिल्मकार, एक कहानीकार, एक उपन्यासकार, एक अनुवादक, एक लेखक। कितने पहलू हैं गुलजार साहब की इस पूरी यात्रा में उनकी शख्सियत के। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में गागर में सागर भरना भी मुमकिन नहीं, गुलजार के सारे पहलुओं पर चर्चा करना भी मुमकिन नहीं। तो फिर कहां से शुरू की जाए ये

क्या 1963 से शुरू की जाए, जहां बंदिनी फिल्म के एक गाने के लिए उन्हें बुलाया गया और उन्होंने लिखा मेरा गोरा अंग ले ले।

या फिर ये कहानी शुरू करें वहां से जहां दीना में गुलजार का जन्म हुआ, देश का बंटवारा हुआ और जिंदगी में उथल पुथल आई और जिंदगी उन्हें ले आई मुंबई के बेलसिस रोड जहां एक गैराज में वो काम करते रहे, या फिर वहां से शुरू करें कि बिमल रॉय का साथ मिला और फिल्मों की राहों पर गुलजार हौले हौले कदम बढ़ाने लगे, या फिर वहां से शुरू करें जहां सन 1971 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म निर्देशित की, मेरे अपने।

0: इस गाने में एक अजीब सा दर्द, एक अजीब सी बेकली, एक अजीब सी तकलीफ छिपी है, और इस तकलीफ को वही समझ सकता है जिसने बंटवारे का दर्द झेला हो। इस पीड़ा को वो समझ सकता है जिसे अपनी जड़ों को छोड़कर बहुत दूर आ जाना पड़ा हो और जिसके लिए जिंदगी में पीछे लौटना मुमकिन नहीं रहा हो।
1: हाथ छूटे तो रिश्ते नहीं।

संपूर्ण सिंह गुलजार के दिल में अपनी जड़ों से दूर चले जाने की पीड़ा बहुत गहरी रही है और ये बार बार उभर कर आती भी है। अपनी एक रचना में वो लिखते हैं, शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। गुलजार साहब की रचनाओं में कहीं एक उदासी भी है तो कहीं एक उम्मीद भी है। कहीं वो लिखते हैं, आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया, तेरी राहों पे रुक रुक कर हमने अपना ही इंतजार किया। क्यों ना आज के फनकार कार्यक्रम में हम गुलजार के उन गानों की चर्चा खास तौर पर करें जो आपको ज्यादा सुनाई नहीं देते। तो फिर 1969 की तरफ अपनी इस गाड़ी को घुमा लेते हैं। एक फिल्म आई तरुण मजूमदार के निर्देशन में जिसका नाम था राहगीर। राहगीर में गुलजार साहब ने कुछ बेमिसाल गाने लिखे और उनमें से एक गाना हेमंत कुमार ने गाया जो कहता है, तुम्हारे नैन देख के सुना है लोग जोगी हो गए हैं। सुनिए।

जब बात गुलजार साहब के थोड़े से कम चर्चित गानों की होती है तो हमें याद आती है एक और फिल्म जिसका नाम है बीवी और मकान। सन 1966 में आई इस फिल्म के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी थे। भले इस फिल्म का बहुत ज्यादा जिक्र ना हुआ हो, लेकिन जब आप इस फिल्म के गानों को सुनेंगे तो आपको लगेगा इतने प्यारे गाने पर ये कहां छिपे रह गए थे।

पर ऐसा नहीं कि इस कार्यक्रम में हम सिर्फ वही गाने सुनाएंगे जो कम चर्चित हैं। चलिए हवाओं पर सवार होकर 1968 की तरफ चलते हैं। देबू सेन की एक फिल्म आई दो दूनी चार, ये फिल्म क्या थी? ये एक बड़ा गड़बड़ झाला थी, इसलिए क्योंकि ये फिल्म ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाटक भ्रांति बिलास पर आधारित थी, जो शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित था। लेकिन इस फिल्म के गाने लिखने के बाद गुलजार साहब को लगा इस फिल्म को दोबारा बनाया जाए। उन्होंने फिर क्या चमत्कार किया, वो बाद में, पहले हवाओं पे कुछ नाम लिख दिए जाएं। हवा

0: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: फिल्म दो दुनी चार के गीतकार ही नहीं थे गुलजार, बल्कि ये फिल्म भी उन्होंने लिखी थी। फिर आगे एक चमत्कार हुआ जिसे हम अंगूर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, दो दुनी चार को आगे चलकर गुलजार ने बनाया अंगूर। और अंगूर याद आती है तो क्या याद आता है?

चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गुलजार साहब के निर्देशन की दुनिया का थोड़ा सा और कराते हैं परिचय। सन 1972, आप समझ गए कि बात जीतेंद्र, जया भादुड़ी, प्राण और संजीव कुमार के परिचय की हो रही है। आप समझ गए कि बात इस गाने की हो रही है।

भाई, ये जो परिचय है इसके बारे में थोड़ा सा और बताना जरूरी है। सन 1972 की ये वो फिल्म थी जहां से हाथ पकड़कर आगे बढ़े गुलजार और राहुल देव बर्मन। गुलजार और आरडी बर्मन का साथ इसके बाद रहा बहुत लंबा और आए एक से बढ़कर एक नगी ने लंबी छलांग लगाकर फिल्म मासूम पर पहुंचते हैं और लकड़ी की काठी पर सवार होकर दौड़ते हैं।

कहीं से भी यकीन नहीं होता कि ये फिल्मी गाना है, बल्कि ये एक नर्सरी राइम का रूप ले चुका है। न जाने कितनी पीढ़ियां दौड़ा दौड़ा दौड़ा घोड़ा दुम उठा के दौड़ा गाते हुए बड़ी हो गईं, और फिर पिताओं ने अपने बच्चों को भी यही गीत सिखाया और फिर ये बच्चे भी इसे गाते हुए बड़े हो गए। इस बीच में कुछ और पीढ़ियां आईं, जो जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, जैसे गाने गाते हुए बड़े हुए। गुलजार साहब को बच्चों से बड़ा लगाव रहा और उन्होंने बच्चों के लिए न केवल फिल्में बनाई, बल्कि बच्चों के मुद्दों पर फिल्में बनाने से इतर कुछ किताबें भी लिखी, जैसे बोस्की का पंचतंत्र और दूसरी कुछ किताबें। तो ये तो हुई गुलजार और बच्चों की बातें। अब जरा गुलजार साहब के फिल्म निर्देशन की खुशबू को दूर तक फैलाया जाए। जी हां, सन 1975 में आई फिल्म खुशबू, राहुल देव बर्मन का संगीत।

राहुल देव बर्मन, गुलजार और आशा भोसले की तिकड़ी का कमाल था, दो नैनों में आंसू भरे हैं, निंदिया कैसे समाए। लेकिन बीच में आए मदन मोहन, जब गुलजार ने फिल्म मौसम के संगीत की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। यहाँ एक और मजेदार बात बताते चलें कि फिल्म मौसम का बैकग्राउंड म्यूजिक सलील चौधरी ने तैयार किया था, जबकि फिल्म मौसम के गाने मदन मोहन ने तैयार किए थे। और इस गाने के बिना कहाँ बीतते हैं हमारे फुर्सत के रात दिन।

गुलजार की इस गीत यात्रा में कुछ ऐसे गाने जो कम सुने गए हैं और एक ऐसा वर्ग है या एक ऐसी पीढ़ी है जो इन गानों से परिचित नहीं है। आइए फिल्म शक का गाना सुनते हैं कुमारी फैयाज की आवाज में। आपको बता दें सन 1976 में ये फिल्म आई थी।

0: हमारे जहन में कौंध रहा है मुंबई शहर, समंदर का किनारा, ऊंची ऊंची इमारतें और उनके बीच दो दीवाने जो आशियाना खोज रहे हैं। न जाने कितने लोगों के लिए बड़े शहरों में आशियाना खोजने की तलाश और उससे जुड़ी हुई मुहिम और जद्दोजहद का ये नगमा है जो हर दिल में धड़कता है। आवाज भूपिंदर सिंह और रूना लैला की, फिल्म का नाम घरौंदा, साल 1977।
1: दो दीवाने शहर में।

0: मुहिम और जद्दोजहद का ये नगमा है जो हर दिल में धड़कता है। आवाज भूपिंदर सिंह और रूना लैला की, फिल्म का नाम घरौंदा, साल 1977।
1: दो दीवाने शहर में

जिक्र गुलजार के कुछ सुने और कुछ अनसुने गानों का हो रहा है तो क्यों ना यहाँ एक एल्बम का जिक्र कर लिया जाए। गुलजार, आशा भोसले और आर डी बर्मन ने एक दिन अचानक ये योजना बनाई कि रिश्तों पर आधारित एक नॉन फिल्म एल्बम किया जाए। आखिरकार 1987 में ये नायाब एल्बम आया जिसका नाम रखा गया था दिल पड़ोसी है। इससे ये रचना सुनिए।

जब भी बारिश का मौसम घिरता है, जब आसमान से झमाझम बरसता है पानी, तो कितने कितने गुलजार साहब के गाने हैं जो हमारे जहन में कौंधते हैं। कितनी पीढ़ियों तक गुलजार का सफर रहा है, इसकी एक मिसाल पहले सुनिए थोड़ी सी बेवफाई फिल्म के इस बारिश के गाने की एक झलक।

जरा सोचिए कि सन 1980 में गुलजार साहब कहते हैं बरसे फुहार, और फिर 21वीं सदी में फिल्म गुरु के एक गाने में वो क्या लिखते हैं, सुनिए।

ऐसी जादुई रही है गुलजार की पूरी सिने यात्रा। इस सिने यात्रा में कभी गोलमाल भी हुआ। जी हाँ, फिल्म गोलमाल, जिसके संवाद डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखे थे। लेकिन इस फिल्म के गानों ने जो धमाल किया कि इस गोलमाल को हम हमेशा याद रखते हैं। देखिए ना, इस कार्यक्रम का वक्त भी किस तरह से बीता चला जा रहा है कि किशोर कुमार साहब समझा रहे हैं।

0: और सरगुजा क्षेत्र में डेयरी नेटवर्क के विकास पर विशेष जोर देगी। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करीब 1.25 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 4 आरोपियों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल जशपुर जिले के बगिया में जशपुर वनमंडल के जन जागरूकता अभियान पर आधारित पुस्तक गजरथ यात्रा भाग 2 का विमोचन किया। यह पुस्तक मानव हाथी द्वंद्व को कम करने, हाथियों के संरक्षण और प्रभावित क्षेत्रों में जन जागरूकता बढ़ाने की गतिविधियों पर लिखी गई है। मुख्यमंत्री ने जशपुर को वन संपदा और जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र बताते हुए कहा कि यहां मानव तथा वन्य जीवों के बीच सुरक्षित सह अस्तित्व सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा के साथ वन और वन्य जीवों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मानव हाथी द्वंद्व प्रबंधन, जन सुरक्षा और हाथियों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। रायपुर में कल मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन की राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश में डेयरी क्षेत्र के विकास, दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने, महिला दुग्ध उत्पादकों की भागीदारी बढ़ाने और दूध संग्रहण तथा विपणन व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही बस्तर और सरगुजा संभाग में डेयरी विकास को लेकर विशेष जोर दिया गया। विश्व हाथी दिवस के उपलक्ष्य में अचानकमार टाइगर रिजर्व एटीआर के सिहावल सागर एलिफेंट कैंप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्रामीणों ने हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण की शपथ ली। कार्यक्रम में हाथियों की देखभाल, सुरक्षा और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महावतों और हाथी मित्र दल के सदस्यों को सम्मानित किया गया। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में आज से 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू होगी। 4 दिवसीय इस स्पर्धा का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रणव कुमार मरपच्ची करेंगे। वहीं सांसद ज्योत्सना महंत और विधायक अटल श्रीवास्तव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपए की ठगी करने वाले 4 आरोपियों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में छापेमारी कर पकड़ा गया है। आरोप है कि इन लोगों ने छत्तीसगढ़ के 3 व्यक्तियों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया। पुलिस आरोपियों से जब्त मोबाइल की जाँच कर रही है। मौसम विभाग ने आज और कल उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि एक अवदाब का क्षेत्र बना हुआ है, इसके असर से राज्य में मानसूनी गतिविधियां बढ़ेंगी। हालांकि 19 अगस्त के बाद से बारिश में कमी आने की संभावना है। इस बीच पिछले 24 घंटों में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों पर बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश कोरबा में 176.6 मिलीमीटर की गई। बांगो बांध के 9 गेट खोल दिए गए हैं, जिनसे 39,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं दर्री बैराज के 4 गेट खोलकर 37,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी किनारे बसे 35 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर में आज राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। इसके बाद 20 अगस्त को पूरे प्रदेश में व्यापक मॉक ड्रिल होगी। बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आयोजित इस मॉक एक्सरसाइज में राहत और बचाव कार्यों की व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में डेयरी नेटवर्क के विकास पर विशेष जोर देगी। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करीब 1.25 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 4 आरोपियों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे ही लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। इस

0: हमने सोचा था कि इस कार्यक्रम में गुलजार साहब के इतने सारे गाने सुनवाएंगे कि आपको लगेगा एक पूरा इंद्रधनुष खिल गया है, और कोशिश भी तो यही है। तो अब आशा भोसले की आवाज में फिल्म सितारा का एक गाना आ रहा है जो जिंदगी की संगीन हकीकत को आपके सामने रखता है।
1: ये साए
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 9:55 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
3: और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार बस

0: छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आजीविका का सबसे बड़ा आधार कृषि है। धान की खेती यहाँ की प्रमुख फसल है। कालांतर से छत्तीसगढ़ धान के कटोरे के रूप में विख्यात है। बीते कुछ सालों से यहाँ के किसान मिश्रित खेती करने लगे हैं, जो मिट्टी की उर्वरकता और किसानों की संपन्नता में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। इधर कुछ सालों से किसानों का रुझान उद्यानिकी की तरफ भी बढ़ा है। अनुकूल मौसम के कारण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में फलों की खेती बढ़ी है, जिसमें प्रमुख है जशपुर की रस भरी नाशपाती। उत्तर भारत के ठंडे और पठारी इलाकों से नाशपाती अब उतर आई है मध्य भारत के छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में। जशपुर, मनोरा, बगीचा और पेंड्रापाट के ठंडे और पठारी इलाके नाशपाती की खेती के लिए उपयुक्त हैं। यहाँ का ठंडा, खुशनुमा और ढलान वाला पठारी मौसम नाशपाती के पौधों के लिए बेहद अनुकूल है। जशपुर की रसीली नाशपाती छत्तीसगढ़ के अलावा पड़ोसी राज्यों ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बाजारों में भी भेजी जाती है। नाशपाती की अच्छी मांग होने के कारण किसान प्रति एकड़ 1 से 1.5 लाख तक शुद्ध आय कमा रहे हैं। उद्यानिकी विभाग और नाबार्ड के सहयोग से यहाँ के किसानों ने पारंपरिक फसलों की बजाय इस लाभप्रद बागवानी को अपनाया है।
1: मैं करण सोनकर हूँ। मैं प्रॉपर जशपुर डिस्ट्रिक्ट में पदस्थ हूँ एज ए सहायक संचालक उद्यान। मैं यहाँ लगभग 1 साल से पदस्थ हूँ और नाशपाती क्षेत्र विस्तार योजना में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना संचालित है, जिसमें नाशपाती का पिछले 10 साल से लगभग 805 हेक्टेयर में यहाँ पर क्षेत्र विस्तार हुआ है, जिससे कि 1583 टन का लगभग साल में उत्पादन होता है। इसमें किसान को यूनिट कॉस्ट 1,25,000 पर हेक्टेयर में 40% का अनुदान, 30,000 का अनुदान कृषकों को मिलता है और एक हेक्टेयर में या एक एकड़ में अपन बात करें तो 80 पौधे लगते हैं। ये 80 पौधे से एक पौधे से

5 से 6 साल में 25 से 30 किलो का फ्रूट प्राप्त हो जाता है हमको जून जुलाई में, और एक एकड़ की बात करें तो 2 टन के आसपास हमको उत्पादन मिल जाता है। ऐसी अगर 9 से 10 साल का प्लांट हो गया, उसमें से 50 से 60 किलो एक पौधे से यील्ड मिलती है, जिससे कि अपने को 8 से 10 टन एकड़ पीछे आराम से मिल जाता है। उस 8 से 10 टन से मिनिमम 15 से 20 रुपए किलो भी लेते हैं तो एक एकड़ पीछे किसानों को कम से कम 1 से 1.5 लाख, 1 से 1.25 लाख, 1 से 1.5 लाख का इनकम होता है। अभी प्रेजेंट में भी किसानों को 1 से 1.5 लाख का इनकम हो रहा है। वैरायटी की बात करें तो नॉर्मली जशपुर डिस्ट्रिक्ट में पत्थर नक की वैरायटी लगाई जा रही है। इस साल एनएचएम योजना से, राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना से, अच्छे वैरायटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों ने हरियाणा से पंजाब ब्यूटी और पंजाब गोल्ड के एवं पंजाब नक के 3,000 पौधे वहां से लाए हैं, जो कि 30 हेक्टेयर में किसानों को इस साल हम लोगों ने लगवाया है, जिससे कि इन वैरायटी में अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी। जो यहाँ का वैरायटी का जो प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ तो उसका यूज होता ही है। इसके अलावा हमारे आसपास के 3 राज्य, जैसे उड़ीसा हो गए, झारखंड हो गए और बिहार हो गए, यहाँ का जो नाशपाती है वो इन राज्यों में भी जाता है। और हमारे राज्य के मेन संभाग हैं अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, यहाँ भी यहाँ का जो प्रोडक्ट है हमारा पियर, यहाँ भी जाता है, और इससे हमारे किसानों को अच्छी इनकम मिल रही है। फ्यूचर के लिए मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ का जो वैरायटी निकल रहा है वो अच्छा तो है ही, इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, जिसमें जिला प्रशासन प्रयासरत है। साथ ही साथ जो नॉर्मली इसका प्रोडक्शन जून जुलाई में होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे जुलाई का समय आता है, बरसात हैवी रेन्स होने लगती है, उस समय उसके मार्केट वैल्यूज कम हो जाती है। तो उसके लिए जिला प्रशासन से जशपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए इंटीग्रेटेड पैक हाउस, जो कोल्ड चेन के रूप में काम करेगा, यहाँ जो मैक्सिमम यील्ड आ रही है, चाहे वो नाशपाती के साथ साथ अदर फ्रूट क्रॉप भी है, उसको वैल्यू एडिशन में जोड़ने के लिए जिला प्रशासन अभी प्रयासरत है, और फ्यूचर में इस साल या अगले साल यह बनने का डीपीआर बन चुका है और आगे प्रोसेस में है। तो मैं सभी किसान भाइयों से बस एक ही आग्रह करूंगा कि अच्छे वैरायटी का सिलेक्शन करें और अच्छे से अच्छा उत्पादन करते हुए अपने इनकम में लाभ अर्जित करें। इसमें 1 हेक्टेयर में 1,25,000 का यूनिट कॉस्ट है, उसमें से एक किसान को 30,000 का अनुदान मिलता है। उस 30,000 में पौधे की राशि 20,000 के आसपास आती है, और 10,000 जो बचता है उसमें इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड और गड्ढा खुदाई, ये सब चीज के लिए, क्या वो फेंसिंग करना चाहे वो सब चीज वो कर सकता है सोलर वगैरह लगा के। नॉर्मली नाशपाती को एक ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है ना, ठंडा क्लाइमेट प्लस ऐसा सॉइल जहां पर थोड़ा सा मतलब पानी का ड्रेनेज अच्छे से होना चाहिए, वहां पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए।

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में 3,500 से अधिक किसान लगभग 3,500 हेक्टेयर में नाशपाती उगा रहे हैं, जिससे हर साल लगभग 1,75,000 क्विंटल उत्पादन होता है और किसानों को प्रति एकड़ अच्छा मुनाफा होता है। नाशपाती के पौधे

0: चार साल के भीतर ही फल देना शुरू कर देते हैं। इनमें फरवरी में फूल आते हैं और जून के अंत तक फसल पककर तैयार हो जाती है। जशपुर में मुख्य रूप से हरी नाशपाती और इसकी धब्बेदार किस्में उगाई जाती हैं। नाशपाती के एक पेड़ से भारी मात्रा में फल मिलते हैं। इस रस भरी नाशपाती ने जशपुर जिले को एक नई पहचान दी है।
1: मैं सामुएल बोल रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से मनोरा ब्लॉक से हूँ। मेरा गांव है धसमा। नाशपाती खेती से मैं जुड़ा हुआ हूँ और नाशपाती से सालाना हम लोग को बहुत ही आमदनी मिल रहा है। हर साल हम लोग नाशपाती की खेती को अच्छी फसल निकाल रहे हैं और मुनाफा बहुत मिल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स B1 आधार कार्ड पासबुक जमा करना पड़ता है, नक्शा खसरा से जमा करने से मिल जाता है। वहाँ से पौधा पौधा मिलने के बाद अपने से लगाते हैं। उसको गर्मी सीजन में पानी देना पड़ता है और कीड़े मकोड़े ना चढ़ने के लिए उसमें छूना पूतना पड़ता है और साथ ही उसको फरवरी माह में कटिंग करना पड़ता है ताकि उसका फसल अच्छे से कटिंग करने से फसल फल उसका थोड़ा बड़ा होता है। हम लोग तो अभी जो बाहर से कोई भी आता है वो लोग थोक में ले जाते हैं, उड़ीसा वाले आते हैं ज्यादा। एक साल में 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आ जाता है आमदनी। इसमें पहले जैसे जटंगी वगैरह बोते थे तो 14-15 हजार 20 हजार का मुनाफा होता था, उस जगह में भी लगा दिए हैं तो निकल जाते हैं। हाँ, शासन को बहुत धन्यवाद, इसी तरह और भी कृषकों को उत्साहित करें और तो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें।

0: जशपुर की नाशपाती स्वाद, गुणवत्ता और आकर्षक आकार के कारण देश के विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से पसंद की जाती है। जिले के सन्ना, पंडरापाट, कवई, महुआ, सोनकुआरी, धवईपाई और गीधा जैसे क्षेत्रों की नाशपाती पूरे देश में प्रसिद्ध है। नाशपाती की भरपूर मांग के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और किसान आधुनिक उद्यानिकी की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। उद्यानिकी विभाग और नाबार्ड के सहयोग से किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण, पौधरोपण, बागवानी प्रबंधन और विपणन संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: मेरा नाम विकास तिर्की, ग्राम धाकमा से हूँ। मैं नाशपाती का खेती किया हूँ और नाशपाती का जो मैं उद्यान विभाग सेट से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग मेरा करीबन 5-6 साल हो गया नाशपाती का खेती किया हुआ। 2 साल मैं निकाल लिया, थोड़े कर लिया। लगभग मैं 50 से 60 हजार तक हर साल इनकम कर लेता हूँ। सरकार से मुझे यही मदद मिली, पौधा मिला मेरे लिए, खाद उद जो भी उद्यान विभाग से जो मिलता है दवा। बरसात के मौसम में ही खेती किए थे, लगाए थे पौधा। आमदनी 2 साल तो मैं निकाल लिया, तो वही 40 से 50 हजार तक पहुंच जाता है साल में। हाँ, एक और ज्यादा भी हो सकता है। अभी अभी फर्स्ट में निकल रहे ना।
2: अच्छा,
1: बंगाल से।

0: राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत जशपुर जिले में नाशपाती क्षेत्र विस्तार योजना संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से किसानों को अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। प्रदेश शासन की जबरदस्त पहल के कारण जशपुर जिले में उद्यानिकी आधारित कृषि को नई दिशा मिली है। नाशपाती की खेती किसानों की आय तो बढ़ा ही रही है, साथ ही जशपुर को छत्तीसगढ़ के एक उभरते हुए फल उत्पादक केंद्र के रूप में भी स्थापित कर रही है।
1: मेरा नाम प्रेम प्रकाश सिंह है और मैं नाबार्ड का जिला विकास प्रबंधक जशपुर। नाबार्ड के द्वारा जनजातीय विकास निधि के अंतर्गत ट्राइब्स परियोजनाएं चलाई जाती है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत आदिवासी किसानों को उनकी बंजर एवं खाली पड़ी भूमि को एक सुदृढ़ बागवानी व्यवस्था, जिसे हम बाड़ी कहते हैं, इसमें विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को उनकी एक एकड़ की बागवानी के लिए पौधे, प्रशिक्षण, अन्य उपादान यानी इनपुट्स, संरक्षण की व्यवस्थाएं और उद्यानिकी कैलेंडर के अनुसार सतत मार्गदर्शन मिलता है क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से। इसके साथ ही जब फसलें तैयार होने शुरू होती हैं तो उनकी उपज की शुरुआत होने के बाद उन्हें सामूहिक रूप से उपज की बिक्री के लिए सही मार्गदर्शन और सहयोग भी दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि हर किसान को फसल की सही कीमत के साथ एक स्थायी आजीविका का साधन भी प्राप्त हो सके। जशपुर जिले के कुछ क्षेत्रों में नाशपाती की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियां हैं, जिनमें ऊंचाई 600 मीटर से अधिक और तापमान सीमा जो कि 2-3 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के परिसीमन में चाहिए होती हैं, वो उपलब्ध हैं। इन तथ्यों को देखते हुए वर्ष 2010 से इस जिले के बगीचा और मनोरा विकास खंड में लगभग 3,908 आदिवासी किसानों की कुल 2,200 एकड़ भूमि पे नाशपाती के पौधों का रोपण किया गया है। आज इन बगीचों से आदिवासी किसान नाशपाती का अच्छा उत्पादन कर अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं और अपने बच्चों का अच्छी शिक्षा और आजीविका के अन्य साधनों को पुष्ट कर रहे हैं। जशपुर में नाशपाती की खेती मुख्य रूप से बगीचा और मनोरा विकास खंड के आदिवासी क्षेत्रों में की जा रही है, जिसमें बगीचा विकास खंड का कासन्ना तहसील, इनके इस तहसील के 42 गांवों में नाशपाती के बाड़े विकसित किए गए हैं, जिनमें कोपा, पंडरू टोली, मैना, लरंगा, लोढ़ेना, डोब, लोरो, पारासुरा, सिंधवार, अक्रीकोना, लोरो, छिछली, एकम्बा, झापरा, इचोली, चंपा, बहोरा और डूमरकोना प्रमुख गांव हैं। इसी प्रकार मनोरा विकास खंड के गीधा, बंदकोना, अंधला, हर्री, आमगांव, केराकोना और तिगड़ा गांव सहित अन्य गांवों में भी नाशपाती का अच्छा उत्पादन हो रहा है। इन क्षेत्रों की जलवायु एवं प्राकृतिक परिस्थितियां नाशपाती की खेती के लिए अनुकूल होने के कारण किसानों को लगातार बेहतर उत्पादन मिल रहा है। अतः नाशपाती की खेती अब इन क्षेत्रों में आदिवासी किसानों के लिए आय और आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन बन गई है। जशपुर जिले में उत्पादित नाशपाती अपनी बेहतर गुणवत्ता और आदिवासी किसानों द्वारा एक प्रकार से पारंपरिक कृषि पद्धति के अनुसार उगाई जाने होने के कारण एक प्रकार से प्राकृतिक उत्पाद है और इनकी बहुत अच्छी मांग भी देखी जा रही है। फसलों की तुड़ाई शुरू होने से लेकर करके अंतिम तुड़ाई तक बाजार से मांग और उसकी सप्लाई के लिए विक्रेताओं और क्रेताओं यानी जो सप्लायर्स होते हैं उनकी लगातार आवाजाही बनी रहती है और एक प्रकार से कहें तो कुछ हद तक यह एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मोड में चलता है और किसी भी किसान का अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से किसी भी किसान का फसल एक दोयम दर्जे की फसल या द्वितीय श्रेणी का रेट इस प्रकार से अब तक होने की कोई शिकायत नहीं रही है। फसलों की

बिक्री लगातार होती रही है और नाबार्ड और सहयोगी संस्थाओं और जिला प्रशासन के सहयोग से हम बिक्री, संरक्षण और आपूर्ति तीनों प्रक्रियाओं में, और इसके साथ साथ इसकी उत्पाद की ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और प्रोसेसिंग के लिए नाबार्ड के सहयोग से भी और बाहर से भी हम प्रयास करके इसका एक इसको सांस्थानिक आधार देने की कोशिश कर रहे हैं।

0: नाशपाती की खेती में काफी फायदा और मुनाफा है। किसानों का इस फसल की ओर तेजी से रुझान बढ़ रहा है। उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को समय समय पर उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। भरपूर फसल के लिए खेती की नई नई तकनीकें किसानों को बताई जाती हैं। विभाग द्वारा किसानों को नाशपाती जैसी नगदी फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। यहाँ नाशपाती धान की तुलना में अधिक लाभ देने वाली फसल साबित हो सकती है। आने वाले वर्षों में जशपुर जिले में बड़े पैमाने पर नगदी बागवानी के और अधिक विस्तार की प्रबल संभावनाएं हैं।
1: मेरा नाम रंजनू चीख है। इसका शुरुआत हम लोग ऐसे किए कि कल्याण आश्रम से हमारे अधिकारी लोग जुड़े हुए हैं, नाबार्ड में जुड़े हुए हैं। नाबार्ड के लोग बहुत सारा जगह पर उन लोग नाशपाती लगवाए और उन लोगों ने सोचा कि यहाँ करदना में भी कुछ नाशपाती और सेब की खेती लगाया जाए कह के सोचे और यहाँ इस गांव को चयन किए। और इस गांव को चयन किया और सबसे पहले 50 पौधा ला करके हम लोग को दिए ट्रायल के लिए। तो उसको हम लोग जी जान से लगा करके उसको जिंदा किया और साल भर के अंदर में फल देने लगा। तो गांव के अगल बगल के लोग देखने आए, जिला से भी देखने आए, सब लोग देख करके खुश हुए। गांव के अगल बगल को लोगों को भी मन में लगा कि हम लोग भी लगाएंगे सोच करके उन लोग हर गांव में जैसे सैला हुआ, धसमा हुआ, इधर लगाए हैं। और इसमें हम लोग सबसे पहले लगाते समय गोबर का सड़ा हुआ खाद को दे करके लगाए हैं। और ये लगभग 3 साल का पौधा है और जो ट्रायल के लिए लगाए थे वो 4 साल लगभग हो गया। उसमें से हम लोग अभी पहली बार 35 किलो तोड़ करके बिक्री किए, लगभग 7,000 रुपया हम लोग को तुरंत मिल गया। जब पेड़ बड़ा हो जाएगा ना, 10 किलो 20 किलो एक एक पेड़ में आएगा तो और ज्यादा बदलाव होगा।

जशपुर जिला अब सिर्फ पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं है। यहाँ के किसान आधुनिक बागवानी और नकदी फसलों की खेती से नई गाथा लिख रहे हैं। नाशपाती के अलावा यहाँ चाय के बागान हैं, लीची, स्ट्रॉबेरी और सेब की खेती भी होने लगी है। बेहतर मौसम, तकनीकी मार्गदर्शन और सरकारी सहयोग की बदौलत जिले में फलों के उत्पादन का रकबा लगातार बढ़ रहा है।

निर्मल राम है। ये पौधा तो हिमाचल प्रदेश से लाके दिए हम लोग को, फिर वहां से हम लोग को राजस्थान सब लाके दिए नाबार्ड नाबार्ड से। अभी तो अच्छा लग रहा है, फिर फल देना चालू कर दिया ना, साल भर 1 साल में फल देना चालू कर देता है, लेकिन पहले फल को तुड़वा देते हैं, फल का पौधा कमजोर हो जाता है। इसलिए बीते साल तो रांची सप्लाई किए थे, फिर इधर जसपुर सब में सप्लाई किए थे। पहले 5 साल पहले सेब का क्या बोलते हैं यहाँ देखने के लिए सुने भी नहीं पड़ रहा था, हिमाचल खाली में पड़ रहा था। मैं हिमाचल भी गया था, हिमाचल देख के आया हूँ उधर कैसे खेती होता है, उसको खेती भी नहीं करते थे। तो अभी पौधा लगाए तो बहुत कुछ

0: छत्तीसगढ़ इन दिनों विकास की कई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कल तक यहाँ की खेती किसानी परंपराओं से बंधी हुई थी, वहीं अब धान के अलावा रबी और खरीफ की कई फसलें यहाँ ली जा रही हैं। बागवानी की अति आधुनिक तकनीकों ने किसानों को फलों की खेती की ओर अग्रसर कर दिया है। यही वजह है कि जशपुर के किसान अब नाशपाती की भरपूर फसल ले रहे हैं। इस पर सोने पे सुहागा का काम कर रहा है जशपुर का बेहद खुशगवार मौसम।
1: अपीड़ा से हाल ही में नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय ने और स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन ने भी कुछ बातचीत प्रारंभ की है और हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में नए किसान उत्पादक संगठनों के गठन या वर्तमान किसान उत्पादक संगठनों, जिन्हें हम FPO भी कहते हैं, के द्वारा इन उत्पादों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और प्रोसेसिंग और यथासंभव यदि चीजें सामान्य होती रही तो हम इनका निर्यात भी देख सकते हैं।

जशपुर जिले के किसान खुश हैं। उन्हें अपनी गाढ़ी मेहनत से रसवंती नाशपातियां जो मिल रही हैं। जून की तपती दोपहरी में जब पेड़ नाशपाती के फलों से लद जाते हैं तो किसानों की झोलियां धन धान्य से भर जाती हैं। नाशपाती के बगीचों की मीठी मादक गंध बरबस ही सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। जरा सोच कर देखिए कैसा दिलकश होता होगा ये नजारा। छत्तीसगढ़ की बेहतरीन किस्म की नाशपाती की मांग आज बेहद बढ़ गई है। जशपुर के साफ स्वच्छ पर्यावरण में अपना योगदान देती यहाँ की नाशपाती के रस की बात ही निराली है। नाशपाती की फसल के विस्तार की उम्मीद और मेहनत पर विश्वास की आस्था लेकर जशपुर के किसान लगातार बढ़ रहे हैं उजाले की ओर।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: 10:30 हुए हैं।
1: प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर अभी आप सुन रहे थे, इसे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम नए तराने।

0: गुलजार की रचना आपने सुनी साजिद वाजिद के संगीत निर्देशन में। वीर फिल्म के इस गीत को गाया था रेखा भारद्वाज, शारिब शाबरी, तोसी शाबरी और शबाब शाबरी ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध है फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: सैम बहादुर फिल्म का गाना आपने सुना श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज़ों में। गीत लिखा था गुलजार ने, धुन तैयार की थी शंकर एहसान लॉय ने। नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लेते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: सुप्रभात, मैं हूं उमाशंकर पांडे। अब आप सुनेंगे आज की यातायात व्यवस्था पर आधारित हमारा दैनिक प्रसारण ट्रैफिक अपडेट सा बिलासपुर। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के शहरी क्षेत्र की सभी सड़कों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहनों का स्वतंत्र आवागमन बना हुआ है। यात्री एवं माल परिवहन बड़ी आसानी से हो रहा है। स्पष्ट है, संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। इसी प्रकार सुगम आवागमन के लिए आप सभी से अपेक्षा है, जब भी सड़कों में हो, किसी भी वाहन के साथ हो, धैर्य रखें, वाहन की गति में संयम रखें और यातायात नियमों का सदैव सम्मान करें। मित्रों, जिस प्रकार हमारी सुरक्षित यात्रा के लिए वाहनों का पूर्ण स्वस्थ होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक वाहन चालक को भी हमेशा तन एवं मन से स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। यदि स्वास्थ्य खराब है, शरीर के किसी भाग में दर्द है जिससे वाहन चलाने में कष्ट हो रहा है, तब मजबूरी में वाहन मत चलाइए, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव कुशल वाहन चालन पर पड़ता है और ऐसी स्थिति में वाहन चालन खतरे से खाली नहीं है। ठीक इसी प्रकार यदि मन ठीक नहीं है, मन में किसी प्रकार का तनाव है, घर परिवार के किसी सदस्य अथवा ऑफिस में या अपने अधिकारी या मालिक से कोई विवाद हुआ हो जिससे मन आंदोलित हो, मन में कुविचार आ रहे हो, वाहन चालन में पूरा पूरा मन ना लग रहा हो, तब जबरन या व्यवस्था में वाहन मत चलाइए, क्योंकि ऐसी यात्रा सुरक्षित होगी इसमें 100% संदेह है। यदि वहां लेकर जाना अति आवश्यक है तो कुछ क्षण रुकिए, ठंडा पानी पिए, अपने छोटे बच्चे की याद करें और सहज संभव हो तो उससे बातें भी करें। यदि नियमित कोई दवा लेते हैं तो वह भी लीजिए। देखिए, कुछ ही क्षण में सब सामान्य हो जाएगा। तब यदि मन की अनुमति हो तो जाइए अपना वाहन लेकर। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
0: ये था
1: मित्रों, मैं हूँ उमाशंकर पांडे। लीजिए सुनिए साइबर जागृति अभियान आधारित आवश्यक चेतावनी। आज विज्ञान के युग में मोबाइल फोन, नेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि बहुत ही उपयोगी हैं, किंतु तब जब हम सभी पूरी तरह चैतन्य रहे, सजग रहे। जैसे छात्राओं और महिलाओं से अनुरोध है, अपने स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की प्राइवेसी सेटिंग मजबूत रखें, गुप्त रखें, अनजान लिंक से बचकर रहे, फर्जी वेबसाइट से सतर्क रहे, अनजान महिला या पुरुष के फ्रेंड रिक्वेस्ट पर 100 बार विचार करें, तभी कदम आगे बढ़ाएं। किसी की मीठी और अपनत्व भरी बातों पर और उनके सलाह पर सहज विश्वास न करें, क्योंकि साइबर के अपराधी उल्लू

0: हर शाख पर बैठे रहें, स्वयं बचकर रहें और को भी इससे बचाएं। और किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या आने पर डायल 1930 पर तत्काल कॉल करें। जनित मिश्र देव, बिलासपुर पुलिस, छत्तीसगढ़।
1: ये था आज का ट्रैफिक अपडेट।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: रक्षाबंधन फिल्म का गाना आपने सुना हिमेश रेशमिया की आवाज़ में। गीत लिखा था इरशाद कामिल ने और धुन तैयार की थी हिमेश रेशमिया ने। नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: बदलो बदलो, आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें, शाम 5:05 पर भुइयां के बोली कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा की वार्ता, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति संघर्षों के भूमिका, प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी। और इस सूचना के बाद आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गाना।

दलेर मेहंदी, ममता शर्मा, अख्तर चिन्नल और मेहंदी सेन जहूर की आवाज़ों में अभी आपने गुलजार की रचना सुनी। संगीत तैयार किया था शंकर एहसान लॉय ने। फिल्म थी मिले ना मिले हम। और इसी के साथ नए तराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM एंड 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 11 बजने ही वाले हैं। लीजिए पेश है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
1: लिखते हैं, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण और शुद्ध मन ही सच्चे सुख का आधार है। मन की शुद्धता ही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से, कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
1: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: और धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
1: एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, राजाजी नगर बेंगलोर से।
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
1: सभी श्रोताओं को हमारा आभार संदेश भेजने के लिए।
0: तो श्रोताओं एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
1: जी
0: श्रोताओं आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर। तो विमलेश जी जरा आज का विषय तो बताइए।
1: अजीत जी आज हम बात करेंगे हमारी भाषा हिंदी के बारे में और जानेंगे कि इसका प्रकाश कैसे जगह जगह फैल रहा है और दुनिया की दूसरी भाषाओं पर किस तरह इसका प्रभाव पड़ रहा है।
0: जी हाँ श्रोताओं आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचे हमारी प्यारी हिंदी भाषा के शब्द।
1: जी
0: यानी किस तरह दूसरी भाषाओं ने हमारी भाषा के कुछ शब्दों को अपना लिया। तो विमलेश जी आपसे करें शुरुआत।
1: जी जरूर। तो अजीत जी पहला शब्द है जंगल। देखिए जब हम जंगल शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने घने पेड़, जंगली जानवर और प्रकृति का विशाल संसार नजर आता है, आता है ना?
0: जी।
1: लेकिन क्या आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाला जंगल शब्द भारत की ही देन है।
0: श्रोताओं आपको बता दें कि यह शब्द संस्कृत के जंगल से विकसित होकर हिंदी में आया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका प्रयोग वन प्रदेश या निर्जन भूभाग के लिए मिलता है।
1: जी
0: हुआ ये कि जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ के विशाल वनों के लिए स्थानीय लोगों से यही शब्द सुना।
1: जी
0: और इसे अंग्रेजी में जंगल के रूप में अपना लिया, है ना मजेदार बात?
1: हाँ बिल्कुल वही जंगल, JUNGLE।
0: जी
1: तो अजीत जी आज दुनिया के किसी भी देश में यदि अमेज़न के वर्षा वनों, अफ्रीका के घने जंगलों या एशिया के वन क्षेत्रों की बात होती है या विशेषकर बच्चों की कहानियों की बात होती है, अजीत जी एक और बात, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे शब्दकोश भी जंगल शब्द की भारतीय उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं।
0: तो विमलेश जी अब जानते हैं एक और शब्द के बारे में।
1: जी
0: वो शब्द है शैम्पू। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो शैम्पू शब्द से परिचित ना हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शब्द की जड़ें भी भारत में हैं।
1: वाह ये तो बड़ी नई और रोचक बात है।
0: जी विमलेश जी ये शब्द उर्दू के चांपो या बोलचाल वाली हिंदी भाषा के चंपी शब्द से निकला है। चांपो का अर्थ है सर दबाना या मालिश करना। भारत में सिर पर तेल लगाकर मालिश करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
1: जी बिल्कुल 18वीं शताब्दी में अंग्रेज अधिकारी भारत में सिर की मालिश करवाने लगे थे। उन्हें ये अनुभव इतना अच्छा लगा कि वे इस परंपरा को अपने देश ले गए। उन्होंने चांपो शब्द को अंग्रेजी उच्चारण के अनुसार शैम्पू में बदल दिया। श्रोताओ शुरुआत में शैम्पू का अर्थ विदेश में केवल सिर की मालिश करना ही था,
0: लेकिन बाद में जब बाल साफ करने वाले विशेष द्रव बनने लगे तो धीरे धीरे उनका नाम भी शैम्पू पड़ गया।
1: जी
0: आज ये शब्द दुनिया की लगभग हर भाषा में प्रचलित है।
1: जी
0: तो विमलेश जी ऐसी जानकारी से सचमुच एक सुखद आश्चर्य होता है ना, और ये भी पता चलता है कि भाषाएं किस प्रकार एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं।
1: जी अजीत जी एक और शब्द है जिसे अंग्रेजी भाषा ने बड़ी खुशी से अपनाया है, वो शब्द है पायजामा। ये शब्द भी भारत की ही देन है। ये हिंदी उर्दू के उपयोग में लाए जाने वाला शब्द पायजामा से आया है। ये शब्द निर्माण की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पाय अर्थात पैर और जामा अर्थात वस्त्र, यानी पैरों में पहनने वाला वस्त्र।
0: जी श्रोताओ ब्रिटिश अधिकारी भारत में रहते समय इस ढीले और आरामदायक पहनावे से बहुत प्रभावित हुए।
1: जी
0: वे इतने प्रभावित हुए कि वे इसे इंग्लैंड ले गए और अंग्रेजी में इसका उच्चारण पजामाज हो गया। आज दुनिया के लगभग हर देश में रात के आरामदायक वस्त्र के लिए यही शब्द प्रयोग में लाया जाता है।
1: तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की जानकारी कुछ प्रसिद्ध शब्दों के बारे में जो हिंदी, उर्दू या संस्कृत के हैं, लेकिन अब अंग्रेजी के साथ साथ और भी कई विदेशी भाषाओं में घुल मिल गए हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न।
0: तो श्रोताओ आज का प्रश्न है कि किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है।
1: जी
0: इसका हिंट है विमलेश जी, जरा इसका हिंट दे दें।
1: इसका संबंध खान पान से है।
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: किसी दक्षिणी भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई

0: भी भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है। इसका हिंट है,
1: इसका संबंध खान पान से है। श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: आशुतोष, इन्हीं पुस्तकों को अगर आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। आप इस चैनल पर जाकर हमारे कार्यक्रमों को या हमारे ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम पंडित बिरजू महाराज।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज के जीवन और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के बारे में उनके ही साक्षात्कार द्वारा बताया गया है।
1: पंडित बिरजू महाराज।
2: भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की भिन्न भिन्न संस्कृति, भाषा, धर्म, कला और रोचक परंपराएं इसे अनूठा और अद्वितीय देश बनाती हैं। जहां तक नृत्य कलाओं की बात है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां इतनी नृत्य कलाएं हैं।
3: भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिशी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से जाने जाते हैं।
2: आज हम बात करेंगे महान कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज की। वर्ष था सन 1958। स्थान कलकत्ता का नाट्य रंगमंच। मात्र 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी विलक्षण नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कर सबको मानो सम्मोहित सा कर दिया था। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। यही बृजमोहन नाम आगे चलकर बिरजू के जनप्रिय नाम से जाना जाने लगा। 4 फरवरी सन 1938 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है।
3: कहते हैं कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन अस्पताल में उन्हें छोड़कर सारी कन्याओं का जन्म हुआ था। इसी वजह से उनका नाम बृजमोहन रखा गया था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था। उन्हें अच्छन महाराज भी कहा जाता था। वो रायगढ़ रजवाड़े में दरबारी नर्तक हुआ करते थे।
2: राज दरबार में नर्तक होने के कारण परिवार में किसी बात की कमी ना थी। बचपन से ही उन्हें कला, संगीत और नृत्य का वातावरण मिला। 5 की आयु में ही उन्होंने तबला और हारमोनियम बजाना सीख लिया था। वो घर और दरबार के नृत्य को देख देख कर 7 की आयु में नृत्य करना भी सीख गए थे।
3: एक दिन जब बिरजू नृत्य का अभ्यास कर रहे थे तो उनके पिताजी कमरे में आए।
4: प्रणाम पिताजी।
5: जीते रहो बेटा बिरजू। बेटा, तुमने नृत्य का बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया है। आज तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया। लेकिन
4: लेकिन क्या पिताजी?
5: बेटा, कहते हैं ना, कोई भी कला तब तक अधूरी ही रहती है जब तक गुरु का आशीर्वाद और तालीम ना हो।
4: जी पिताजी, मेरे गुरु तो आप ही हैं और मेरे चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज।
5: तो अपनी कला को

0: संपूर्ण कब करोगे, यानी तालीम कब लोगे?
1: जब आप कहें। आपसे दीक्षा ग्रहण करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा।
0: लेकिन भेंट लिए बिना गंडा नहीं बांधूंगा।
1: जी, जैसी आपकी आज्ञा।
0: जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो।
1: जी पिताजी।
2: कथक नृत्य की प्राचीन परंपरा रही है कि तालीम शुरू करने से पहले गुरु शिष्यों को गंडा बांधते थे और शिष्य गुरु को दक्षिणा या भेंट देते थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। गंडा गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र रिश्ता होता है। गुरु के बांधे हुए गंडे को शिष्य अक्सर आजीवन धारण करते हैं।
3: तब उन्होंने अपने शिष्य बिरजू को गंडा बांधा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घर पर गरीबी छा गई। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा किए थे। आइए सुनते हैं।
4: पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। कृष्ण से जुड़ा नृत्य है कथक, जिसमें आप पारंगत भी हैं और कई दशकों से आप इस नृत्य की खिदमत कर रहे हैं। विरासत में मिला आपको ये नृत्य। अगर हम आपके शुरुआती दिनों की तरफ चलें, बहुत कम लोग आपके उन दिनों के बारे में जानते हैं और खासकर आपके घराने के बारे में। कैसे शुरुआत हुई?
5: हमारे पर बाबा दुर्गा प्रसाद जी, ठाकुर प्रसाद जी, उससे पहले भी नृत्य रहा है। और हम लोग हड़िया से निकले हुए लोग, 989 घर थे वहाँ पर। नवाब वाइज अली शाह ने जब बुला लिया हम लोगों को वहाँ लखनऊ में, तो राज दरबार में पूरी इज्जत, पालकी भेजना, सिपाही भेजना, बाबा को सवार करके ले जाना, तो ये सब कहानियाँ अम्मा बताती थी। जैसे हमारे अच्छन महाराज मेरे पिताजी रहे, मैं छोटा था तो वो खील बताशा जेब में पड़ा और तालीम खाने में जाके बैठा हूँ। सब लोग रियाज कर रहे हैं, तो मैं देख के तबले पे कभी हाथ मारूँ, कभी वो हारमोनियम पकड़ लूँ। फिर अम्मा को आके मैं रसोई में बताऊँ कि अम्मा मुझे भी आता, तो उस वक्त ये उंगलियाँ भी मुझे नहीं आती थी कहाँ से ये बांध के, तो मैं गिर पड़ता था। तो अम्मा कहें अभी गिर जाते हो, तुम बड़े हो जाओ तो ठीक से नाचना। तो मेरे दिमाग में ये ज़रूर रहा कि मेरे बाबा पिताजी सबका नाम इतना रहा, तो मैं भी कोशिश करूँगा उस तरह से बढ़ने की कोशिश करूँगा।
4: अगर आपके उन संघर्ष के दिनों की हम बात करें, उस संघर्ष के दिन कैसे थे आपके?
5: मेरे ख्याल से एक समय तो हमारे घर में चार चार घोड़े, बग्घी, टमटम, सबके नाम से, चाचा जी के नाम से बाबू। पर धीरे धीरे वो छीन होते होते, कहते ना एक दफ़ा तो आदमी उरूज नाम पकड़ता है, अभी धीरे धीरे सब चीज़ ख़त्म होने लगती। और यहाँ तक हुआ कि कर्जदार हो गए हम लोग घर में। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा, पर मैं रियाज करूंगा। पर अम्मा का आशीर्वाद और पिताजी का आशीर्वाद, तो बचपन में ही उन्होंने एक अम्मा को एक लफ्ज कहा था। अम्मा कहती थी बेटे को साथ ले जाओ, थोड़ा देखेगा समझेगा। तो कहे अम्मा ये परेशान करता है, कभी वो गुब्बारे मांगता है, कभी वो चॉकलेट मांगता है, तो बेहतर होगा कि मैं सिखा दूँ घर की विद्या। तो मैं 7.5 साल की उम्र में मैं उनसे गंडा बंधवाया, और वो भी मैंने 500 इकट्ठा किए थे, 25 रुपये 50 रुपये करके इनाम पाके। तो मैंने कहा बाबू, मैं अम्मा ने कहा भाई आज शागिर्द कर लो। अम्मा कह लेगा मुझे मालूम तुम्हारा लड़का अमीर हो गया है, 501 रुपये दे दिए और एक पैसा ना मुझे दिया ना अम्मा को दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। तो क्या करें, करें अब इसमें से नहीं दूंगा, ये मेरा नजराना है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरे बाबू ने मुझे गंडा बांधा, उनका आशीर्वाद। और मेरे दिमाग में हरदम जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, मेकअप किया, कॉस्ट्यूम पहना, उस वक्त चाचा और बाबू हमारे सामने होते एकदम, और ईश्वर की कृपा होती है। मैं कहता हूँ प्रभु मैं तैयार हो गया हूँ, दुल्हन बन गया हूँ, तुम अब नाचो आके मेरे बदन में तुम्हारे, क्योंकि तुमने मेरे बदन को पसंद किया है, तुम नाचो हम देखेंगे। ये मेरा
4: बहुत सुंदर बात। आपके बारे में हम सभी जानते हैं कि आप शास्त्रीय गीत संगीत में माहिर हैं, वाद्य यंत्रों पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। और एक खास बात जो ये कि आप छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हैं, वो जो बिल्कुल अभी 4 साल 5 साल की उम्र के हैं, उन्हें कैसे समझा पाते हैं इन सब चीजों को?
5: अरे उनको बड़े मजे में समझाता हूँ। तो एक मैंने अपने भतीजी को एक तिहाई बताई, तरथेता ऐसे करके, तो कल इसमें तो बहुत सा तरथेही है, कैसे याद करूँ? तो मैंने कहा बेटा सब्जी खाते हो? हाँ खाते हैं।

0: पूरी खाती हूँ। हाँ खाते हैं
1: तो सब्जी पूरी। वाह वाह, तो सब्जी तीन मात्रा, पूरी दो मात्रा। सब्जी पूरी और कचौड़ी, फिर आखिर में तो मीठा चाहिए, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे। वाह वाह वाह, तो वाह वाह, सब्जी पूरी और कचौड़ी, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे।
2: बहुत सुंदर महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
3: साथियों, बिरजू महाराज ने कथक नृत्य में कई योगदान दिए। उन्होंने लखनऊ घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया, नृत्य में नए आयाम जोड़े और देश विदेश में अपने शानदार नृत्य प्रदर्शन के द्वारा भारतीय कला विरासत के प्रति विश्व भर में सम्मान का भाव उत्पन्न किया।
4: बिरजू महाराज को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं।
3: सत्रह जनवरी 2022 को नई दिल्ली में इस महान कलाकार का देहावसान हो गया। उनकी आयु 83 वर्ष थी। उनके निधन से भारत के कला जगत को एक बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उनकी महान विरासत हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।
5: पंडित बिरजू महाराज, कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज, बाबला कोचर, अरशद अहमद खान और सुनील लोहिया, नाट्य आलेख अजीत होरो, संपादन जगबंधु जाना, निर्माण विमलेश चौधरी, विशेष आभार राज्यसभा टीवी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम बिरजू महाराज।
6: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
7: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
6: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
3: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
5: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
8: इस कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद भगत सिंह के जीवन और देश की बलिवेदी पर उनकी शहादत के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
5: भगत सिंह,
9: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
10: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
9: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
4: भगत सिंह

0: का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
1: कौन है?
2: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?
1: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहाँ चले गए थे तुम?
2: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
1: अमृतसर? अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
2: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख,
1: ये इस शीशी में क्या है?
2: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
1: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
2: मैं इसकी पूजा क्या करूंगा अमरो? ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तो देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
1: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
2: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में।
3: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
0: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाई। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
2: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
4: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
2: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुपरिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
3: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मार

0: करने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
1: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
2: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: हम अपने ही सुनने वालों को याद दिला दें, शाम 5 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। शाम 5:05 पर भुइयां के बोली कार्यक्रम में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति संघर्षों की भूमिका, इस विषय पर डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा की वार्ता, प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी। महिला सभा कार्यक्रम में शाम 5:35 पर सामयिक चर्चा का विषय होगा तस्वीरों में जिंदगी, साथी होगा क्रम कौशल विकास, प्रस्तुति मोनाली ठाकरे की होगी। शाम 7:30 पर कार्यक्रम किसान वाणी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम रजनीगंधा का प्रसारण किया जाएगा आज रात 8:15 पर। ये थी कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। इस समय 11:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब से लेकर 11:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: जैसे अंधेरी रात में खिड़की पे आओ तुम, क्या चांद और जमीन में भी कोई खिंचाव है?

ती में रात लाती है, शहर के आने से पहले ही बिक भी जाते हैं। बहुत ही अच्छा है व्यापार इन दिनों सबका। बस एक पानी की आवाज लपलपाती है, घाट छोड़ के माझी तमाम जा भी चुके। चलो न चांद की कश्ती में झील पार करें।

भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे। अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरह बुंदर की देख नहीं सकता है कोई। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नजर आती हैं मेरे यार जुलाहे। मुझको की तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे।

0: विविध भारती पर रंग तरंग गुलजार स्पेशल।
1: मैं रोजगार के सिलसिले में कभी कभी उसके शहर जाता हूं तो गुजरता हूं उस गली से, वो नीम तारीख सी गली और उसी के नुक्कड़ पे ऊंगता सा पुराना खंबा, उसी के नीचे तमाम शब इंतजार करके मैं छोड़ आया था शहर उसका। बहुत ही खस्ता सी रोशनी की छड़ी को टेके वो खंबा भी वहीं खड़ा है। फुतूर है ये, मगर मैं खंबे के पास जाकर नजर बचा के मोहल्ले वालों की पूछ लेता हूं आज भी ये वो मेरे जाने के बाद भी आई तो नहीं थी, वो आई थी क्या?

आज फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा। कहां छुपा दी है रात तूने, कहां छुपाए हैं तूने अपने गुलाबी हाथों के ठंडे भाए, कहां हैं तेरे लबों के चेहरे, कहां है तू आज, तू कहां है। ये मेरे बिस्तर पे कैसा सन्नाटा सो रहा है,

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। 12 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। फिलहाल आइए जुड़े आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचारों के लिए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारी परखने आज रायपुर में राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आज से 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू होगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। रायपुर में आज राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। इसके बाद 20 अगस्त को पूरे प्रदेश में व्यापक मॉक ड्रिल होगी। बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आयोजित इस मॉक एक्सरसाइज में राहत और बचाव कार्यों की व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जाएगा। आपदा प्रबंधन को लेकर NDMA की ओर से जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें राहत और बचाव कार्य में 0 देरी पर विशेष फोकस होगा। मौसम विभाग ने आज और कल उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि एक अवदाब का क्षेत्र बना हुआ है, इसके असर से राज्य में मानसूनी गतिविधियां बढ़ेंगी। हालांकि 19 अगस्त के बाद से बारिश में

0: कमी आने की संभावना है। इस बीच पिछले 24 घंटों में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों पर बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश कोरबा में 176.6 मिलीमीटर दर्ज की गई। बांगो बांध के 9 गेट खोल दिए गए हैं, जिनसे 39,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं दर्री बैराज के 4 गेट खोलकर 37,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी किनारे बसे 35 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर में कल मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन की राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश में डेयरी क्षेत्र के विकास, दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने, महिला दुग्ध उत्पादकों की भागीदारी बढ़ाने और दूध संग्रहण तथा विपणन व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही बस्तर और सरगुजा संभाग में डेयरी विकास को लेकर विशेष जोर दिया गया। गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले में आज से 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू होगी। 4 दिवसीय इस स्पर्धा का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू करेंगे। 21 अगस्त तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 5 संभागों से 14 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 540 खिलाड़ी विभिन्न खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। स्पर्धा में जिम्नास्टिक के मुकाबले गौरेला में खेले जाएंगे, वहीं क्रिकेट, ताइक्वांडो और कबड्डी के मुकाबले पेण्ड्रा में आयोजित किए जाएंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में 5वीं लाइन की कमीशनिंग से जुड़े नॉन इंटरलॉकिंग के अलग अलग चरणों में होने वाले कार्यों के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते सितंबर और अक्टूबर महीने में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस और टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस 25 से 30 सितंबर और 1 से 13 अक्टूबर के बीच रद्द रहेगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध शासकीय और निजी महाविद्यालयों में चालू शैक्षणिक सत्र के बीएससी कृषि ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रथम चरण की काउंसलिंग के तहत आज 18 अगस्त को पीएटी परीक्षा की प्रावीण्य सूची के आधार पर विद्यार्थियों को प्रोविजनल सीट और महाविद्यालय का आवंटन किया जाएगा। नागपंचमी के अवसर पर अंबिकापुर के मल्टीपर्पज स्कूल मैदान में कल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने विजेता पहलवानों को पुरस्कृत किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारी परखने आज रायपुर में राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले में आज से 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू होगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 12 बजे हैं। शाम 5 बजे तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। बारहवां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और विशेषज्ञ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आम सहमति बनाना और पर्यावरण के क्षेत्र को मजबूत करना है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना उत्कृष्ट निर्णय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश

0: प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया। रियासी के सदिनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। सभी इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज शाम लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुड्डा पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार थुजार के साथ मुकाबला करेंगी। मिक्स डबल्स के पहले दौर में भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे को कनाडा की जोड़ी जोनाथन लाई और क्रिस्टन लाई से हार का सामना करना पड़ा। इस बीच एक अन्य मिक्स्ड डबल्स मुकाबले में आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तुर्की के एमरे सोनमेज और यासेमेन बेक्तास से खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज करीब आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 366 अंक गिरकर 77,362 पर और निफ्टी 87 अंक की गिरावट के साथ 24,201 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

बसेरा फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज आर डी बर्मन की तर्ज। आशा भोसले, आर डी बर्मन, गुलजार, इजाजत।

0: अशोक भोसले की आवाज आरडी बर्मन की तर्ज है। फिल्म का नाम है नमकीन।
1: एक मूड, एक कैफियत गीत का चेहरा होता है। कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजूं से धुन की लकीरें खींच दो, तो नगमा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। बस इतनी सी जान होती है गाने की, एक लम्हे की जितनी। हां, कुछ लम्हे बरसों जिंदा रहते हैं। गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुरियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो कहते हैं, हां वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाता था तो एक आवाज सुनाई दिया करती थी,

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

आइए सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। इस कार्यक्रम में हर रोज हम एक इबारत पोस्ट करते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और आज की इबारत भी पोस्ट हुई और आप सभी जानते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। उस शख्स को सलाम जो रात में घोलता है चांद की मिसरी।

जिसका चांद पर कॉपीराइट है। उस शख्स को सलाम जिसे फूलों की बेलें अरबी में लिखी आयतें नजर आती हैं। उस शख्स को सलाम जिसने उम्र की लंबी सड़कों पर 92 बरस पार कर लिए हैं, जिसे बचपन के अच्छे सच्चे बाबूजी अभी भी याद आते हैं, जिसे वो गलियां याद आती हैं जिन्हें वो छोड़ आया। उस शख्स को सलाम जिसने हर एक गम को गले से लगाया है, जिसने भराई बूंदों को बरस जाने दिया है, फिर भी जिसके लिए जिंदगी खूबसूरत है और जो कहता है जिंदगी की लौ ऊंची कर चलो। उस शख्स को सलाम जिसे बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती हैं, जिसके लिए पंछी सुरीला सलाम भेजते हैं। सलाम उस शख्स को जिसने हमारे लिए 7 रंग के सपने चुने हैं, जो हाथ पकड़ता है हमारा तो पांव जमी पर नहीं होते। उस शख्स को सलाम जो हर काम दिल से करता है, सपने में मिलता है और रात का सुरमा ले आता है। सलाम उस शख्स को जो जानता है कि कागजों की कश्तियों का कहीं कोई किनारा नहीं होता, जो जानता है कि बिरहा की रात में जलना क्या होता है। देखी ना, छोटी सी कहानी से सारी वादी भर गई, जिंदगी गुलजार है। आज के इस कार्यक्रम में गुलजार साहब को सलाम। और गुलजार साहब से जुड़ी कुछ पहेलियां आज के इस कार्यक्रम में हम पूछेंगे। बहुत बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं, बहुत बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बातें कही हैं। आप कितना जानते हैं गुलजार साहब को और गुलजार साहब से कितना प्यार करते हैं, आज इसकी आजमाइश भी होगी इन पहेलियों के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। और जैसा कि आज की इबारत कहती है कि रात में घोलें चांद की मिसरी, दिन के गम नमकीन लगते हैं, तो उसी गाने से करते हैं आगाज। महिला स्वर किसका है इस गाने में, ये बताइए।

सुरीली बोलियां बोलने का संदेशा देते हैं गुलजार और विविध भारती। हमेशा सुरीली बोलियां ही बोलती है। क्या आप बता सकते हैं कि गुलजार साहब का जन्म कहां हुआ था? और दूसरा सवाल यह है कि साहित्य से जुड़े दो बहुत बड़े पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं, वो पुरस्कार कौन से हैं? इन दोनों सवालों के जवाब दीजिए। तब तक हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। सुलक्षणा पंडित की खनकती आवाज, ये बहुत सारे श्रोताओं ने कहा। कुछ श्रोताओं ने इसे लता मंगेशकर की आवाज समझ लिया, ये गलत जवाब था। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं, बचपन के बाबूजी के साथ जंगल जंगल बात चली है, फूल खिला है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि गुलजार हर फन में माहिर हैं। वो अस्पताल के मायूस माहौल में लिखते हैं, इस अस्पताल में सब कुछ है और माहिर डॉक्टर भी सांसें मशीनें के जरिए चलती हैं और बोतलों में भरकर खून मिलता है, लीवर भी ठीक दाम पर मुहैया रहता है। उन्होंने एक गुलजार साहब की कोई रचना शेयर की है हमारे एक श्रोता ने। इसके अलावा और भी कई श्रोता हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। जैसे एक श्रोता है जिन्होंने आज की इबारत के सारे गाने, ऑलमोस्ट सारे गाने, बारिश कम कम लगती हैं, नदियां मध्यम लगती हैं वगैरह चुनकर लिख दिए हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं, गुलजार साहब की कलम ने हमें सिखाया है कि दर्द भी खूबसूरत हो सकता है और खामोशी भी बोलती है, शब्दों का ऐसा जादू कम लोगों को आता है। एक और श्रोता हैं जिन्हें आज का सुबह जो आज के फनकार कार्यक्रम था वो बहुत पसंद आया। एक और श्रोता हैं जिन्हें गुलजार और विशाल भारद्वाज का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है और उन्होंने कुछ फिल्मों के नाम लिखे हैं। एक श्रोता हैं जो जर्मनी से हमारे तमाम विविध भारतीय परिवार को सलाम कर रही हैं और आज का ये कार्यक्रम सुन रही हैं। इसके अलावा तमाम श्रोता हैं जो बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे और अपनी बातें कर रहे हैं। सवाल एक बार फिर से दोहरा दें, गुलजार साहब कहाँ पैदा हुए थे? साहित्य के दो बड़े पुरस्कार उन्हें मिले हैं, वो पुरस्कार कौन से हैं? आज के इस कार्यक्रम में कुछ बहुत कठिन पहेलियां भी पूछी जाने वाली हैं। चलिए अब ये गाना जो बहुत ही शानदार गाना है ये आप तक आ रहा है और आपको ये भी बताना है कि अगर तीन गुलजार सॉन्ग्स, टॉप थ्री गुलजार सॉन्ग्स, योर मोस्ट फेवरेट्स मैं लिखने को कहूं तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर अपने तीन सबसे ज्यादा पसंदीदा गाने कौन से लिखेंगे आप? विविध भारती पर सुरीला सफर कार्यक्रम में हैप्पी बर्थडे गुलजार साहब।

1978 में आई फिल्म घर का ये गाना, एक और श्रोता है जो कह रही हैं कि वो नीदरलैंड्स में ये कार्यक्रम सुन रही हैं। और देखिए ना कि न्यूज़ ऑन एयर एक ऐसा एप्लीकेशन है और एलेक्सा डिवाइस जिसके जरिए पूरी दुनिया में विविध भारतीय हमारे श्रोता सुनते चले जा रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में लोगों को विविध भारती सुनाई दे रहा है। गुलजार साहब का जन्म दीना में हुआ था और साहित्य के जो दो बड़े पुरस्कार उन्हें मिले हैं वह है साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य अकादमी उन्हें अपनी किताब धुआं के लिए मिला था और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड उन्हें मिला था साल 2023-24 में। एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है, उनकी नज्मों में पीला चांद कैसे शाख में अटक जाता है, आकाश जमी हो जाता है, गीला चांद कैसे खिल जाता है। गुलजार साहब कहते हैं चांद पर उनका कॉपीराइट है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गुलजार ने रोजमर्रा के बिंब जैसे चाय की प्याली, धूप, खिड़की, कोहरा, अलमारी जैसी आम चीजों को कविता का हिस्सा बना दिया है। यही होता है एक बड़ा लेखक। झेलम जिले के दीना में गुलजार साहब का जन्म हुआ था। ये बहुत सारे श्रोताओं ने ये बातें लिखी हैं और इसके अलावा सुलक्षणा पंडित वाली बात भी बहुत बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि गुलजार साहब का काम कितना ज्यादा सराहा जाता है। गुलजार साहब को कुल कितने फिल्मफेयर पुरस्कार मिले हैं ये बताइएगा। कठिन सवाल है लेकिन खोज कर बताएं, सोच कर बताएं, पर बताएं जरूर। और दूसरी चीज, जब गुलजार साहब कहते हैं बचपन के एक बाबूजी थे, अच्छे सच्चे बाबूजी थे, तो क्या याद आता है?

आशीर्वाद फिल्म का ये गाना सभी श्रोताओं की, सभी सुनने वालों की आंखें नम कर देता है। बहुत बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं।

श्रोता लिखती हैं, एक था बचपन बहुत अच्छा लगता था, पर अब बाबूजी नहीं हैं तो ये गाना भाव विफल कर देता है। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि मुझे मेरे पिताजी सुनाते थे बचपन में ये गीत, एक था बचपन। उनके पिता मेरे दादाजी उन्हें छोड़कर चले गए थे, बाद में पता चला कि वो साधु बन गए थे। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि हृदय को झंझोड़ कर रख देता है ये गाना। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि बाबूजी के रूप में अशोक कुमार नजर आते हैं। इसके अलावा कई श्रोता हैं। एक और श्रोता लिख रही हैं, गुलजार की आंखों में उदास उदास चमक उनकी आंखों पर अक्स डालती रहती है, यही उदास चमक उनकी शायरी का लहजा भी है। कई श्रोताओं ने जवाब दिया है कि गुलजार साहब को कुल 22 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले हैं। 22 फिल्मफेयर पुरस्कार, जरा सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा कीर्तिमान। एक और श्रोता लिखती हैं कि जब पिताजी याद आते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि सुरीला सफर कार्यक्रम में आपने जो गुलजार साहब के गाने सुनवाए वो बहुत अच्छे लगे। कमेंट्स की इतनी लंबी लकीर आज है कि सभी कमेंट्स पढ़ना भी मेरे लिए नामुमकिन होता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये है कि आप में से ज़्यादा श्रोताओं के कमेंट्स शामिल किए जा सकें। एटलीस्ट मैं आपके कमेंट्स पढ़ तो सकूं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि 116 चांद की रातें एक तुम्हारे कांधे का तिल जैसी गहराई है, गुलजार साहब के अल्फाज में। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि आज कुछ कहने का मन नहीं, वो बस आंखें बंद करके सुरीले गाने सुनती रहना चाहती हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता, उनका कहना है कि सावन की बरसती बूंदों ने आज मुझे कान में आकर कहा कि आज का ये कार्यक्रम यूनुस खान पेश करने वाले हैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा एक और श्रोता है जिनका ये कहना है कि गुलजार साहब कि इस कार्यक्रम में जिस तरह से आपने आगाज किया, आंखें नम हो गईं। और इसके अलावा गुलजार साहब को जो अवार्ड्स मिले हैं उन सब की लिस्ट हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने यहां पर पेश की है। तो ये सवाल वापस के गुलजार साहब के टॉप 3 सॉन्ग्स आपकी नजर में कौन से हैं, आपके सबसे पसंदीदा दिल के करीब 3 गुलजार गाने हमें बताइए। और अब आ रहा है वो गाना जो हम सब के लिए बहुत करीब, बहुत अनमोल। अगर कभी गुलजार साहब से आपकी मुलाकात हो जाए तो पहला वाक्य आप क्या कहेंगे?

जिंदगी गले लगाले वाली पुकार, गुलजार साहब का ये गाना आज के इस कार्यक्रम में यूं लग रहा है कि कितने गानों को शामिल करें और किन गानों को छोड़ दें। आज के इस कार्यक्रम में हमने क्या लिखा, सलाम उस शख्स को जिसने हर एक गम को गले लगाया है, सलाम उस शख्स को जिसने भराई बूंदों को बरस जाने दिया, फिर भी उसके लिए जिंदगी खूबसूरत है और वो कहता है जिंदगी की लौ ऊंची कर चलो। कितनी पॉजिटिविटी, कितना हौसला। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं। एक श्रोता कहते हैं कि जैसे ही गुलजार हमें मिलेंगे हम कहेंगे हमारी उंगली पकड़कर कुछ गीत हमें भी सिखा दो ऐसे प्यारे प्यारे से। इसके अलावा एक श्रोता लिख रही हैं सांस लेना भी क्या आदत है, जिए जाने की क्या रवायत है। इसके अलावा एक और श्रोता है, जिंदगी हर चीज़ का जवाब नहीं देती, सवाल

0: सवाल करती रहती है, इसी में जिंदगी का विकास है। जवाब का खोज, जवाब की खोज जिंदगी है। तमाम श्रोता जो हैं वो अपनी बातें कह रहे हैं। एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि मेरी पसंदीदा तीन गाने हैं तो उसे नाराज नहीं, दिल ढूंढता है और आने वाला पल। एक और श्रोता है, उनके तीन पसंदीदा गाने हैं जिंदगी गले लगा ले, एक था बचपन, और तुम आ गए हो नूर आ गया है। ऐसे तमाम श्रोताओं की बातें लगातार हम तक चली आ रही हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि गुलजार के भीतर एक छोटा सा बच्चा छुपा हुआ है, इसीलिए तो वो कायदा तोड़ के सोचो वाली बात लिख सकते हैं। क्या बात है। और इसके अलावा और भी कई श्रोता हैं, मुसाफिर हूं यारों तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं और तुझसे नाराज नहीं, ये उनकी पसंदीदा नज़में हैं, ये एक श्रोता ने लिखा है। और उसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं, कसैली रात के हाथों पर रखती चांद की मिश्री, ये दिन रूठा हुआ था धूल में लिपटा हुआ, कब से तेरे आंचल से चेहरा पोंछ कर बहला लिया है उसको, मैं अपने गले लग गया नाराज सा खुद। बहुत ही प्यारी बात लिखी है। और अब चलिए आगे चलते हैं एक श्रोता के कमेंट के साथ कि पिताजी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, 8 साल की उम्र में उन्होंने मुझे साइकिल चलाना सिखाया था। अब आ रहा है अगला गाना जो जिसमें बेलें और आयतें वाली बात कही गई है। बताइएगा ये फिल्म किस बरस आई थी और इसके मुख्य सितारे कौन थे।
1: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
2: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

अंधी फिल्म का ये गाना आपने सुना, क्या आप बता सकते हैं कि सुचित्रा सेन ने और कौन कौन सी हिंदी फिल्मों में काम किया था? अब जवाब तो आ ही गया था आप सभी का, संजीव कुमार और सुचित्रा सेन, और इसके अलावा कई श्रोताओं की बातें आई हैं, जैसे त्रिवेणी गुलजार साहब जो तीन लाइनों की कविताएं लिखा करते थे, उसमें से कुछ श्रोताओं ने त्रिवेणी की कविता लिखी है। अब एक श्रोता ने ऐसी कविता लिखी है जो धूम्रपान का जिक्र जिसमें आता है, और हम उसे अभी यहाँ नहीं पढ़ रहे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गुलजार साहब जिंदगी में बेमिसाल कामयाबी और शोहरत मिलने के बावजूद उनके पैर जमीं पर ही टिके हैं, इसलिए वो हमें अपने से लगते हैं। जिंदगी तुझे मैंने हर मोड़ से गुजरते हुए देखा, ये बात लिखी है हमारे एक और श्रोता ने। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कुछ अपनी बातें लिखी हैं, और गुलजार साहब ने जिंदगी के हर रंग को छुआ है, उन्होंने कभी अपनी नज्मों से कभी अपने गीतों से कुदरत के दिए हर रंग को उन्होंने इस तरह से अपनी कलम से कागज पर उतारा है जो हर किसी को अपना और दिल के करीब लगता है। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं गुलजार संजीव कुमार और आरडी बर्मन बेमिसाल जोड़ी। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं एक किस्सा कि गुलजार आरडी बर्मन के घर पहुंचे तो उन्हें दिखा कि पंचम दुर्गा पूजा के लिए कुछ धुनें बना रहे हैं। गुलजार वहीं बैठ गए और दोनों को सुनने के बीच उन्हें एक धुन बहुत ज्यादा पसंद आई, और उसके अलावा उस धुन को सुनने के बाद उन्होंने तुरंत पंचम से कहा कि इस धुन का इस्तेमाल वो अपनी एक फिल्म के गाने के लिए करना चाहते हैं, और वो जो गाना है वही है तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। एक और कठिन सवाल पूछते हैं कि ये जो तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ये जो किस्सा हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वो बांग्ला गाना कौन सा था जिस पर ये गाना आधारित था? कठिन और आसान दोनों ही, क्योंकि जवाब पता हो तो आसान, नहीं पता हो तो कठिन हो जाता है सवाल। सुचित्रा सेन ने इसके अलावा कौन सी और हिंदी फिल्मों में काम किया था ये बताइए, और इसके अलावा ये भी कि गुलजार साहब को पहला फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म के लिए और किस काम के लिए मिला था ये भी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शहर को छोड़कर बड़े शहर का रुख किया है आपने रोजगार या पढ़ाई के सिलसिले में? किस शहर को छोड़ आए हम, किन गलियों को छोड़ आए हम,

क्या शानदार गाना। और हमने आपसे पूछा था वो कौन सी गलियां, वो कौन सा शहर छोड़ आए आप, और उसकी याद सताती है। एक शब्द का जवाब आया है, जेते जेते पोथो होले देरी। ये बांग्ला गीत था जिस पर तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं ये गाना बना था, जेते जेते पोथो होले देरी। ये गाना पंचम ने खुद गाया है। इसके अलावा एक और श्रोता का जवाब, बम्बई का बाबू, देवदास, ममता, आंधी, चंपाकली, ये हैं सुचित्रा से इनकी हिंदी फिल्में। क्या बात है, विविध भारती परिवार की जय हो। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि माचिस का गाना सचमुच दिल छू लेने वाला है। मैं सीहोर की गलियों को छोड़कर आया हूं और आज भी याद करता हूं पढ़ाई वाले दिन। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने सुचित्रा सेन की एक फिल्म का नाम बम्बई का बाबू लिखा है। एक और श्रोता जिन्होंने कहा है कि गौरी प्रसन्न मजूमदार का लिखा हुआ था, जेते जेते पोथो ले देरी। क्या बात है, सुंदर, अच्छी बात, ये बढ़िया बात। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि गुलजार अपनी कविता और गानों में चांद का प्रयोग बार बार क्यों करते हैं। शायद इसलिए कि गुलजार के लिए चांद सिर्फ आसमान में दिखाई देने वाली चीज नहीं बल्कि पूरी काव्य दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है। शायद इसीलिए गुलजार ने मजाक में कहा था, लगता है चांद पर मेरा कॉपीराइट है। गुलजार साहब चांद को बहुरूपिया भी कहते हैं। कितनी प्यारी और महीन और शानदार बात है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि गुलजार साहब को पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1971 में मिला था आनंद फिल्म के लिए बेस्ट डायलॉग का अवार्ड। तो बताइए आनंद फिल्म के कौन कौन से गाने और कौन कौन से संवाद हैं जो आपके दिल में छप गए हैं, आपके दिल में महकते हैं, चमकते हैं। एक और श्रोता, ग्वालियर छोड़ाए छोड़ाए हम वो गलियां। एक और श्रोता, भोपाल छोड़ाए छोड़ा है हम वो गलियां। एक और श्रोता, राजपीपला से लंबा छोड़ाए और छोड़ाए हम वो गलियां। कितने श्रोता हैं जिन्होंने अपने अपने शहरों को छोड़ा और अपनी जिंदगी बनाने के लिए, अपनी जिंदगी की तलाश में दूसरे शहरों की तरफ निकल आए हैं। तो ये तमाम बातें, लेकिन अब ये भी तो बताइए कि गुलजार साहब को एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड किस गाने के लिए मिला। तब तक जरा गूंज रही है एक बहुत ही प्यारे गायक की आवाज, उसका नाम भी आपको बताना है। किसकी आवाज में है ये गाना, यही आपको है बताना।

गुलजार साहब को ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार किस गाने के लिए मिला, ये भी बताइएगा। और ये आवाज किस बेमिसाल गायक की है। सुरीला सफर गुलजार स्पेशल विविध भारती।

बहुत बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आ गए कि यह अनूप घोषाल की आवाज है। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि गुलजार साहब ने भगवान बुद्ध की कई मूर्तियों का कलेक्शन कर रखा है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जब हम समझ नहीं पाते, खुश हो, निराश हो या हैरान, कई बार हम दो राहे पर खड़े होते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत। जिंदगी से हम चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। तभी मन खुद से सवाल करता है कि हमने जिंदगी से ये तो नहीं चाहा था। गुलजार एक बेजोड़ गीतकार हैं। वो जो शब्द रचते हैं वो सिर्फ उनके नहीं होते, हमारे और आपके होते हैं। 1983 में आई फिल्म मासूम का ये गाना दिल के करीब है। इसके अलावा आनंद का एक डायलॉग जो बहुत ही मशहूर हुआ वो है, बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। ये भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो भागलपुर छोड़ाए हम वो गलियां। एक और श्रोता है जो करतारपुर छोड़ाए और कहते हैं कि अपने शहर की बहुत याद आती है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है, मौत तो एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको डूबती नज्मों में जब नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए जब चांद उफक तक पहुंचे, दिन न भी पानी में हो, रात किनारे के करीब, ना अंधेरा हो ना उजाला, ना भी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। ये आनंद फिल्म का संवाद जो बहुत सारे श्रोताओं के दिल के करीब है आपने लिखा, मुझे लगा कि ये जरूर पढ़ना चाहिए। तमाम श्रोताओं के कमेंट, तमाम श्रोताओं का गुलजार के प्रति प्यार जो है वो लगातार नजर आ रहा है। और गुलजार साहब की वो कौन सी कविता है जो आपके दिल के करीब है, कुछ पंक्तियां हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। और जिस गाने के लिए गुलजार साहब को मिला था ग्रैमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड, वो था सारी दुनिया में बजा था भारतीय कलाकारी का।

0: डंका जब जय हो को मिला ग्रैमी और जय हो को ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। ये है कमाल।
1: आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरीवार नीले आजमाने के तले
0: है। एक श्रोता लिखते हैं कि बासु भट्टाचार्य बोलते थे कि गुलजार भोर या सांझ की तरह हैं, जिसका प्रकाश इतना कोमल है कि अपने पीछे कोई परछाई नहीं छोड़ते। और इसके अलावा तमाम श्रोताओं की अपनी बातें हैं। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि जिंदगी खूबसूरत है।

भाई खट्टा मीठा फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में है और बहुत सारे श्रोताओं के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि शादी के बाद हम अपने मायके की गलियां छोड़ आए, बहुत याद आती है। राजेश रोशन का संगीत था ये भी हमारे एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर कुमार के जन्मदिन पर मैं खंडवा जाता हूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आप भी तो अपना शहर छोड़कर आए हैं, उन्होंने मेरे शहर का नाम भी लिखा है। इसके अलावा एक और भी श्रोता है जो कहते हैं गुलजार बहुत सहज सरल भाषा में अपने गाने लिखा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में इतना डूब गई हमारी एक श्रोता कि उनका दूध का भगोना जल गया। बताइए क्या कहें हम, किस फिल्म का है ये गाना जरा बताइए।

किनारा फिल्म का ये गाना एक श्रोता है जिन्हें हेमा मालिनी और जितेंद्र याद आ गए। एक श्रोता है जिन्हें लिखा वक्त की जेब में सुराख बहुत हैं, हंसती खेलती पहचाने गिर जाती हैं, चेहरों के नक्श तो पानी के बुलबुले हैं, एक हवा का झोंका और सब कुछ ओझल, उन्होंने अपने एहसास बयां किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं, एक और श्रोता है जो कहते हैं कि थोड़ा थोड़ी की जरूरत है, सच में जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है जब किशोर कुमार इस गाने को गाते हैं। नाम गुम जाएगा ये गाना बहुत ही सारे श्रोताओं का पसंदीदा गाना है। कई श्रोता हैं जिन्हें आज का ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखिए कि क्या हो रहा है।

0: या मध्यम लगती है।
1: ये फिल्म आपने किस शहर में देखी थी जरा बताएं तो।
0: छोटे छोटे शहरों से खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले।
1: और इस फिल्म के निर्देशक कौन थे?

बहुत सारे श्रोताओं ने अपने जवाब दिए हैं। बंटी और बबली फिल्म का ये गाना, शाद अली निर्देशक। किसी ने फिल्म देखी पटना में, किसी ने देखी भोपाल में, किसी ने देखी इंदौर में। बहुत बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आ गए हैं। गुलजार स्पेशल, सुरीला सफर।

0: दो दूनी चार 1969 में बनी फिल्म बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए, छाओ छम से नीचे कूदी, क्या पंक्ति है। ये सभी श्रोताओं को बहुत ही पसंद है गाना, और गुलजार साहब स्पेशल को आगे बढ़ाते हुए अब अगला गाना।
1: छोटी बातें।

बहुत सारे श्रोता आनंद फिल्म के इस गाने के लिए बहुत बहुत बहुत प्यार भेज रहे हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब एक ऐसा गाना जिसमें गुलजार साहब के शब्दों की कारीगरी और बाजीगरी नजर आती है और जब मौका आता है तो वो यूं भी लिख देते हैं। किस फिल्म का है ये गाना, फटाफट बताना।

0: धन्नों का गुस्सा और धन्नों की आंखों में क्या बात है, गुलजार साहब के बोल, पंचम की आवाज, फिल्म का नाम किताब, गुलजार स्पेशल। ये गाना किस फिल्म का है?
1: सपने में मिलती है तो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है।
0: 1963 से आज तक जारी है एक सुरीला सफर।

ये वो गाना है जिसके लिए गुलजार साहब को नेशनल अवार्ड मिला था। वैसे उन्होंने कुल कितने नेशनल अवार्ड जीते हैं ये भी बता सकते हैं आप। देखिए ना, सारी वादी भर गई।

गुलजार साहब को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां। सुरीला सफर कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के साथ तय किया और आज थी गुलजार साहब के गानों की बारिश।

दोस्तों, आंखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग हैं और परमात्मा का दिया हुआ अनमोल उपहार। इन्हें केवल देखने का माध्यम कहना पर्याप्त नहीं है। भीतर का संसार इन्हीं दो आंखों में समाया हुआ है। कभी ये मुस्कुराकर प्रेम प्रदर्शित करते हैं तो कभी करुणा और संवेदना का सारा संसार बयां कर देती हैं। जब किसी के मन की बात समझनी हो तो उसकी आंखों में झांकना चाहिए। इन आंखों को परमात्मा ने बड़ी अद्भुत व्यवस्था दी है। देखने के साथ आंखों को बंद करने की भी क्षमता दी है। जब चाहें तो संसार देखें और जब चाहें आंखें मूंद लें। जब आंखें बंद हो तो आत्मचिंतन करें, ध्यान करें, ताकि इन्हें आराम करने और नींद लेने का अवसर मिले और आंखें स्वस्थ रहे। आंखों को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल इन आंखों को बंद करने, नींद लेने का अवसर कम ही मिल पाता है। इनकी व्यस्तता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है।

आज के समय में हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का अत्यधिक उपयोग हमारी आंखों पर बुरा प्रभाव डाल रही है। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, सूखापन, धुंधलापन और सर दर्द जैसी समस्याएं आने लगी हैं। कम उम्र के बच्चे भी इन समस्याओं से जूझने लगे हैं। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगने लगा है। धूल, प्रदूषण, तेज धूप, अनगिनत दिनचर्या और अत्यधिक व्यस्तता, भागदौड़ भी इन आंखों की रोशनी को प्रभावित कर रही हैं। अगर समय रहते इन समस्याओं पर, आंखों की उचित देखभाल पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंखों के कमजोर होने का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए आंखों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इन आंखों के सिवा जीवन में रखा ही क्या है।

0: क्या है।
1: अपनी आँखों का नियमित देखभाल करना चाहिए। संतुलित आहार, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, गाजर, मौसमी फल और पर्याप्त पानी आँखों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पढ़ते समय उचित प्रकाश का उपयोग करें। स्क्रीन से बहुत अधिक तो हम बच नहीं सकते, लेकिन बीच बीच में आँखों को बंद करके आराम देना चाहिए। समय समय पर आँखों की जाँच भी कराना चाहिए। ज्यो आँखें न सब देखिए, आँख न देखी जाए। जिन आँखों से हम दुनिया देखते हैं, वही आँखें खुद को नहीं देख पाती। ये आत्मचिंतन का भी विषय है। हम दूसरों को देखते हैं, परखते हैं, पर अपने भीतर झांकने का प्रयास कम ही करते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए अपनी बाह्य दृष्टि के साथ साथ अंतर्दृष्टि का भी ध्यान रखना उचित होगा, ताकि आंखों में छुपे ये राज कोई आसानी से न जान सके, न पढ़ सके।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। त्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा म्यांमा की थेत हतार थुजार को हराकर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए सतत पर्यावरण के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 और 2022 के बीच प्रदूषण उत्सर्जन की तीव्रता में 37% से अधिक की कमी की है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक स्वतंत्र, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण तथा योगदान को बेहद महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर

0: सर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा करना बंद कर देना चाहिए।
2: 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया, तिरंगा हो जनगण मन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाए।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा गए थे तब भी पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 ही छंद गाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि डेरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पूर्वोत्तर को भारत का विकास इंजन बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इस क्षेत्र को एकीकृत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के करीब लाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
3: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी डिटेल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने जेएसएससी डिटेल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाश अभियान चलाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रमुख साहसिक अभियान अपराजिता परांगला 2026 को रवाना किया। 30 दिन का यह अभियान 250 किलोमीटर लंबे परांगला दर्रे से होकर गुजरेगा जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। तीनों सेनाओं के महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। श्री सिंह ने कहा कि ऊंचाई वाले इस अभियान में युवा बालिकाओं की भागीदारी देश की महिलाओं के साहस, दृढ़ संकल्प और बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवां संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

0: के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। केरलम में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है। ये इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विझिंजम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज के 2 कंटेनर को रवाना किया।
1: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विझिंजम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुँचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि युद्ध की बदलती प्रकृति ने सशस्त्र बलों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और एकीकृत करने को अनिवार्य बना दिया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने निगरानी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पर भारतीय सैन्य समीक्षा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विशेषकर 2020 के बाद से युद्ध में तीव्र और व्यापक परिवर्तन आया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी ने नागरिकों की मौत और घायल होने, मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन गुमशुदगी और संचार व्यवस्था बंद किए जाने की खबरों पर गंभीर चिंता जताई। संगठन ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की आवाजाही पर प्रतिबंध और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों के लिए 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज घोषित किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा फर्जी है और वायरल वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं किया है। मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण झारखंड और आसपास के राज्यों में मौसम पूरी तरह बदल गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर और पलामू समेत राज्य के बड़े हिस्से में रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: बंगाल की खाड़ी से उठा गहरा दबाव आज सुबह रांची से महज 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केंद्रित हो गया है। इसके प्रभाव से झारखंड के उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू और गढ़वा जिलों के लिए भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में ये डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बिहार की ओर आगे बढ़ेगा, जिसका असर आगामी 2 दिनों तक झारखंड में रहने की उम्मीद है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इस बीच मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन में उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर भारत में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, केरल और माही में आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रीसा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसाइया अरुमनैया गम को अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चव्हाण को द्रोणा आचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा कि

0: राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यांमा की थेत हतार थुजार को सीधे सेटों में हराकर भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अगले दौर में उनका मुकाबला कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिशेल ली से होगा। इस बीच मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारतीय जोड़ी आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तथा तुर्की की जोड़ी एमरे सोनमेज और यासेमेन बेक्तास के बीच मैच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया है। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 77,374 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की गिरावट के साथ 24,206 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। त्रिशा जौली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने सदाबहार नगमे।

0: सन्नाटा फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज में था।
1: राही कोई भूला हुआ, तूफानों में खोया हुआ, राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है।
0: लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में प्रेम पत्र फिल्म का गाना।

सदाबहार नगमे और अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में कशिश फिल्म का गाना, गुलजार के बोल, संगीत कल्याण जानन जी का।

0: अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और ममता जी देखिए बस मेरा मन कर रहा है कि आपसे कुछ सवाल कर लिए जाएं।
1: अच्छा कीजिए कीजिए। सवाल से वैसे डर लगता है कि पता नहीं क्या वो कौन सा सवाल आप पूछ बैठेंगे।
2: पिछली बार आप मुझे चौंका रही थी तो मैंने कहा हम भी चौंका लेते
1: लेकिन हम डरने वाले थोड़ी ना।
2: बताइए वो तो मुझे पता है। ये बताइए कि आपने गाड़ी चलाई वाहन चलाया दो पहिया चार पहिया कुछ चलाया आपने?
1: क्यों बताएं? नहीं बताएंगे
2: बताना तो पड़ेगा
1: क्योंकि हम जानते हैं अगला सवाल क्या होगा कि आपको डर लगता है कि नहीं।
2: वो तो वो नहीं है बिल्कुल।
1: देखिए हम सच बताएं तो साइकिल चलाना बचपन में शुरू किया और गिर गए, चोट लगी, सिर से खून बहने लगा।
2: ओह माय गॉड।
1: और खूब खून की धारा बही। तब से साइकिल चलाने से बड़ा डर लगता था
2: क्या?
1: और साइकिल चलाना छोड़ ही दिया। हाँ। फिर घर में किसी ने कहा ही नहीं कि साइकिल चलाना सीखो जबकि जरूरी था। और लेकिन हाँ लड़कियों को हम साइकिल चलाना देखते थे तो मन बहुत करता था कि हम भी चलाएं। लेकिन वो जो डर है ना
2: बैठ गया,
1: वो डर बैठ गया, वो डर निकला नहीं। तो बस यही कहना है श्रोताओं से कि अगर कोई बात मन में डर के रूप में घर करती है तो घर वालों का ये कर्तव्य होता है कि उस डर को निकालें।
2: बिल्कुल सही।
1: और अगर डर नहीं निकालेंगी तो लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी, सपने नहीं देख पाएंगी। सपने देखने के लिए डर निकालना और आत्मविश्वास पैदा करना बहुत जरूरी है।
2: और उनकी जो सीखने की ललक होती है उसमें रंग में भंग भी नहीं डालना चाहिए, है ना?
1: तो बस जी, तो आज तो सारे विषय एक साथ समेट लिए गए हैं एक ही बात में। एक ही बात
2: जी। और सखी विशेष में हम बात करेंगे नीरू शर्मा जो इंफीबीम की सह संस्थापक है, इनके बारे में बात करेंगे।
1: और मुहावरों की जो दुनिया है ना रंग में भंग डालना, तो हमने जो मुहावरे बताए हैं हमारे श्रोता कौन कौन से मुहावरों का प्रयोग करते हैं और आज के दौर में मुहावरों का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं।
2: बिल्कुल। और जैसे कि ममता जी जब लंच का टाइम होता है तो कहते ही घर में कि भाई जल्दी परोसो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इस तरह

0: की बातें होती है ना। और ये भी होता है कि घोड़े बेचकर सोना, मतलब अब सोते ही रहोगे क्या, कुछ करोगे नहीं, इस तरह की बातें मुहावरों में अब
1: बंदर क्या
0: होती
1: जाने
0: रहती
1: अदरक
0: है।
1: का स्वाद
0: हाँ
1: खाने के लिए।
0: बिल्कुल
1: तो
0: हाँ
1: ऐसे कौन
0: जी
1: कौन से मुहावरे हैं जो हमारे श्रोता याद रख सकते हैं और मुहावरों का प्रयोग करते हैं किन मुद्दों पर, तो वो विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर लिखें और साथ में ये बताएं कि जो हमारा एक विषय है बेटियों को सिर्फ संस्कार नहीं आत्मविश्वास से निडर बनाएं, और अगर छोटे छोटे डर उसमें रोपते रहेंगे या संस्कारों के बोझ से आप दबा देंगे तो उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं पैदा होगा।
0: बिल्कुल
1: संस्कार सिखाएं जरूर लेकिन आत्मविश्वास की शर्त पर नहीं, आत्मविश्वास उनके अंदर झकझोरें पैदा
0: बिल्कुल
1: करें।
0: सही बात है, क्योंकि आगे चलकर वो जो भी काम करे तो उसमें उन्हें संकोच ना हो अपनी बात कहने में। कई बार होता है ममता जी, अक्सर लड़कियां मतलब संकोच करती, मन की बात कहना होता, कुछ करना चाहती तो 10 बार सोचती कहें कि ना कहें, कोई मना तो नहीं कर देगा, डांट तो नहीं पड़ेगी। तो ये बच्चों के मन, लड़कियों के मन से निकाल दें कि भाई डरो मत, जो भी कहना कहो, खुले दिल से कहो।
1: आप भी अपना सवाल अपने मन से अब निकाल दीजिए और अब जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। हम
0: बताइए।
1: पूछ रहे हैं कि ये जो पहला वाहन वाला विषय हमने रखा है तो आप बताइए कि बचपन में पहला वाहन साइकिल था, बाइक, स्कूटी थी, क्या था?
0: साइकिल ही थी हमारी तो, और हम साइकिल जो थे, हम और मेरी जो बहन थी, हम लोग पत्थर पर खड़े हो जाते थे, फिर साइकिल पर बैठते थे, फिर चलाते
1: क्योंकि हाइट उतनी नहीं पहुंची तो
0: उतनी
1: साइकिल,
0: हाइट नहीं
1: क्योंकि
0: थी
1: बच्चों के नाम से
0: जी।
1: साइकिल खरीदी नहीं जाती थी, वो बड़े
0: हाँ
1: भाई बहनों की साइकिल होती थी इसलिए।
0: बिल्कुल वही हाल था, लेकिन उसमें क्या होता था, हम लोग सीधे सीधे तो चलाते चले जाते थे, अब मोड़ना तो आता नहीं था, तो उधर ही गिर पड़ते थे, फिर वहां कोई पत्थर ढूंढते थे, उस पर चढ़ते थे,
1: क्या बात
0: फिर
1: है।
0: वापस
1: और
0: आते थे
1: साइकिल एक कोई चलाता
0: जी।
1: था और एक साइकिल पीछे एक जो कैरियर होता था उस पे बैठता था, और वो नहीं तो आगे जो साइकिल का डंडा होता है उस पे बैठता था।
0: लेकिन कैची, जो लड़के कैची चलाते हैं ना, वो मुझे कभी नहीं, एक कोशिश भी करी तो कई बार गिरी गया, चोट नहीं लगी,
1: तो
0: लेकिन
1: खैर ये हम अपने श्रोताओं से जानना चाहते हैं कि उनका जो पहला वाहन था क्या था, और अपने अनुभव साझा करें
0: बिल्कुल
1: क्या हुआ जब पहली बार आपने साइकिल चलाई या कोई और वाहन, दो पहिए का रिक्शा भी हुआ करता था ना, बहुत छोटे जब हाथ पैर साइकिल तक पहुंचने लायक नहीं होते, मतलब 5-6 साल की उम्र में 3 पहिए वाला वो साइकिल रिक्शा दे दिया
0: साइकिल
1: जाता
0: रहता है
1: था
0: बच्चों को
1: जिसको,
0: जो साइकिल होती थी
1: हाँ,
0: छोटी।
1: तो वो भी अगर आपको याद हो, आपके जहन में हो, वो याद ताजा हो तो जरूर साझा करें। फिलहाल गाना सुनवाते हैं जी।

0: मंजरी जी कहाँ खो गई आप, हमें लगता है श्रोताओं की टिप्पणियों में खो गई हैं, लेकिन टिप्पणियां तो पढ़ेंगे लेकिन जरा कुछ चर्चा भी तो कर ली जाए।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: बेटियां जब घर में आती हैं, मतलब एक बेटी पैदा होती है तो जश्न नहीं मनाया जाता था, लेकिन आज जमाना बदल गया है, अब बेटी पैदा होती है तो लोग बहुत खुश होते हैं और आज जश्न मनाने का चलन शुरू हो गया, तो ये जानकर बड़ा अच्छा लगता है। और जहां पर ये चलन नहीं है वहां पर अपनाया जाएगा। और बेटी, कहा जाता है ना कि बेटियां परिवार की मुस्कान ही नहीं होती बल्कि बड़े नाज से बच्चों की परवरिश भी की जाती है बेटियों के लिए। बात जब उनकी आती है तो बहुत सारे रीति रिवाज का ज्ञान, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब लोग समझाने लगते हैं, समझाइश की पोटली लेकर खड़े हो जाते हैं।
1: और कहा भी जाता है कि जब, हमें याद है ममता जी जब छोटे थे तो यही कहते थे कि नहीं ये सारे काम कर लो, चाहे टोकरी से प्याज ही ले आओ, लहसुन ले आओ, छील दो, तो ये छोटे छोटे कटोरी ले आओ, ग्लास,
0: घरेलू काम
1: से शुरुआत ही कर देते थे कि ये करना है, अच्छा अंधेरा होने से पहले घर के अंदर ही आ जाना है, बाहर नहीं जाना। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें माँ अक्सर सिखाया करती है अपने बच्चों को। और हम अक्सर बेटियों को संस्कार, मर्यादा और जिम्मेदारियां सिखाने पर जोर देते हैं, लेकिन आज के समय में इतना ही काफी नहीं है। उन्हें संस्कारों के साथ आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और अपने लिए आवाज उठाने का साहस देना भी उतना ही जरूरी है।
0: आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। और साथ में जो संस्कार की पोटली थमाई जाती है तो उसमें साथ में ये भी बताया जाता है कि क्या गलत है क्या नहीं, क्या सही है, तो ये संस्कार देना जरूरी है। लेकिन इस संस्कार के साथ लड़कियों को दब्बू बनाना ठीक नहीं होता है, कि कुछ लड़कियां बहुत अंदर से बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद, प्रतिभाशाली होने के बावजूद क्लास में एक दब्बू लड़की बन के रह जाती है, क्योंकि उनको बोलना ही नहीं आता, उनके मन में भरा होता है कि अरे बाप रे अभी कहीं कोई मेरी बात का बुरा ना मान जाए। तो इससे लड़कियों को बाहर निकालना चाहिए, और अगर ये बात उनके मन से निकल गई तो जो उनके भीतर सपने पल रहे हैं उन सपनों को पंख देने में आसानी होगी।
1: बिल्कुल। और हर माँ को अपनी बेटी को आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और खुद पर भरोसा करना सिखाना चाहिए। उसे ये एहसास कराना जरूरी है कि बाहरी दिखावे से अधिक उसका आत्मविश्वास और ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है।
0: और ये भी कि हर कदम पर उन्हें ये कहें, अरे लोग क्या कहेंगे, जरा झुक के चलो, लोग पता नहीं क्या कहेंगे, जरा ठीक से चलना, वहां जाना तो देखना, ज्यादा लड़कों से बात मत करना, नहीं तो लोग देखेंगे तो शिकायतें आएंगी, इन सब से मुक्त कर देना चाहिए। अब उनके करियर के बारे में बात करनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई के बारे में, कि आप आज दिन भर में क्या किया, कौन से अखबार पढ़े, कौन सी किताबें पढ़ी, और आज जो तकनीक का जमाना है, तकनीक में कौन सी नई तकनीक सीखी, हमें

0: नहीं लगता हम अपने इर्द गिर्द कोई माँ घर में अपनी बेटी से अमूमन दिन भर में ये सवाल पूछती है, बेटे से ये सवाल पूछा जाता है लेकिन
1: बिल्कुल।
0: बेटियों
1: और
0: से नहीं।
1: पहले देखिए ये ऐसा होता भी था कि जैसे कि अब कोई चीज दिलानी है तो नहीं भाई अभी तुम्हें नहीं दिलाएंगे बाद में दिला लें, या सिखाने की बात होती है जैसे साइकिल की बात है वाहन ही सिखाने की बात है तो उसमें भी 10 तरीके की बातें की जाती थी बेटियों से कि अगर चलाओगी तो गिर जाओगी, हाथ पैर टूट जाएंगे तो शादी कौन करेगा, इस तरह की बातें अक्सर ही हुआ करती थी। तो जैसे आपने कहा है कि ना कहना, तो ये चीज बहुत जरूरी कि अगर आपका मन नहीं है आप उसको समझ नहीं अच्छा तो ना ही कर दीजिए उस चीज को।
0: ना
1: और
0: करने का एक फायदा भी होता है
1: जी
0: कि बहुत सारी मुश्किलों से, बहुत सारे दुर्व्यवहार से आप बाहर आ जाते
1: बाहर
0: हैं।
1: आ जाते हैं
0: बचपन में बड़े ये सिखाते हैं कि लड़कियों को नम्र होना चाहिए, बड़ों की बात मानना चाहिए, आदर करना चाहिए और झिझक, मतलब एक तरह का झिझक रहना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि घर के ही लोग, घर के ही नाते रिश्तेदार उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत आचरण
1: बिल्कुल
0: कर जाते हैं। जैसे बैड टच, गुड टच का उन्हें ध्यान नहीं दिलाया जाता है और घर के ही लोग, मामा चाचा, रिश्ते में भाई लगने वाले लोग
1: बिल्कुल
0: उनके मतलब स्पर्श के साथ दुर्व्यवहार करना करते हैं,
1: बिल्कुल
0: जिसका असर उनके मन पर बड़े होने पर रहता है, बड़े
1: कहीं ना
0: होने
1: कहीं
0: तक।
1: रह जाता है उनके मन पर, रह जाती है ये बात।
0: और हमें भी बहुत कुछ मन में रह जाता है जब हम बोलने लगते हैं, लगता है
1: जी
0: कि अभी ये तो रह गया, थोड़ा सा और रह जाने देते हैं, एक
1: बिल्कुल
0: विराम यहां पर लेते हैं।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली।
1: और देखिए जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि गुड टच बैड टच वाला, कि घर में भी ऐसे माहौल होते हैं कि इस तरह से बच्चों को सामना करना पड़ता है और मन पर उनके गहरी छाप पड़ जाती है बड़े होने तक, तो इस चीज को ही कहना चाहिए कि उस समय भी बच्चों को अपने सिखा के रखे, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कोई ऐसा कर रहा है तो तुरंत आकर के हमको बताओ, अपने अंदर वो डरो मत, उस बात को दबा के मत रखो, अभी
0: वो
1: बताओ।
0: तो तभी होगा जब आत्मविश्वास पैदा होगा।
1: बिल्कुल,
0: तो क्योंकि अगर हम संस्कारों के बोझ तले उन्हें दबा देंगे तो उन्हें कभी निडर वो हो ही नहीं सकते हर चीज को।
1: इसीलिए तो है कि आप तुरंत ही बच्चों को बोलो, तुरंत ही आके बताओ, तो तब आप इस चीज से बच सकते हैं। और ममता जी देखिए, हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश इस विषय पर लिखकर भेजे हैं। एक लिखते हैं कि बेटी को सिर्फ संस्कारों की डोर में बांध देना काफी नहीं है, उसे वो पंख भी देने होंगे जिससे वो बिना डरे अपनी उड़ान भर सके। संस्कार उसे सही गलत का फर्क सिखाते, पर आत्मविश्वास और निडरता उसे दुनिया का सामना करना सिखाती है, और ये दोनों उसे अपना रास्ता खुद बनाने का हौसला देती है। जब हम सिर्फ संभल कर रहो कहना छोड़कर तुम कर सकती हो कहना शुरू करते हैं, जब गिरने पर हाथ पकड़कर उठाने के साथ उसे खुद संभलना भी सिखाते हैं, तभी वो बेटी किसी के मोहताज नहीं रहती। वो चूल्हा भी संभालेगी और सपना भी, रिश्ते भी निभाएगी और दुनिया में अपना नाम भी बनाएगी, क्योंकि हमने उसे सिर्फ संस्कारी नहीं मजबूत बनाया है।
0: और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि संस्कार जीवन का आधार होता है और आत्मविश्वास उनकी सुरक्षा का कवच है, और जब इसमें निडरता का संयोग बन जाए तो वो सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। बेटियां केवल लाज की मूर्तियां नहीं है, आंधियों से लड़ती हुई दुर्गा है। बेटियों में संस्कारों की छाव तो जरूरी है, लेकिन उड़ान भरने के लिए हौसलों का खुला आसमान देना भी जरूरी है। तो अब क्या, अब सुनते हैं ये गाना।

0: तो देखिए बेटियों को जो है ना ममता जी, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करना चाहिए कि पॉकेट मनी से लेकर सेविंग तक बेटियों को पैसों का महत्व और मैनेजमेंट करना उन्हें सिखाना बहुत जरूरी है, और उन्हें ये एहसास कराएं कि आर्थिक रूप से मजबूत होना भी असली स्वतंत्रता है। और इसके साथ साथ बेटियों को योग, मेडिटेशन और फिटनेस की भी आदत डालें, साथ ही उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में भी बताएं, समझाएं, ताकि वे तनाव या दबाव से आसानी से उबर सके। और हमारे साथी भी संदेश में लिख रहे हैं कि उन्हें अच्छे संस्कार के साथ अपने फैसले लेने, कठिन परिस्थितियों का सामना करने और अपने सपनों को पूरा करने का आत्मविश्वास दीजिए। ऐसी शिक्षा दीजिए कि वे सम्मान करना भी जाने और अपने सम्मान के लिए आवाज उठाना भी, क्योंकि संस्कारी बेटी परिवार की पहचान होती है और आत्मनिर्भर बेटी समाज की ताकत होती है।
1: और साथ में ये भी कहना है कि बेटियों के भीतर समानता के विचार को भी रोपें, समानता की समझ हो और उन्हें सिखाएं कि वे किसी से कम नहीं हैं। घर के काम से लेकर बाहर के फैसलों तक, बाहर के काम तक उन्हें बराबरी का हक दें और यही सोच उनमें विकसित करें कि अमूमन होता क्या है कि घरेलू कामकाज में तो महिलाओं को सिखाया जाता है, उन्हें पारंगत किया जाता है, लेकिन जो बाहर के काम है, बैंकिंग के काम है और पोस्ट ऑफिस जाना है या बाहर का जो भी काम है,
0: काम होता है,
1: तो वो उनसे उनको वंचित रखा जाता है। तो इसके लिए जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनके शारीरिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाए, उनके फिटनेस का ख्याल रखा जाए, जूडो कराटे सिखाया जाए,
0: मार्शल आर्ट
1: और बैडमिंटन, मतलब खेल की ओर उन्हें उन्मुख किया जाए, तो अपने आप शारीरिक फिटनेस आ जाती है। और अगर शारीरिक फिटनेस है तो मन अपने आप स्वस्थ रहता है। अगर मन में कोई उनके
0: खुलकर सोच सकती है,
1: मन में अगर कोई उनके दुविधा चल रही है तो खुलकर उनसे पूछें, बात करें और उन्हें समझाएं कि हम सब परिवार वाले आपके साथ हैं। मान लीजिए कोई ऐसी समस्या से जूझ रही है आपकी लड़की जिससे वो बताने में संकोच कर रही, क्योंकि आपने संस्कारों के बोझ तले उसे दबा डाला है, तो उसे बैठे घर वाले और ये नहीं कि कोने में ले जाके चुपके से बात करें, उसे सबके सामने बोलने की, बतियाने की, अपनी बात कहने की आदत डालें, तभी वो स्कूल में बोलेगी, क्लास में बोलेगी, तभी अपने दोस्तों मित्रों के सामने अपना मुंह खोलेगी।
0: सही बात आपने कही बिल्कुल। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि बेटियों को संस्कार नहीं, आत्मविश्वास से निडर बनाए। आज का ये टॉपिक मेरी बेटी पर सटीक बैठता है। आज हम उसको छोड़ने जा रहे थे, वो दिल्ली जा रही है, वो वहां से अपनी नई उड़ान भरने वाली है। स्पेन के लिए MBA करने का ये फैसला पिछले 4 साल से देखा गया था, जो अब पूरा होने जा रहा है। बेटी तो खुश है ही, उसके साथ हमारा पूरा परिवार खुश है। आज घर के 4th नंबर का बच्चा बाहर गया, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सही बात है, आपने अपनी बच्ची को इतना अच्छा मौका दिया है कि वो जा रही है और बाहर जाके पढ़ के आएगी।
1: हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि ये जो बातें हैं बेटियों के लिए, एक समझदार माँ ही कर सकती है। मैंने अपने तीनों बच्चों को अच्छे संस्कार देने के साथ साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया है, जो आज उन्हें काम आ रहा है। बड़े की नौकरी जॉब में चला गया है, बहुत टूट चुका था। साथ के कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी, पर उसे मेरी सिखाई बातें याद आ रही थी कि जीवन में कितने भी संग्राम खड़े हो जाए, जान की नहीं सोचना, उसे बचा लेना और लड़ने की ताकत मन में रखना। ये दिन कुछ ही समय के लिए होते हैं, बाद में अपना वक्त आ जाता है। ये तो बहुत जरूरी बात इन्होंने लिखी है, थोड़ा असमंजस वाली स्थिति में इन्होंने लिखा है, लेकिन बात अपनी बात कह गए हैं ये
0: जी।
1: इनके कहने का तात्पर्य ये है कि हम कई बार संस्कारों के बोझ तले, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, इतना लाद देते हैं कि उनके अंदर ये बात ही, कोई मान लीजिए कि कोई ऐसी नौबत आती है जहां पर वो दो राहे पर हैं, चौराहे पर खड़े हैं, तो अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं कि उन्हें बड़ों का अदब करो, संस्कारी बनो, बड़ों से जबान मत लड़ाओ, बड़े अगर कुछ कहें तो खड़े हो जाओ उनको देखते। ये सब संस्कार सिखाना ठीक है, लेकिन उनसे आजकल जो जमाना है उनसे मित्रवत बर्ताव करें।
0: सही बात, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बेटियों के साथ भी अपना दोस्ताना व्यवहार रखें। और हमारे एक साथी लिखते हैं, निडर और संस्कारी बेटियों की परवरिश ही देश की तरक्की का मूल है। और साथी हमारे लिखते हैं कि जब बेटियां मानसिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं तो वे जीवन के हर कठिन निर्णय को खुद लेने में सक्षम बनती हैं। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता जरूरी है, बेटियां खुद अपने भविष्य और करियर के बारे में सही फैसले ले सकें।

0: उन्हें पैसों के लिए किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, वे विपरीत परिस्थितियों में अपनी खुद की रक्षा और आवाज उठाना सीखें।
1: हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि नहीं नहीं ममता जी, समय के साथ साथ हम माएं भी समझदार हो गई हैं, अब बेटा बेटी समान है, बल्कि सच कहें तो बेटियां दो कदम आगे हैं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आप सुनने के साथ साथ शामिल है इस प्रोग्राम में और त्वरित टिप्पणी भेज रही हैं। बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारी माएं ना समझी क्या बर्ताव करती हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे घरों में अभी भी ऐसा चला ऐसी परंपरा चली आ रही है। और हमारे एक श्रोता ने और लिखा है कि हमारे घर में तो बेटी बेटे समान हैं और हम बेटी बेटों में कोई फर्क नहीं करते हैं, आज जमाना बदल गया है। जी आप कुछ कह रही थी मंजरी जी?
0: नहीं नहीं हम आपकी बात सुन रहे थे। तो एक हमारी साथी कह रही है, लिखती है कि बच्ची किशोरी कुमारी ये बेटियों की अवस्थाएं संस्कार छम कही जाती हैं, आकाश को लांग कर चांद तक जा पहुंची हैं आज की दुनिया में। अब रहन सहन परिधान बोली भाषा आहार विहार शिक्षा इन सभी संस्कारों में बदलाव दिखाई दे रहे हैं। छुई मुई कोमल अबला नहीं तो आत्मविश्वास से संपन्न निडर बेटी है, ये हर पालक का सपना बन रहा है। इसीलिए तो बेटी को भेदभाव रहित लालन पालन करना जरूरी है, दया क्षमा और शांत को साथ लेकर हक के लिए आवाज उठाना, आत्मसंरक्षण आत्मनिर्भरता आर्थिक साक्षरता अन्याय का प्रतिरोध करना जैसे भावनात्मक दृढ़ता वाले बढ़ाने वाले संस्कार हर बेटी को मिलने चाहिए। बहुत सुंदर सी बात लिखी।
1: हमारी एक सखी लिख रही है कि निडर बेटियां विपरीत परिस्थितियों में घबराती नहीं बल्कि अपना बचाव खुद करने में सक्षम होती हैं। जब बेटियों में आत्मविश्वास होता है तो वो अपने करियर जीवन और अधिकारों से जुड़े बड़े फैसले खुद कर पाती हैं। समाज के रूढ़िवादी तानों और दबावों के सामने वे कभी मानसिक रूप से टूटती नहीं। एक बात मैं गौर कर रही हूँ मंजरी जी, कि आज के इस विषय में ज्यादातर महिलाओं की ही टिप्पणी आई है, पुरुषों की टिप्पणी कम मिल रही, क्या बात है? हमें लगता है इस मुद्दे में वो सहमत नहीं है क्या? वैसे अगर सहमत होंगे या नहीं होंगे तो अपनी टिप्पणी आगे साझा कर सकते हैं, हम पढ़कर सुनाएंगे।
0: जी।
1: और फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली, और ब्रेक पर जाने से पहले मंजरी जी हम बात कर रहे थे कि बेटियों को सिर्फ संस्कार के बोझ तले न दबाएं बल्कि उन्हें निडर बनाएं, आत्मविश्वास से भरे उन्हें। हमारी एक सखी ने लिखा है कि बेटियों को हमें सिर्फ ये नहीं सिखाना है कि दुनिया कैसी है।

0: उन्हें ये भी सिखाना है कि दुनिया का सामना कैसे करें, संस्कार उनकी पहचान बने और आत्मविश्वास उनकी ताकत बने, उन्हें इतना निडर बनाए कि वे अपनी बात कहने से डरे नहीं बल्कि अपने सपनों को छोटा ना करें। और अब यहाँ पर एक गाना जरूरी लग रहा है
1: जी,
0: ये सुनते हैं ये गाना।

0: तो भाई ये जो फिल्म थी रश्मि रॉकेट, यहाँ इसमें भी एक ये लड़की की कहानी है जो दौड़ने में
1: जी
0: माहिर होती है।
1: बिल्कुल
0: पुरुष बहुल समाज में लड़कियों को अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है।
1: बिल्कुल, और संघर्ष
0: अब
1: करती तभी वो जीतती है।
0: बिल्कुल, तो संघर्ष करने से हारे नहीं पीछे नहीं हटे, बस यही पैगाम है आज के इस मंच से। आज फिर हम अगले मुद्दे पर अब आते हैं। किसी भी बड़े सपने की शुरुआत अक्सर एक छोटे से विचार से होती है। नीरू शर्मा की उद्यमिता की कहानी भी ऐसे ही एक विचार से शुरू हुई। भारत में ई कॉमर्स को आम व्यापारियों और छोटे कारोबारियों तक पहुंचाने का सपना इन्होंने पूरा किया। कैसे पूरा किया, इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं आज।
1: नीरू शर्मा भारतीय टेक और ई कॉमर्स क्षेत्र की उद्यमी है और इंफीबीम के सह संस्थापक रही हैं। बाद में कंपनी का कारोबार डिजिटल पेमेंट और फिनटेक सेवाओं की ओर काफी बढ़ा और नीरू शर्मा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं। उन्होंने अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS से की और आगे चलकर अल्काटेल जैसी तकनीकी कंपनी में काम किया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से MBA किया, जिसमें वित्त और रणनीति पर विशेष ध्यान दिया इन्होंने।
0: और एमबीए के दौरान और उसके बाद उन्हें अमेजॉन में काम करने का मौका मिला। वहां ई कॉमर्स के कामकाज, ग्राहकों की सुविधा, कीमत और व्यापारिक रणनीतियों को करीब से समझने का अनुभव मिला। यही अनुभव आगे चलकर उनके उद्यमी बनने की प्रेरणा का अहम हिस्सा बना।
1: और भारत लौटने के बाद नीरू शर्मा ने ई कॉमर्स के क्षेत्र में कुछ नया करने का फैसला किया। इंफीबीम के साथ उनका उद्देश्य केवल ऑनलाइन सामान बेचने तक सीमित नहीं था, वे ऐसा डिजिटल ढांचा तैयार करना चाहती थी जिसके माध्यम से छोटे व्यापारी, रिटेलर और ब्रांड भी इंटरनेट पर अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: इंफीबीम के शुरुआती दौर में ई कॉमर्स और ऑनलाइन रिटेल पर जोर था। समय के साथ कंपनी ने डिजिटल पेमेंट, ई कॉमर्स समाधान और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में भी विस्तार किया और इंफीबीम के जो एवेन्यूज होते हैं उन्हें बढ़ाने के लिए भारत के शुरुआती सूचीबद्ध ई कॉमर्स कंपनियों में गिना जाता है।
1: नीरू शर्मा का सफर इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने केवल नौकरी में ऊंचे पद तक पहुंचने का रास्ता नहीं चुना, बल्कि अपने तकनीकी और व्यावसायिक अनुभव को एक नए विचार में लगाया। उन्होंने ये दिखाया कि तकनीकी की समझ और व्यापार की सोच मिलकर समाज और बाजार दोनों में नया अवसर पैदा कर सकती है।
0: और उनकी जो कहानी है इससे एक महत्वपूर्ण सीख भी मिलती है।

0: कि सफलता केवल बड़े संस्थान में नौकरी करने से नहीं मिलती, बल्कि अपने अनुभव को किसी नई समस्या के समाधान में लगाने से भी मिल जाती है।
1: बिल्कुल, और नीरू शर्मा की यात्रा उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो तकनीकी व्यवसाय और उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। उनका सफर भी बताता है कि शिक्षा हमें ज्ञान देती है, अनुभव हमें समझ देता है और साहस हमें अपने सपने को वास्तविकता में बदलने की ताकत देता है।
0: अब सुनते हैं ये गाना।

0: तीन देवियां फिल्म का गाना था, और मंजरी जी आपने हमसे पूछा था कि पहला वाहन कौन सा था, तो हमने अपना अनुभव बता दिया, आपने भी अपना अनुभव बता दिया। अब जो हमारी सखियां हैं, हमारे सखा हैं, उनके अनुभव भी हम जान लेते हैं। हमारी पहले तो बता दें कि हमारी एक सखी लिख रही कि हम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट शहर से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, वहां से नमस्कार भेजा है आपको भी और पूरे शहर को, विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार पहुंचे। और एक हमारी सखी है जिन्होंने लिखा है कि मेरा पहला वाहन साइकिल थी, जब मैंने 8वीं क्लास पास की तब मुझे मिली थी, हालांकि ये साइकिल नई नहीं थी, मेरे भाई की साइकिल मुझे मिल गई थी। फिर मुझे करीब 6 साल पहले फिर साइकिल का सुरूर चढ़ा और घर में नई साइकिल खरीदने के लिए पति से काफी जद्दोजहद हुई, पर मैंने अपने लिए एक नई साइकिल खरीद ही ली। अभी कुछ ही दिन चलाई थी कि एक दिन मैं साइकिल से गिर पड़ी और मेरे बाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया और मुझे प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। अभी मैं सुबह साइकिल चलाती हूँ पर अब बहुत संभल कर चलाती हूँ।
1: सही बात है, अगर गिरेंगे, कहते हैं ना कि गिरेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, लेकिन हाँ चोट लग गई तो बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो भाई आप अपना ध्यान रखिए। और हमारे साथ ही लिखते हैं कि मेरे बड़े भाई जो दूसरे शहर में काम करते थे, उन्होंने एक पुरानी लूना खरीदी और उसे ट्रेन से हमारे शहर ले आए ताकि उसे इस्तेमाल कर सके।

0: उस समय मैंने सरकारी नौकरी शुरू की थी। उस शुरुआती दौर में जो मोपेड थी उनकी शॉकअप और सस्पेंशन नहीं थे, मैं गाड़ी चला रहा था और मेरे पिता पीछे बैठे थे। गाड़ी के सख्त होने की वजह से वो रेत और कचरे में से भरी सड़क पर गिर गई। मुझे थोड़ी चोट भी आई, ठीक होने में 1 महीना लगा और मुझे बिना वेतन के 2 हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ी। मुझे अक्सर अपनी वो पहली गाड़ी याद आती है।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जब 12 साल का था तब घर में पहला वाहन खरीदा था। और बहुत सारे श्रोता अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं
0: और एक
1: वाहन से जुड़े हुए।
0: जी और एक लिखते हैं कि उनके पास एक साइकिल हुआ करती थी बचपन में, और उसके बाद साल 1968 में कॉलेज में दाखिला होने के समय बड़े भैया ने मेरे लिए साइकिल खरीद कर दी थी जो एक अच्छी कंपनी की थी। और 74 में नौकरी ज्वाइन करने के बाद दोपहिया वाहन उन्होंने लिया था और बिना गियर वाला। बाद में गियर वाला उन्होंने स्कूटर लिया। अब बढ़ती उम्र में बिना गियर वाला स्कूटर वो चला रहे हैं।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं हमारी सखी हैं, इन्होंने लिखा है कि जब मैं 9वीं कक्षा में थी तभी अपने नाना नानी के पास पढ़ाई करने आ गई थी। तब मेरे नाना जी ने मुझे साइकिल खरीद कर दी थी। वो एक लेडीज साइकिल थी और मुझे सिखाई भी नाना जी ने। हमारे घर के सामने एक वॉलीबॉल ग्राउंड था, वहां पर मैंने खूब साइकिल चलाई और मैं साइकिल पर चढ़ तो जाती थी लेकिन उतरना नहीं आता था। अपनी सहेली के साथ स्कूल जाती थी और मुझे वो साइकिल से उतारती थी। क्या बात है भाई,
0: जी
1: आज तो यादों के
0: बरसात हो रही
1: खजाना
0: है
1: खोल दिया गया
0: जी।
1: है।
0: और एक साथी लिखते हैं कि उस समय कितना प्रेम था साइकिल से। घर से थोड़ी दूर भी जाना होता था या मम्मी छोटे से छोटा काम भी बोलती थी तो उछल कर करने के लिए तैयार हो जाती थी। फिर आ गया स्कूटी। अरे नहीं, इससे पहले तो मैं कार भी चलाना सीख ली थी पर पापा जी चलाने नहीं देते थे। उन्हें लगता था कहीं मार दूंगी। फिर स्कूटी आया तो अब तक काम आ रही है मतलब वो। और हालांकि शुरू से लेकर अब तक तीसरी स्कूटी है। जैसे जैसे नई तकनीकी की आती जाएगी गाड़ी तो मैं चेंज करती रहूंगी। वाकई आपने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि सालों साल तक वो याद रह जाती कि कैसे हमने अपने माता पिता को मना कर अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी। और कितनी खुशी हुई थी जब हम पहली गाड़ी खरीदने गए थे। माता पिता को बैठक बाहर लेकर जाना, दोस्तों को घुमाना, बिठा कर मतलब ले जाना घुमाना, पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटना, और अपने अगर पसंद की गाड़ी मिल जाए तो पसंद का कलर मिल जाए तो गाड़ी में और भी मजा आता है, इन्होंने कहा है। और पहले वाहन को चलाने में बहुत खुशी इन्हें महसूस हुई है।
1: हमारे श्रोता ने लिखा कि साइकिल हमारे जीवन से हमेशा जुड़ी रहती है। हम छोटे होते हैं तब स्कूल के लिए, जवानी में नौकरी के लिए और बड़ी उम्र में मोटापा करने के लिए जिम वाले साइकिल चलाते हैं। क्या बात है भाई, सही बात है। और कई बार लोग जरा जरा सी कम जगहों मतलब थोड़ी दूरी के लिए भी बाइक उठा लेते हैं या कार उठा लेते हैं चल जाने के लिए। तो ऐसे जगहों पर आप साइकिल से जा सकते हैं, इससे आपकी कसरत भी हो जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में मेरे घर में लाल रंग की छोटी साइकिल थी, उसको मैं खूब दौड़ाया करता था। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरा पहला वाहन ठेलन गाड़ी थी जिसमें मुझे बिठाकर चलना सिखाया गया था।
0: जी और एक लिखते हैं कि पहला वाहन साइकिल था तो नौकरी की पहली तनख्वाह जब उन्हें मिली तो उस पर उन्होंने साइकिल खरीदी। उसके बाद उन्होंने फिर एक अच्छी कंपनी की साइकिल खरीदी और रोजाना करीब 15 किलोमीटर स्कूल में पढ़ने जाते थे और बाकी रुपए पिताजी को दे दी जो उनकी तनख्वाह हुआ करती थी उस समय।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा भी पहला वाहन और आखिरी वाहन साइकिल ही था और अभी तक है। परिवार इतना धनी नहीं था कि काठ का तिपहिया वाहन बनवाता, ये तो गनीमत रही कि शादी जल्दी हो गई और साइकिल मिल गई जो बदलते हुए भी अब तक बना हुआ है। भाई शादी में आपने साइकिल अगर दहेज मिली है तब तो हमें बिल्कुल खुशी नहीं हुई ये जानकर, क्योंकि हम तो हमेशा ये कहते हैं कि भले ही कितनी विपन्नता हो लेकिन जो दहेज में आप ले रहे हैं वो लोग कैसे कलेजा काट के चीजें इकट्ठे करके वो दहेज देते हैं। उन माता पिता से जरा पूछे उनका दर्द क्या होता है।
0: अपनी मेहनत से खुद खरीदें तो बहुत अच्छी बात है
1: जी।
0: तो चलिए सुनते हैं गीत।

0: भाई मंजरी जी, अगर कोई काम बड़े मनोयोग से किया जा रहा हो, बहुत तन मन धन से, और अचानक कोई आकर उसमें विघ्न डाल दे तो क्या कहा जाता है? रंग में भंग डाल दिया है ना।
1: बिल्कुल।
0: और हमारे बहुत सारे श्रोता इस बारे में लिख रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार हम पिकनिक मनाने गए, लेकिन बारिश ने इस हंसी खुशी के माहौल में रंग में भंग डाल दिया। अचानक बारिश शुरू हुई, इसका वाक्य प्रयोग हमारे किसी नाम लिखा, उनकी शादी में कुछ रिश्तेदारों की बातों के कारण रंग में भंग डाल दिया गया।
1: इसी तरह देखिए हमारे साथी और भी लिखते हैं कि अचानक बारिश रंग जमाने के अलावा भंग भी डाल देती है। खेल रहे बच्चे अचानक झगड़ने लगने से रंग में भंग पड़ जाता है, और अचानक बिजली चली जाए और टीवी पर सीरियल देखते वक्त भी रंग में भंग पड़ जाता है। और कुछ साल पहले दूरदर्शन चालू प्रोग्राम के वक्त सिग्नल प्रॉब्लम होने पर प्रसारण रुक जाता था, तब भी रंग में भंग पड़ जाता था।
0: वो तो बहुत अलग किस्सा हुआ करता था, एक अलग ही अनुभव है कि लोग छत पर पे जाते थे और उस सिग्नल को हिलाते थे, और फिर वहीं से चिल्लाकर एक बंदा पूछता था, आया, आ गया, स्क्रीन आया कि नहीं आया। फिर नीचे से कोई बताता था, नहीं नहीं नहीं अभी नहीं है। अच्छा, तो और हिलाते थे उसको, वो एक अलग ही। तो वो तो, और वो रंग विभंग जो पड़ता था ना, वो बड़ा करारा होता था, बहुत
1: अभी
0: ही
1: तक याद है वो रंग विभंग। और हमारे एक साथी और लिख रहे थे कि किसी हंसी खुशी के माहौल में अचानक बाधा डालना या मजाक किरकिरा हो जाना, ऐसे ही एक बार हमारे साथ हुआ सब। अच्छा, ये आपने पढ़ लिया था, मुझे याद आ गया।
0: तो एक टिप्पणी है, ये देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें। इन्होंने लिखा है कि मेरी बड़ी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी और वो चाहती थी कि उनके बेटे यानी मेरे भैया की शादी जल्द से जल्द हो जाए। भैया की शादी तय थी तो जल्दी जल्दी तैयारियां होने लगी, पर तिलक का दिन आया, लड़की वाले तिलक चढ़ाने आया, और तिलक जैसे ही खत्म हुआ, अभी लड़की वाले घर से निकले भी नहीं थे कि बड़ी मम्मी की डेथ हो गई। फिर तो शादी भी रोकनी पड़ी, फिर कुछ दिनों के बाद मंदिर में शादी करवानी पड़ी क्योंकि घर से नहीं हो सकती थी। चूंकि लड़की को हल्दी लग चुकी थी तो उन्हें साल भर वैसे छोड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए पंडित जी से पूछकर उनकी शादी मंदिर से हो गई। तो वहां पर वो रंग में भंग पड़ गया। हालांकि ये ऐसे नकारात्मक मौकों पर, दुखद मौकों पर इस मुहावरे का प्रयोग नहीं किया जाता है।
1: बिल्कुल।
0: रंग में भंग पड़ना एक सकारात्मक

0: जब कार्य हो रहा होता तो वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है।
1: बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि खुशी पूर्वक त्योहार मनाया गया, मतलब जा रहा था, और बिना मतलब के बात के तनाव बढ़ गया और रंग में भंग पड़ गया। टेरेस पार्टी चल रही थी, अचानक बारिश आ जाने से रंग में भंग पड़ गया और सारे मेहमान अंदर भागने लग गए। और इसी तरह से एक साथी लिखते हैं कि मेरे घर में ऐसा हो चुका है कि मेरी बड़ी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी और वो चाहती थी कि उनके बेटे यानी मेरे भैया की शादी जल्द से जल्द हो जाए। भैया की शादी तय थी। अच्छा, ये वाला भी आपने

0: थी और वो चाहती थी कि उनके बेटे यानी मेरे भैया की शादी जल्द से जल्द हो जाए। भैया की शादी तय थी। अच्छा, ये वाला भी आपने पढ़ लिया है ना। तो लिखते हैं कि रंग में भंग डालने का काम शादियों में बहुत देखने को मिलता है। जब सब काम चकाचक है, खाना लजीज है, तो सब नाच गा रहे हैं और कोने में फूफा जी मुंह फुलाकर बैठे हैं क्योंकि उन्हें गाड़ी में आगे नहीं बिठाया गया था, तो
1: रंग में भंग
0: भंग पड़ गया।
1: और ये अक्सर होता है, हर शादी के माहौल में होता है। ये एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन में खुशियों के रंग भरने में समय लगता है, लेकिन एक छोटी सी गलती या किसी नकारात्मक सोच उन रंगों में भंग डाल सकती है। इसलिए दूसरों की खुशी से ईर्ष्या करने की बजाय उसे अपनाना चाहिए। रिश्तों में विश्वास, प्रेम और समझ बनाए रखें, क्योंकि रंग तभी खूबसूरत लगते हैं जब उनमें मिलावट नहीं बल्कि अपनापन हो। किसी की मुस्कान में भंग डालने की बजाय उसकी खुशी का हिस्सा बनना ही सच्ची इंसानियत है।
0: बिल्कुल। और देखिए, कहीं भी कुछ फंक्शन हो रहा है, कहीं शादी हो रही है, कहीं गाने बज रहे हैं और उसी में आंधी पानी आ जाए तो भी रंग में भंग पड़ ही जाता है एकदम। और ये कहते हैं कि रंग में भंग का दृश्य कुछ साल पहले देखने को मिला। लिखते हैं कि शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन का जयमाला कार्यक्रम चल रहा था, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब का गीत बज रहा था, तभी ऐसी आंधी आई कि टेंट उड़ने लगा, शामियाने के खंभे उखड़ने लगे, लोग घर में भागकर छिपने लगे। दूल्हे ने दुल्हन को कमर से कसकर पकड़ रखा था, जैसे तैसे मंच से उतरकर मकान के छज्जे के नीचे खड़े हुए। फिर जोरदार बारिश भी आ गई, सब रंग में भंग पड़ गया।
1: तो ये कहने का मतलब ये है कि मुहावरों का प्रयोग आज भी जारी है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, और भी बहुत सारे मुहावरे हैं आपके पास, खोज के रखिए, अगली बार फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल सुनते हैं प्रोग्राम का ये आखिरी गाना।

0: देखिए अब घड़ी की ओर बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाए या गाना सुनवाए लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंत्री वर्मा का नमस्कार।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक युगल से। जी हाँ, ये हैं जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने, तो सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक मशहूर कलाकार जोड़ी की आमद है, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। लगान, गंगा जल, अब तक छप्पन, अपहरण, बवंडर, सिंह इज किंग, राउडी राठौर जैसी बहुत सारी चर्चित फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा आपने दिखाया है। वो है मशहूर अभिनेता यशपाल शर्मा जी, और उनके साथ है उनकी शरीके हयात प्रतिभा शर्मा जी। प्रतिभा जी ने अपने करियर की शुरुआत रेडियो से की, और आज रेडियो यानी विविध भारती के स्टूडियो में ये जोड़ी बैठी हुई है। लज्जा, दास कैपिटल जैसी फिल्मों में प्रतिभा जी ने अभिनय किया, बहुत सारी शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन किया इन्होंने। तो अब यशपाल जी, प्रतिभा जी का हम स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में। यशपाल जी नमस्कार, प्रतिभा जी नमस्कार।
2: नमस्कार,
3: नमस्कार, नमस्कार।
2: शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है आप दोनों को यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
2: बहुत अच्छा लग रहा है, और बड़ा सुखद लगता है जब वीडियो नहीं होता है, ऑडियो होता है ना सिर्फ, तो आधा टेंशन कम हो जाता है। ना आपको तैयार होना, ना मेकअप करवाना है, बस आपको माइक के सामने बैठना, बोलना है और बेशुमार अपने दिल की बातें करनी है।
1: क्या
2: बहुत अच्छा लगता है रियली।
1: तो बस आज तो दिल की अलमारी खोलनी होगी आप दोनों को। आप बताइए प्रतिभा जी, आप तो रेडियो में अनाउंसर रही हैं, आपके लिए ये लम्हा कैसा है?
3: बिल्कुल, मुझे ऐसे मायके आ गए ऐसे लग रहा है।
1: तो फिर शुरू हो जाइए, मायके का जिक्र होता है तो लड़कियां फिर मायके पहुंच जाती हैं, तो मायके की वो याद साझा कीजिए। रेडियो में आप अनाउंसर थी
3: जी,
1: आकाशवाणी जलगांव में?
3: आकाशवाणी जलगांव में मैं अनाउंसर थी।
1: तो कैसे वहां तक पहुंची और कैसे वहां से वापस?
3: वहां रेडियो में तो मैं कैजुअल अनाउंसर थी, तो उस वक्त कैजुअल अनाउंसर्स का बहुत बोलचाला था।
1: जी जी।
3: तो उस वक्त बहुत मजा आता था, मतलब अलग अलग अलग से प्रोग्राम करने को मिलते थे, गाने बजाने को मिलते थे। वो जो अभी हम लोग जो रिकॉर्ड्स देख रहे थे वो हमें उस वक्त हमें बिल्कुल बजाने पड़ते थे।
1: क्या बात है। तो वो सारी यादें ताजा हो गई।
3: बिल्कुल,
1: तो बस यादों के गलियारों में हम आपको दोनों को ले चलेंगे। फिलहाल हम यशपाल जी से जानना चाहते हैं कि ये बरेली के बच्चन कैसे बन गए आप? बताइए।
2: हाँ, बरेली के बच्चन एक बहुत सालों बाद, शायद 14-15 सालों बाद मैं कोई सीरियल कर रहा हूँ, नीली छतरी वाले के बाद एक्चुअली, क्योंकि मैं सीरियल नहीं करना चाहता अपनी जिंदगी में कभी ज्यादा। लेकिन कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं वो आपको खींच लेते हैं, जैसे नीली छतरी वाले ने मुझे खींचा और मतलब बहुत मेरा लाइफ टाइम एक यादगार काम बन गया। उसी तरीके से बरेली के बच्चन का जो स्क्रिप्ट है और जो रोल है वो मुझे इतना भाया कि मुझे लगा कि अब सब कुछ छोड़ के थोड़ा टाइम इसमें बिताया जाए और इसमें जिया जाए और देखते हैं कुछ क्या चैलेंज आते हैं सामने, कुछ डिफरेंट करने के लिए, कुछ चैलेंजिंग करने के लिए, कुछ बेहतर करने

0: के लिए, किस कुछ यादगार करने के लिए मैंने बरेली का बच्चन स्वीकार किया।
1: जी, और हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो जानना चाहेंगे, देखेंगे कि क्या है, कौन है बरेली के बच्चन। हमने तो सिर्फ ट्रेलर देखा है और हम भी उत्सुक हैं देखने के लिए।
0: शुरू हो चुका है ये
1: जी
0: 8 जून से, और डेली रात को 9 बजे सोमवार से शुक्रवार आता है, और अगर आप मिस कर दें तो जियो हॉटस्टार पे वो परमानेंट रहता है,
1: क्या बात
0: तो
1: है
0: आप वहाँ भी देख सकते हैं।
1: जी। आपकी दोनों की फिल्मी दुनिया और जो टेलीविजन की दुनिया है, इतनी लंबी यात्रा है आपकी फिल्मों की कि बहुत कम शब्दों में मुश्किल है बात करना, लेकिन हम वहां चलते हैं पहले जहां यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा मिले, वो एनएसडी की दुनिया थी शायद। बताइए आप दोनों कैसे मुलाकात हुई, बारी बारी से। प्रतिभा जी आप बताइए पहले।
2: जी, मैं गलती से जब
1: गलती से
2: मेरा
1: मिली है यशपाल जी से
2: गलती से मैं बॉयज हॉस्टल चली गई थी जब मुझे
1: जी
2: एनएसडी के लिए जा रही थी, मतलब गई थी मैं वहां पे इंटरव्यू के लिए। तो जो फाइनल हमारा इंटरव्यू होता है, वर्कशॉप होता है, उसमें 5 दिन का वर्कशॉप होता है, उसमें फाइनल सिलेक्शन होता है। तो उसके लिए जब मैं वहां से जलगांव से दिल्ली आई थी, और दिल्ली जब मैं गई तो मुझे वहां पे बोल दिया गया कि आप वहां जाओ। तो मैं वहां वकील लेन में गई और वहां बॉयज हॉस्टल में टिकी रही एक रात, तो वहां मैं रही। तो सुबह मुझे आना था, तब मैं सामने से इधर से आ रही हूँ और यशपाल जी उधर से आ रहे हो लेन से,
1: अरे
2: और हम एक दूसरे को देखे और फिर ये बोले कि चलिए मैं आपका सामान लेकर चलता हूँ।
1: अच्छा, ये तो फिल्मी स्टाइल में बिल्कुल फिर क्या हुआ
2: बस फिर हमारा फाइनल सिलेक्शन में भी दोनों का नाम आउट हो गया, तो ऑफकोर्स साथ में ही थे। फिर तो लड़ाई लड़ाई चलती रही
1: अच्छा पूछते हैं यशपाल जी से कि लड़ाई किस तरह की होती है, ये थोड़ा सा बाद में पूछेंगे, पहले जरा एनएसडी की बातें कर ले। यशपाल जी, हमने सुना है कि एनएसडी के लिए जब आप चले हरियाणा हिसार से, तो वो क्या जर्नी थी, वो क्या यात्रा थी, जरा बताइए।
0: वो यात्रा बहुत आसान नहीं थी। एनएसडी
1: हाँ
0: में कम से कम भी मैंने 3 बार अप्लाई किया, तब नहीं हुआ, तो चौथी बार किया तब हुआ।
1: अच्छा,
0: जिस साल प्रतिभा ने अप्लाई किया उस साल हुआ मेरा
1: तो मतलब मुकद्दर ने इंतजार करवा के आप
0: पता
1: दोनों
0: नहीं,
1: को
0: लेकिन
1: मिलाया
0: 3 साल नहीं हुआ,
1: हाँ
0: 3 साल नहीं हुआ के बाद मेरा चंडीगढ़ में हो गया, इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट में, तो वहां से फिर 1 साल किया मैं, तो 1 साल बाद दिल्ली में भी हो गया, तो फिर मैंने दिल्ली शिफ्ट कर लिया। तो दिल्ली में उन दिनों 91 की बात है, 91 जून की, उसमें हमने शुरू किया था। प्रतिभा भी थी हमारे क्लास में, बाकी हमारे मुकेश तिवारी, आशुतोष राणा, कुमुद मिश्रा, बाकी बहुत सारे लोग मराठी भी, अनिरुद्ध खुटवड़ और अभय
2: अभय
0: कुलकर्णी
2: कुलकर्णी।
0: जी, तो ये भी साथ बहुत सारे लोग थे, जो बहुत अच्छा बैच था हमारा।
1: जी, तो ये आपके दोस्त लोग हैं आशुतोष राणा, मुकेश जी, इनसे जुड़ी हुई कोई खास याद साझा करना चाहेंगे आप?
0: नहीं ठीक है, ये तो बहुत ऐसी बातें हैं जो कुछ शेयर नहीं कर
1: ओ
0: तो ठीक है, उसको चलने रहने देते हैं थोड़ा
1: जी
0: सा।
1: जी
0: हाँ, लेकिन
1: बात
0: एक एक याद मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। कुमुद मिश्रा और मेरा चेहरा एकदम मिलता था उस वक्त,
1: जी जी जी
0: तो मेरे जितने भी उसके प्रेस के कपड़े थे, लॉन्ड्री वाला मुझसे मांगता था
1: अरे अच्छा
0: और आशुतोष राणा ने अपने आप को मतलब हीरो साबित करने के लिए एक दिन क्या किया कि अपने बाल कर्ली करवा लिए, और
1: अच्छा
0: कर्ली करवा लिए बिल्कुल मलिंगा जैसा दिख रहा था वो, तो मतलब और बहुत खराब दिख रहा था, तो जो भी अरे ये क्या करवा लिया, सबका रिएक्शन यही है, अरे ये क्या करवा लिया।
2: कुछ ना कुछ करवाते ही
0: तो और बता रहा था
2: रहता
0: भाई, 400 रुपये, 400 रुपये बहुत ज्यादा थे उस वक्त,
1: था
0: 400 रुपये तो हमारी स्कॉलरशिप थी उस वक्त,
1: बिल्कुल
0: तो बोलो 400 रुपये में करवाए हैं बाल कर्ली, तो और जिस जो भी देखे रितु तलवार थे वो भी, अरे बाप रे कितना खराब लग रहा है यार आशु, ये क्या कर लिया तूने, तो बेचारा इतना परेशान हो गया। शाम को जब हॉस्टल गए तो हॉस्टल के बाहर नाई बैठा था, तो 2 रुपये में गंजा हो गया मैं नहीं भूल सकता वो आशुतोष
1: जी
0: राणा की वो बात
1: जी तो वैसे भी बड़े उनके बारे में बहुत सारे किस्से मशहूर हैं, और कोई किस्सा याद आएगा बातचीत के दौरान तो जरूर साझा कीजिएगा, और वो आपके दोस्त भी हैं। तो यहाँ दोस्ती के नाम या उन दिनों के नाम कोई गाना सुनवाना चाहेंगे? कौन सा, किसकी पसंद का गाना सुना है, प्रतिभा जी या यशपाल जी?
0: प्रतिभा जी,
2: पिया तो से नैना
1: नैना लगे
2: ना।
1: रे, वाह भाई क्या बात है, गाइड फिल्म का गाना है, तो यही गाना सुनते हैं।

0: भाई ये गाना पिया तो उसे नैना लागे रे, ये इन्होंने आपके लिए ही मुझे लगता है सुनवाया होगा यशपाल जी। तो मुझे आपसे ही जानना है कि ये प्रतिभा जी ने जिक्र किया कि आपने इनका सामान उठाया, तो ये जो प्रेम का बीज था आप दोनों के बीच, प्रेम का पौधा कैसे
1: बीच
0: रोपा गया?
1: पौधा नहीं था, बहुत भारी बैग था इसका जो जो मैंने उठाया था,
0: जी
1: और तकरीबन 150 मीटर 200 मीटर होगा
0: हाँ,
1: वहाँ इस
0: चलते चल के जाया
1: हॉस्टल से वहाँ तक। तो वो मंडी हाउस क्रॉस करके पूरा तो वहाँ गए थे। तो प्रेम का बीज ऐसा कोई फिल्मी कहानी की तरह ऐसा नहीं था हमारा, हम मर जाएंगे तुम्हारे बगैर, और या मतलब हाँ, लेकिन एक फिल्मी बात जरूर थी कि 3 साल तो हमने खूब लड़ाइयाँ की, अच्छे काम किए, नाटक किए, और एक में तो हम चंद्रहास में भाई बहन बने थे, और बहुत ही बढ़िया प्रोसेस रहा सारा। लेकिन जब खत्म हुआ और जब ये चली गई, तब बड़ा मैंने मिस किया, क्योंकि भाई अब कोई ना तो लड़ने वाला, ना कोई प्यार करने वाला, ना रूठने वाला, ना मनाने वाला, तो बड़ा मिस किया। तो मैं एक दिन फिर सीधा इसके घर पहुंच गया, जलगांव,
0: अच्छा
1: दिल्ली से जलगांव सीधा दरवाजा खोला और ये माँ बेटी मेरे सामने खड़ी, और ए ऐसे हैरान। और फिर मैं चला गया और फिर उसी ट्रेन से वापस आ गया, मगर नहीं तुम साथ चलो,
0: अच्छा
1: तो भाई ऐसे नहीं जा सकते, शादी वादी करना पड़ेगा, बच्ची बड़ी हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है करवा लो, कल कर लेते हैं।
0: ओ
1: बोले नहीं अभी तो तारा डूबा हुआ है। मैं कहा तारा तो हम निकाल लेंगे। तो आर्य समाज मंदिर में गए तो वो बोले पंडित जी के भाई तारा डूबा हुआ हम नहीं मानते। तो मैंने कहा तो फिर करवा डालो आज, तो बस

0: थोड़ी देर बाद शायद दोपहर तक सारी तैयारी करके हमने शादी कर ली। शादी के दौरान, फेरों के दौरान पता लगा कि वो पंडित जो था वो हिसार का था हमारे
1: तो
0: वो आर्य
1: यशपाल के
0: समाज।
1: वहां से कोई नहीं था तो वो हिसार के थे।
0: तो बड़ा कोइंसिडेंस रहा बाय चांस, और ऐसे शादी हो गई। और फिर पहली बार जिंदगी में मैं और प्रतिभा एसी कोच में सफर करके जलगांव से दिल्ली गए।
2: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर एक गाना जरूरी लग रहा है। प्रतिभा जी बताइए कौन सा गाना, या यशपाल जी आप बताइए।
0: हुई शाम उनका
2: ख्याल आ गया है।
0: ख्याल।

0: प्रतिभा जी की जो प्रेम की नैया चल पड़ी है यूं कहेंगे, और आपकी जिंदगी का सुनहरा और सुरीला सफर चल पड़ा है, तो इस सफर की आगे की कहानी आप बताइए। फिर जब साथ में रहने लगे, फिर वो नोक झोंक तकरार के दिन, कौन सी ऐसी बात है जो यशपाल जी की पसंद हुई नापसंद हुई वो बताइए।
1: नहीं, हम लोग साथ में काम करते थे रेपट्री में और साथ में खाना खाते थे, और उस उतना ही हमारा मिलना होता था पूरे दिन में। बाकी पूरा दिन हम दोनों काम में लगे रहते थे
0: कौन सा
1: रेपट्री
0: काम
1: में।
0: था?
1: रेपट्री में एज एन एक्टर
2: नाटकों
1: काम
2: की
1: करते थे,
2: रिहर्सल वगैरह।
1: नाटकों की रिहर्सल कंटिन्यू होती रहती है।
0: तो कौन से वो नाटक थे जो उन दिनों रिहर्सल चल रहे थे उन नाटकों?
1: आइंस्टाइन कर रहे थे।

0: हम लोग मुआवजे कर रहे थे, कर्मावली थे, ये सारे नाटक वहाँ पे उस वक्त चल रहे थे, उसमें ही हम लोग काम कर रहे थे। हमारे वक्त कुछ नाटक नए शुरू हुए थे, आइंस्टाइन जैसे, तो वो नाटकों की रिहर्सल चलती
1: वो
0: रही।
1: दोनों लोग उसमें
0: हाँ,
1: किरदार।
0: यशपाल तो आइंस्टाइन बने हुए थे, मैं उनके जो उनकी वाइफ है उसकी फ्रेंड बनी हुई थी उस नाटक में,
1: जी
0: मारिया।
1: जी यशपाल जी से हम जानना चाहते हैं। अब फिल्मों की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, फिल्मों के नाम क्या गिनाए, गंगा जल, अपहरण, बवंडर, बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लगान फिल्म आपके फिल्मी करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो लगान फिल्म से हम शुरू करते हैं। लगान फिल्म की कहानी बताइए, कैसे आप जुड़े, कैसे आमिर खान से मुलाकात हुई, कैसे आशुतोष गोवारिकर से मिले आप, दोनों कहानी बताइए आप।
2: लगान वाकई में मेरे ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि लगान तक ही मैंने स्ट्रगल किया ऑफिस ऑफिस घूम करके,
1: जी
2: उसके बाद नहीं किया फिर मैंने, क्योंकि अपने आप फोन आते थे, बात होती थी, काम मिल जाते थे। तो लगान जब मिल रहा या मिली थी, उस वक्त हम वनराई कॉलोनी में रहते थे, जहाँ सिर्फ एक कमरा था, बिल्कुल छोटा सा, एक छोटा सा बाथरूम था और छोटी सी बालकनी थी, और एक स्लैब था जिसे किचन का नाम दे दिया गया था। तो हम दोनों उसी में रहते थे, और वहाँ सारे स्ट्रगल, राजपाल यादव, विजय राज, ये अनूप सोनी, कुमुद मिश्रा, सब वहीं रहते थे। बहुत सारे सीमा विश्वास, राजेश तैलंग, सब वहीं रहते थे। बहुत बड़ा एक
1: जी,
2: स्ट्रगलर का अड्डा था
0: हब
2: वो,
0: था वो।
2: स्ट्रगलर सब लोग, स्ट्रगल क्योंकि सस्ता था ना, तो सब लोग वहीं आके रुक जाते थे।
1: जी
2: तो वहाँ रहते थे हम। तो वहाँ हमारे पास पेजर था, पेजर में मैसेज आया कि कॉल आमिर खान प्रोडक्शन और क्लेमेंटिना डैश क्लेमेंटिना। मैंने कहा ये क्लेमेंटिना क्या है भाई, ये जरूर किसी ने प्रैंक खेला है, कोई कान खिंचाई कर रहा है हमारी। तो मैंने सोचा चलो काम तो कुछ था नहीं,
1: जी
2: मैंने कहा फोन तो कर लेते हैं। तो मैंने फोन किया तो आमिर खान प्रोडक्शन में लगा फोन, तो वहां उठाया, लैंडलाइन था उस वक्त, मोबाइल नहीं थे, तो लैंडलाइन था, तो उसमें क्लेमेंटिना ने उठाया, तो वो एक लड़की का नाम था,
1: अच्छा
2: क्रिश्चियन लड़की का।
1: जी
2: तो मैं बोला, तो वो बोले आशुतोष ग्वारीकर कल मिलना चाहते हैं आपसे, आप आ जाइए ऑफिस, ये एड्रेस भेज रही हूँ मैं, पेजर पे मैसेज आ गया मुझे। और मैं अगले दिन आशुतोष ग्वारीकर से मिलने गया। उन्होंने 3.5 4 घंटे ऐसे घूम घूम के, कमरा बंद किया, बोले नोबडी विल डिस्टर्ब मी, और घूम घूम करके 3.5 4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। ये कमाल की बात है, मैंने उनसे सीखा कि अपने खून में पूरी कहानी होनी चाहिए, जो कि
1: बिल्कुल
2: मैंने फॉलो किया बाद में डायरेक्ट करते हुए। तो उसने सुनाई, और रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल है।
1: और
2: मतलब
1: बहुत था
2: इसमें
1: जी।
2: वेरिएशन भी है, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी। तो और उसने बोला कि लाखा के लिए हम ढूंढ रहे हैं।
1: क्या बात है।
2: तो मेरी तो ऐसे, मैं कहा भाई थैंक यू भाई, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा, और ना थैंक यू वैंक यू नहीं है, ऑडिशन देना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ऑडिशन देंगे ना। तो अगले दिन मुझे बुलाया आमिर खान के घर पे, और वहां ऑडिशन हुआ। ऑडिशन दे करके मैं निकला, और निकलते ऑटो में बैठा ही था, 10 मिनट हुए होंगे मुझे कि मेरे पास मैसेज आ गया कि यू आर सिलेक्टेड।
1: क्या बात है, वाह।
2: मैं स्टेशन जा रहा था ट्रेन पकड़ने, तो मैं तो मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े स्टार के साथ मेरा मतलब सिलेक्शन हो रहा है, और इतने बड़े रोल के लिए। तो मैं तो बड़ा खुश था। तो उन्होंने क्या है, आमिर खान को भेजा ऑडिशन उसी वक्त। आमिर खान मद्रास में थे, ए आर
1: जी
2: रहमान के पास म्यूजिक के लिए कुछ बैठे हुए थे। तो उसके बाद मैं घर गया, उन्होंने बोल दिया कि सेलेक्ट, मतलब उन्होंने हाँ कर दिया मेरे लिए, तो हो गई बात। अब अगले दिन मुझे आना था प्रोडक्शन पैसे की बात करने, तो रीना दत्ता से,
1: जी जी
2: रीना दत्ता उनकी जो वाइफ थी, प्रोड्यूसर थी उस वक्त, तो उन्होंने बोला कि भाई आप पैसे की बात कर लो। तो मैं रास्ते भर ट्रेन में ये सोचता रहा कि साला यशपाल इस बार ना तू सब छोड़, 1 लाख रुपया मांग लो, ये मौका है, बड़ा प्रोडक्शन है, और मतलब मिल जाएगा, कोई मना नहीं करेगा। फिर ख्याल आया कि यार अगर उन्होंने नहीं दिए तो, मैंने कहा फिर 80,000 में कर लूंगा। फिर फिर सोचा चलो 40-50 हजार में कर लूंगा, अरे यार मैंने कहा काम तो कुछ है नहीं, 20 हजार मिलेगा तो भी कर लूंगा।
1: क्या बात है, कितनी फिर मैं गया
2: रीना दत्ता जी के ऑफिस में गया, तो रीना दत्ता जी ने पहली बात यही बोली कि यशपाल हमारा बजट बहुत कम है, हम सब

0: को 1.5-1.5 रुपया दे रहे हैं।
1: हाँ
0: तो मेरे मुंह से निकल गया, नहीं नहीं मैडम, इतना लंबे दिन है, इतना बड़ा रोल है, दो लाख तो होना चाहिए। तो मैडम ने बोला ठीक है साइन कर दो।
1: क्या बात है।
0: अब देखो ये होता है, और वो भी फिर 4.5 महीने के लिए था, फिर शेड्यूल बढ़ गया, फिर 1 महीना, फिर 50,000 और एक्स्ट्रा बढ़ गए, और 250 रुपया पर डे एक्स्ट्रा और मिलता था, तो मतलब मौज ही मौज हो गई थी। खैर वो बात अलग है, लेकिन लगान ने जो दिया पूरी दुनिया में घुमाया, पूरी दुनिया में हम फेस्टिवल्स में गए, और अमेरिका कनाडा के टूर पे भी गए, दुबई, हर जगह, बहुत जगह गए हमने, पूरी दुनिया, मलेशिया, मॉरिशस, सब जगह घुमा दिया इस फिल्म ने, और बहुत कुछ दिया, और ऑस्कर में नॉमिनेट हुई, बेस्ट 5 में चली गई थी,
1: जी बिल्कुल
0: बिल्कुल कांटे के टक्कर में बची लास्ट में। तो ये था किस्सा लगान का।
1: जी।

0: था कैसे न। आपने जैसे बताया कि विविधता थी इस कहानी में आपने जब सुना, लेकिन लाखा का किरदार बड़ा ही अलग तरह का था, बड़ा महत्वपूर्ण था। उस किरदार को गढ़ने के लिए आपको किस तरह की तैयारी करनी पड़ी निजी तौर पर?
1: तैयारी उन्होंने एक हफ्ता पहले बुला लिया था।
0: हाँ
1: आशुतोष गवारी करने सबको
0: जी,
1: मुझे याद है मेरा जन्मदिन था।

0: एक जनवरी को, और 1 जनवरी को ही मेरी फ्लाइट थी, तो वो उसी दिन मैं गया था, और 7 तारीख से शायद शूटिंग शुरू थी, 6 या 7 से।
1: जी
0: तो एक हफ्ता हम वहाँ पूरे गांव में घूमते थे, मीटिंग करते थे, और आशुतोष ग्वारीकर हर किसी के पास आकर के बताता कि ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी लकड़ियाँ पड़ी हैं, तुम वहाँ से जंगल से लकड़ियाँ काट
1: अच्छा
0: के लाते हो, लकड़हारा हो, और यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठी करते हो, और फिर गांव में एक एक जैसे चार चार लकड़ी या 10 10 लकड़ी ऐसे बेचते हो
1: जी
0: गांव में। तो मतलब एक करेक्टर मेरा समझ में आ गया था, और यहाँ से वो सामने गौरी का घर है हीरोइन का, उससे तुम प्यार करते हो, इसलिए ज्यादातर तुम यहीं खड़े रहते हो। और क्या है कि उसका बाप जो है हीरोइन का वैद है, तो मैं क्या करता हूँ जानबूझ के ना अपना हाथ वाथ काट लेता हूँ ताकि उसके पास पट्टी बंधाने जा सकूँ
1: अच्छा, क्या बात
0: गौरी को
1: है
0: देखने के बहाने।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: इस तरीके का करेक्टर
1: हाँ
0: मेरा था पूरा, और मैं नफरत करता हूँ सिर्फ एक ही इंसान से, वो है भुवन, जो हीरो है आमिर खान, क्योंकि वो हीरोइन को चाहता है, हीरोइन उसको चाहती है, तो इसलिए मेरा ये जेलसी भी काफी निकल के आई। लेकिन बाद में जब पता चला कि देश प्रेम और ये प्रेम अलग है एक तरफा, तो इसकी कोई, मैं क्या कर रहा हूँ अब इसके लिए, मैं देश को धोखा दे रहा हूँ, वो
1: जी
0: एक एहसास हुआ, और फिर मैंने पूरी शिद्दत के साथ मैच जितवाया।
1: जी
0: कुदरती, अभी उसके 25 साल पूरे हो रहे
1: क्या
0: हैं।
1: बात
0: जी
1: है,
0: जी
1: बहुत बहुत मुबारक पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। आशुतोष जी कैसे हैं बातचीत करने में निजी तौर पर, उनकी कोई खासियत बताना चाहते हैं?
0: बिल्कुल, बहुत क्लैरिटी है उनके अंदर, वो प्री प्रोडक्शन में बहुत सारा काम कर लेते हैं, पूरी फिल्म का मतलब जर्रा जर्रा उनके दिमाग में और
1: जी
0: खून में बसा हुआ होता है कि क्या करना है मुझे,
1: जी
0: ये
1: जी
0: बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैं उसके भी पक्ष में नहीं हूं, सारी चीजें कैलकुलेटेड नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ चीजें स्पॉन्टेनियसली छोड़ देनी चाहिए, जो कि लगान में उन्होंने किया,
1: बिल्कुल
0: लगान में किया उन्होंने, काफी कुछ काम करके कुछ चीजें एक्टरों पे छोड़ दी थी, और स्पॉन्टेनियसली जो होता था उस पे उसी हिसाब से किया, क्योंकि कैमरामैन अनिल मेहता थे, जो बहुत ही सजे हुए कैमरामैन थे, तो टीम भी बहुत बढ़िया थी, अच्छे सब एक्टर लिए हुए थे, और क्रू भी बहुत कमाल का था सारा। अपूर्व लाखिया उसका चीफ एसोसिएट डायरेक्टर था, जो कि आजकल बहुत बड़ा डायरेक्टर बन
1: जी
0: चुका
1: जी
0: है,
1: जी
0: जिन्होंने बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की हैं अभी, तो बहुत बढ़िया टीम थी। और आशुतोष गवारीकर की क्लैरिटी कमाल की थी, उसको मालूम था कि मुझे क्या चाहिए, और वो उनसे एक्टरों से निकलवा लेता था।
1: जी और आमिर खान तो परफेक्शनिस्ट हैं ही,
0: बिल्कुल, आमिर खान के
1: तो
0: साथ
1: उनका
0: उनकी बहुत सारी मुलाकातें हमारी शूटिंग से पहले ही हो चुकी थी, और सब कुछ तय हो चुका था कि क्या
1: जी
0: करना
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल। और आप दीजिए एक गाना, आप बताइए कौन सा गाना सुनवाएं यहाँ पर मुझे।
0: लगान का ही सुनवा दो,
1: हाँ वो
0: जी,
1: बहुत
0: कोई
1: इंस्पायरिंग है,
0: हमसे जीत न
1: कोई
0: पाए।
1: हमसे
0: ठीक
1: जीत न पाए।
0: है।

0: इस फिल्म से जुड़ा हुआ अनुभव आप साझा करना चाहेंगे प्रतिभा जी?
1: हाँ बिल्कुल, जैसे ये फिल्म इतनी हिट हुई उसके बाद हमारे बच्चे हुए, तो मेरे बच्चों को मैं रोज लगान दिखाती थी और बच्चे इतने ज्यादा यूज्ड टू हो गए थे उस लगान के, मम्मी लगान लगाओ ना, मम्मी लगान लगाओ, रोज
0: क्या
1: देखना उनको लगान रोज
0: तो और भी बहुत सारी फिल्में हैं यशपाल जी की और
1: नहीं,
0: आपकी,
1: वो नहीं
0: तो
1: देखनी, ये ही
0: बच्चे
1: देखनी।
0: सिर्फ यही देखते हैं। और जब अब बड़े हो गए हैं बच्चे तो फिल्म देखते हैं तो कोई टीका टिप्पणी करते हैं एक्टिंग के बारे में?
1: अरे
0: क्या
1: उनके फेवरेट एक्टर है उनके
0: बात है
1: पापा।
0: बहुत बढ़िया। कोई आना चाहते हैं फिल्मी दुनिया में?
1: हाय, बड़ा वाला तो कोशिश भी कर रहा है,
0: जी नाम बताएं तो अच्छा।
1: सौम्या, सौम्या
0: जी
1: शर्मा।
0: चलिए,
1: अरे
0: सौम्य जी के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं, हीरो
1: हाँ एक
0: हीरो है।
1: मिनट, सॉरी मैं बीच में
0: हाँ
1: डिस्टर्ब
0: हाँ
1: कर रहा
0: नहीं,
1: हूँ। जब
0: बोलिए।
1: लगान की शूटिंग चल रही थी तो प्रतिभा का फोन आया, अरे बाबा क्या कर रहे हो तुम, कौन सी फिल्म कर रहे हो, धोती बोती वाली? देखो यहाँ पे इतनी सुपर डुपर हिट हो गई है, ऋतिक रोशन की पहली फिल्म थी। कौन सी थी वो? बोली बाप रे, एक ऐसा हीरो आ गया है जो उसने सबको फेल कर दिया है, चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है, हाउसफुल जा रहे हैं, और क्या फिल्म बन रही, क्या फिल्म बनी है, मैं भी ऋतिक
0: देख के
1: रोशन,
0: आई। हैं
1: ऋतिक
0: कौन
1: रोशन
0: सी
1: की
0: वाली फिल्म
1: पहली
0: थी?
1: फिल्म जो थी
0: कहो ना
1: वो
0: प्यार
1: कहो
0: है।
1: ना प्यार है।
0: हैं
1: जी
0: तो मैं डर गया भाई, मैंने कहा छोड़ दूं क्या लगान, क्या करूं लेकिन देखिए वो फिल्म भी सुपर डुपर हिट हुई, लगान भी, और लगान के साथ गदर भी रिलीज हुई और गदर भी सुपर डुपर हिट हुई जी, बिल्कुल।
1: दोनों।
0: प्रतिभा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक फिल्म थी राजेंद्र कोठारी की, है ना, याद होगी आपको, दास कैपिटल, तो इसमें आप हीरोइन है और यशपाल जी हीरो, निजी जिंदगी के हीरो भी वही हैं, तो
1: जी
0: ये पर्दे पर उनको हीरो के रूप में देखना, खुद को हीरोइन के रूप में देखना, ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, अनुभव कैसा
1: नहीं,
0: था?
1: हम लोग पहले से मतलब साथ में काम करते
0: कर
1: आए
0: चुके
1: थे,
0: हैं।
1: तो मैं जब गुलजार साहब के साथ और मैं जब श्याम बेनेगल साहब के साथ काम कर रही थी तब मुझे राजन कोठारी जी ने नोटिस किया था एज एन एक्टर, तो उनके मैं याद में थी, ध्यान में थी, तो उन्होंने हालांकि सीमा बिस्वास को कास्ट किया था और यशपाल की जगह कौन और एक्टर थे,
0: पता नहीं मुझे,
1: रघुवीर यादव
0: रघुवीर
1: शायद,
0: यादव से
1: हाँ
0: यस
1: रघुवीर यादव
0: जी।
1: उनके दिमाग में थे, पर जैसे ही उन्होंने मेरे वो वाले काम देखे थे वो, क्योंकि वो ही उसमें कैमरामैन थे, तो उन्होंने वहां से मुझे नोटिस किया था और फिर उन्होंने मुझे घर पे आके बोला कि ये रोल सिर्फ प्रतिभा करेगी, बस दैट्स ऑल।
0: जी, तो इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ी हुई कोई खास याद साझा कीजिए, दोनों लोग साथ में जाना, अमूमन अलग अलग शूटिंग पे जाते होंगे
1: नहीं,
0: लेकिन
1: तब
0: इस।
1: हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे तो मम्मी आई थी उनको संभालने के लिए, मम्मी पापा मेरे, और हम दोनों वहीं पे रहते थे जहां पे लोकेशन था,
0: मनोर में थी
1: मनोर में
0: लोकेशन,
1: थी।
0: वहीं होटल ले रखा था हमने
1: जी,
0: सब लोगों ने,
1: अच्छा।
0: पूरी कास्ट क्रू ने, तो वहीं होटल रहे थे, वहीं बाजू में ही गांव था तो वहीं करते थे,
1: लेकिन
0: बच्चे भी साथ में थे।
1: बहुत सुंदर थी वो
0: जी
1: फिल्म।
0: तो आपने कहा बच्चे छोटे थे और तो बच्चों के साथ एडजस्टमेंट थोड़ा मुश्किल होता है, सामंजस्य जिसको कहेंगे, क्या कैसे आप सामंजस्य बिठाती थी
1: तो उस
0: शूटिंग के लिए?
1: वक्त तो मतलब छोटे थे ही, ऑफ कोर्स तो करना पड़ता था ना उनके साथ काम, मम्मी उनको भेजती थी स्कूल और फिर मैं यहां से और क्या ही कर सकती हूँ, फोन ही कर
0: कि
1: सकते
0: बच्चे जब
1: हैं।
0: मिलते थे
1: हाँ
0: रोते थे तो फिर
1: नहीं, रोते
0: दिल,
1: भी थे नहीं थे वो, बड़े उस तरह के
0: अच्छा
1: बच्चे हैं कि मतलब समझदार है,
0: उनको पता था कि
1: उनको
0: मम्मी पापा
1: पता
0: को आगे बढ़ना है
1: था। पर
0: ऐसे साथ में।
1: एक दिन मुझे, मैंने वो जो उस ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी जो मैं अपने मायके के लिए जाने के लिए रोती हूँ, तो वो उसको, बिल्कुल ही छोटा था मेरा बेटा, तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से 5-6 साल का होएगा, तो वो मुझे बोल रहा है मम्मी तुम एकदम छमक छल्लो लग रही हो। ये शब्द भी उसको पता नहीं कहाँ से मिला।
0: जी, तो बच्चे देखते रहते हैं तो और बहुत कुछ सीखते हैं, टेलीविजन
1: हाँ
0: से सीखते हैं, तो यहाँ पर बात बच्चों की है, बच्चों के लिए कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
1: हाँ बिल्कुल, लकड़ी की काठी बहुत सुंदर गाना है।
2: लकड़ी

0: पगड़ाई, पतंग खेलना, ये काठ कठंबर, लोहा
1: पिट्ठू
0: लंबर,
1: पिट्ठू गरमा
0: हाँ,
1: गरम।
0: कोकला खिपाखी, जिम्मे रात आई जे, जेड़ा अगे पीछे देखे उसकी शामत आई जे, बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो, फिर वो डिब्बियां, ढक्कन, ये सब खेलते थे हम, बड़ा खजाना था। आज तो देखो कोई पूछेगा भी नहीं, लेकिन उस वक्त में वो हमारा खजाना था, कंचे बंटे जो होते हैं ये, और इस तरीके की चीजें इकट्ठा
1: गुठलिया
0: करना,
1: आम की।
0: गुठलियां, हाँ इमली की गुठलियां,
1: हाँ,
0: वो भी बहुत,
1: आम की
0: हाँ
1: गुठलिया,
0: बहुत
1: इमली की
0: कीमती
1: गुठलिया।
0: चीजें थी ये हमारे लिए। तो ये सब इसी में बचपन बीता है, जो कि बहुत बेशकीमती, मैं बोलता हूँ कि बहुत अमीर बचपन, में बोलता हूँ इसको रिच बचपन, जिसमें एक्सपीरियंस ज्यादा थे, बेशक पैसा नहीं था लेकिन इतने एक्सपीरियंस थे और इतना बढ़िया बचपन था कि मैं तो तरस गया हूँ अपने बच्चों को वो जिंदगी देने के लिए।
1: जी।
0: काश वो भी ले पाते वो सब, लेकिन बॉम्बे में बहुत मुश्किल है, और आज के मोबाइल और इस जमाने में तो और भी मुश्किल है।
1: बिल्कुल
0: हमारा बचपन जो बीता है वो तमस,
1: जी।
0: कथा सागर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये चीजें देख के, कौन सा
1: बड़े
0: था
1: हुए हम
0: वो
1: लोग,
0: है,
1: मालगुड़ी डेज,
0: मालगुड़ी
1: मालगुड़ी।
0: डेज,
1: हाँ
0: यस,
1: हाँ
0: गालिब का एक सीरियल था,
1: हाँ मिर्ज़ा गालिब,
0: मिर्जा
1: मिर्ज़ा
0: गालिब,
1: गालिब
0: फौजी,
1: वो।
0: शाहरुख खान वाला,
1: हाँ
0: फिर वो एक
1: जी,
0: दो और थे जो
1: सर्कस के।
0: सर्कस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें।
1: हाँ, तो ये जो दूरदर्शन वाले धारावाहिक थे ये तो अलग थे। तब उसमें मतलब एक्टर की बजाय लोग किरदार के रूप में जानते थे, जैसे
0: हम
1: उस सीरियल के
0: लोग,
1: नाम से हम लोग। हाँ, हम
0: यस
1: लोग से
0: यस,
1: याद आया
0: बुनियाद,
1: कि बड़की बड़की और छुटकी, वो किरदार से हम लोग जानते थे।
0: हाँ
1: और मुझे लगता है कि आप ऐसे एक्टर हैं जिनको आपके नाम से ज्यादा आपका किरदार ज्यादा जाना जाता है। मतलब मैंने अभी जब देख रही थी तो आपकी अनगिनत फिल्मों में लोग किरदार के नाम से जानते हैं, तो आपको कैसा लगता है जब किसी किरदार से खास तौर से आपको बुलाया जाता है, कहा जाता है तो?
0: नहीं बिल्कुल, इसका मतलब हमारी मेहनत सफल हुई है,
1: जी।
0: बहुत अच्छा लगता है ये तो। अभी तो खैर नाम से भी जानने लग गए हैं सब लोग, और कोई ये बोलता है कि आपका नाटक देखा वो वाला बहुत अच्छा, तब
1: तो
0: और
1: बहुत
0: ज्यादा
1: कमाल।
0: खुशी होती है। या फिर मेरी डायरेक्ट की हुई एक फिल्म है जो कि एक कल्ट फिल्म बन चुकी है हरियाणा में, उसकी बात करता है कोई तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
1: जी।
0: तो ऐसे ऐसे काम जो आपने, आप पब्लिकली ज्यादा नहीं फ्लरिश हुए लेकिन आपके दिल के करीब हैं कुछ काम, या तुगलक नाटक है जैसे, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो देखा कोई बोलता है तो मजा आ जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि वाह, किसी एयरपोर्ट पर या कहीं किसी
1: जी जी
0: किसी और
1: जी
0: शहर में कोई ऐसे बोल देता है तो ऐसा लगता है कि चलो कुछ तो
1: जी
0: बढ़िया हो रहा है।
1: बिल्कुल। नाटक का जिक्र किया आपने, तो हमें याद है कि एक नाटक किया था जो लगभग 3 घंटे

0: फ्लरिश हुए लेकिन आपके दिल के करीब हैं कुछ काम, या तुगलक नाटक है जैसे, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो देखा कोई बोलता है तो मजा आ जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि वाह, किसी एयरपोर्ट पर या कहीं किसी
1: जी जी
0: किसी और
1: जी
0: शहर में कोई ऐसे बोल देता है तो ऐसा लगता है कि चलो कुछ तो
1: जी
0: बढ़िया हो रहा है।
1: बिल्कुल। नाटक का जिक्र किया आपने तो हमें याद आया कि एक नाटक किया था जो लगभग 3 घंटे चला था, वो कौन सा नाटक था और उस पर आपने दर्शकों को हंसाया, जिसमें मुकेश तिवारी भी है
0: अच्छा, वो बड़े
1: वो?
0: न खेले छोटे खेल।
1: जी जी
0: हाँ, वो एक फ्रेंच प्ले है, डरियो फो का लिखा हुआ, आर्कएंजल्स डोंट प्ले पिनबॉल गेम, उसका हिंदी अनुवाद है।
1: जी
0: और उसमें मेन रोल मैंने किया था लॉफ्टी का, और उसमें 2.5 घंटे का नाटक था वो। तो ये समझो कि 2.5 घंटे तक तो लगातार हंसाया, फिर 10 मिनट रुलाया,
1: क्या
0: फिर
1: बात।
0: आखिरी के 5 मिनट फिर हंसाया। तो ऐसा उसका प्रोसेस था, और वो कहानी भी ऐसी थी, तो बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस रहा था वो। मुकेश तिवारी डबल कास्ट में था मेरे साथ,
1: जी
0: मतलब मैं एक दिन मैं करता था, एक दिन वो। मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस वाइज अभी तक का मेरा सबसे एनर्जेटिक परफॉर्मेंस रहा है वो।
1: जी
0: वो हुआ, आइंस्टाइन हुआ, या
1: परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस के हिसाब से तो बहुत सारी फिल्में आपके खाते में हैं। गंगा जल जो शुरुआती फिल्म है, और प्रकाश झा जिसके डायरेक्टर हैं, तो गंगा जल की बात आप बताइए हमारे श्रोताओं को, कैसे जुड़े प्रकाश झा से? ये आपके शुरुआती दिन थे और संघर्ष के भी दिन थे।
0: प्रकाश झा का मैसेज आया था मेरे पास, फिल्म करने वाला हूं मैं, तो मेरे बारे में सुना किसी से उन्होंने, एनएसडी के ही कई लोग बता देते हैं ना, तो मैं गया तो बस उनसे बातचीत हुई, और उन्होंने बोला कि ये रोल है एक सुंदर यादव का, ये साधु यादव का बेटा है, साधु यादव जो है मेन विलेन है इसमें, तो हम उनके बेटे हो,
1: जी
0: बिगड़ैल बेटे। तो मैंने बोला कि ठीक है, करता हूँ, भी कर ली, मैं बात हो गई। तो मैंने बोला स्क्रिप्ट दे दो, तो बोला स्क्रिप्ट तो मैं अजय देवगन को ना दूं, तो मैं बोला ठीक है भाई। तो फिर मैंने बोला अच्छा मैं यहीं पढ़ लेता हूँ आपके ऑफिस में, बोले हाँ यहीं पढ़ लो, लो। तो मैंने वहाँ वह बैठ करके 3 घंटा स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने, और पढ़ करके मैंने बोला कमाल रोल है जी, मैं करूँगा। हालांकि उसमें डायलॉग नहीं थे कुछ भी ज़्यादा, और वो लिखा हुए में सुंदर यादव कुछ भी नहीं था, लेकिन फिल्म करते करते करते करते उसमें मेरे सीन लिखे जाने लगे,
1: क्या
0: और
1: बात है।
0: हाँ, और मेरा रोल बढ़ता गया बढ़ता गया, और वो मेन विलेन में आ गया तकरीबन तकरीबन क्या एक्चुअली में।
1: जी
0: तो वो प्रकाश झा की खासियत है कि उन्होंने देखा कि ये पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है इसकी, तो उन्होंने मेरे रोल को बहुत अच्छे से उभारा और पूरा फुटेज दिया।
1: जी बिल्कुल।
0: गाना भी था, एक आइटम सॉन्ग था, जो ये संजय दत्त की वाइफ है मान्यता, उन्होंने डांस किया था उस पे।
1: जी अब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना है, सुनवाए हम।
0: यहाँ तो मेरा फिल्म है ना, ये एक सिंग इज किंग का एक गाना बड़ा अच्छा है।

0: सच बताऊं तो विविध भारती में जब मैंने जिक्र किया कि यशपाल जी आ रहे हैं, यशपाल शर्मा जी, बोले गंगा जल वाले, गंगा जल आपके नाम के साथ कैसे जुड़ गया है?
1: तो जुड़ गया है। अरे वो सुनिए, मैं सिक्किम में शूटिंग कर रहा था, सिक्किम में पेलिंग करके एक जगह है जहाँ डैनी
0: जी जी
1: डैनी साहब हैं जहाँ के, तो पेलिंग में शूटिंग कर रहा, जानू बरुआ डायरेक्टर थे, और वहां पर एक छोटी सी बच्ची मिली मुझे और बोल रही, अंकल अंकल आपने गंदे आदमी का रोल बहुत अच्छा करते हो। मैं बोला क्या देखा बेटा तूने, मैंने समझ नहीं आया, तारीफ कर रही है कि बेइज्जती कर रही है। तो मैंने बोला बेटा क्या देखा तुमने, अरे वो जो अजय देवगन के साथ किया ना आपने आंख फोड़ने वाला, बहुत अच्छा था। मैं बोला अच्छा, गंगा जल की बात कर रही है। ये भी एक तरीका है बच्चों का।
0: जी जी
1: मेरी वाइफ भी प्रतिभा नहीं देखने देती बच्चों को, गंगा जल देखने नहीं देती।
0: अच्छा
1: ना, बोल रही है बहुत वायलेंस है, बहुत वायलेंस है।
2: वो छोटे छोटे बच्चे थे मैं,
1: और वाकई में वो पिस्तौल लेकर के ठा ठा ठा ठा करते थे ना जब ऐसी फिल्में देख करके, तो मुझे भी अपने आप पे ना ग्लानी हुई कि यार यशपाल तेरी वजह से बच्चे कितने बिगड़ रहे होंगे ऐसे, तो ये ऐसे रोल मत कर। तो मैंने ना वाकई कॉन्शियसली उस तरीके के रोल करना बंद कर दिया था। अब कई बार नहीं पता होता और करना होता पड़ता है, जैसे राउडी राठौड़ है या कोई जिसमें वायलेंस बहुत है तो करना पड़ता है, लेकिन मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं खुद नहीं करूंगा ऐसा कुछ
0: जी जी
1: जिसमें बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़े।
0: चमेली में आप बने थे केपी सिंह, उसके बारे में बताइए, वो उस भूमिका के बारे में बताइए। करीना कपूर इस फिल्म में थी, बड़ी सुंदर फिल्म थी,
1: बहुत प्यारी फिल्म थी, सुंदर फिल्म थी, और मेरा रोल बहुत बड़ा नहीं था लेकिन बहुत कमाल रोल था मेरा, क्योंकि बहुत लोगों ने चमेली का नाम लिया है। छोटा रोल लेकिन प्रभाव छोड़ने वाला रोल था, क्योंकि वो करीना कपूर की और राहुल बोस की सारी समस्याएं सॉल्व कर देता है।

0: कपूर इस फिल्म में थी, बड़ी सुंदर फिल्म थी
1: बहुत
0: अभी
1: प्यारी
0: देखा
1: फिल्म थी,
0: था।
1: सुंदर फिल्म थी, और मेरा रोल बहुत बड़ा नहीं था लेकिन बहुत कमाल रोल था मेरा, क्योंकि बहुत लोगों ने चमेली का नाम लिया है। छोटा रोल लेकिन प्रभाव छोड़ने वाला रोल था, क्योंकि वो करीना कपूर की और राहुल बोस की सारी समस्याएं सॉल्व कर देता है
0: जी
1: आखिर में आकर के। सुधीर मिश्रा मेरे फेवरेट डायरेक्टर रहे हैं,
0: डायरेक्टर।
1: और जब भी उन्होंने कोई भी रोल दिया, मेरे ख्याल पहले हजारों ख्वाहिशें ऐसी, फिर ये था चमेली था, फिर उसके बाद ये साली जिंदगी, इरफान खान भी थे,
0: जी
1: तो इस जो भी रोल दिए उन्होंने मुझे उन पर पूरा आंख बंद करके भरोसा रहता था कि श्याम बेनेगल हुए, प्रकाश झा हुए, सुधीर मिश्रा हुए, ये
0: जी
1: कुछ
0: जी
1: भी रोल देंगे, अनुराग कश्यप हुए, कोई भी रोल देंगे तो मैं आंख बंद करके कर लूंगा, मैंने बिल्कुल नहीं पूछूंगा
0: जी जी
1: जी।
0: क्या बात है। अब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना है। हसन माया
2: डोली में बिठाई के का
0: आप दोनों गा के सुनाएंगे तो भी

ये थी जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत। आज आपने सुना पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: के साथी बने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का विचरण हमारे आसपास के वन क्षेत्रों में लगातार बना हुआ है। नर दंतैल हाथियों से विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अरचोका का बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर, रामानुजनगर और घुई में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये अभयपुर, मेंढरा, चंदननगर, प्रेमनगर, टुकुडाण, सिलफिली, कनकनगर, करसी, बूढ़ाडाण, गणेशपुर, गुड़गवा, मदननगर, बरपटिया, गोरगी, करचोला के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये चिनिया, महावीरगंज, छतवा, इंदरपुर, कनकपुर, रामपुर, पेंडारी, तनवारी, कोटराही, पोखरा, मदनपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये उदारी, असकला, दोरना, मोहरा, जरहा, डीह के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये नारायणपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, बन कोम्बो, सारंगडाण, बंदरचुआ, लोढ़ा आंबा, डोडा पानी, सोनगेरसा, बीजा घाट, सारूढाब, देवडाण के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारूमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 89 है। ये आमगांव, गेरसा, उदउदा, पोटिया, आमापाली, नागदरहा, कुड़ेकेला, छाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये तौलीपाली, बैगामार, जिलगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा, केंदई और पसान में हाथियों की कुल संख्या 52 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, सिटी पखना, फुलसर, कोरबी, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये बंगूरसिया, चक्रधरपुर, धुमाबहाल, पूंजी पथरा, तराईमाल, नागदरहा, पंडरी पानी, कमतरा, चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के देवपुर और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये नवागांव, चंद्रहाट, अचानकपुर, तालदादर, कोठारी, तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारी पानी, कोनारी, बुड़ार, जिडार, पायलीखंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, हाथियों की सूचनाओं पर रात में खेतों के आसपास या घर के बाहर ना सोएं, हाथियों से सामना हो सकता है। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों

अभी विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जा रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है भुइयां के बोली। आज आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति संघर्षों के भूमिका पर डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा की वार्ता, प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीन की।

0: भुइया के बोली कार्यक्रम के जम्मो सुनवैया संगवारी मन ला सुप्रिया के जय जोहार। संगवारी हो, अब्बड़ धूमधाम ले हमन मनाइन हमर स्वतंत्रता के पर्व ला। लहर लहर लहरावत तिरंगा ला देख के मन में उछाह और उल्लास आ जाते, रोमांच हो जाते और देशभक्ति के भावना बलवती हो जाते। हमर शोषण और गुलामी के दास्ता अंग्रेज मन के दमन और शोषण और हमर संपत्ति के लूटपाट ले शुरू हुईस। और एकर खिलाफ जागरूकता और जन जागृति लाए मा हमन ला कई कई बरस लग गए। काबर के विविधता ले भरे हमर देश मा फूट डालो और राज करो के अंग्रेज मन के नीति अब्बड़ सफल रहीस। अंग्रेज मन के खिलाफ स्वतंत्रता के आंदोलन देश के कोना कोना में फैल गईस। हमर देश के स्वतंत्रता के आंदोलन मा धर्म जाति के भेदभाव ला भुला के सिर्फ देश के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी के भाव ले लाखों लाखों स्वतंत्रता सेनानी मन अपन जीवन ला बलिदान कर दीन। आज हमर स्वतंत्र जीवन, हमर संविधान और हमर प्रजातंत्र यही बलिदान के अनमोल उपहार हवे। हमर राज्य छत्तीसगढ़ घलोक स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाईस। वन प्रांतर और जंगल के भीतरी रहवैया आदिवासी जनजाति मन के अथक प्रयास ला भी हमन ला सुरता करना है। काबर की उमन के गाथा कोनो इतिहास के किताब के पन्ना में ज्यादा नहीं दिखे, तो यही गाथा ला आज हमन आप मन पर लेकर आए हवन। तो आज भुइया के बोली कार्यक्रम में लेवा सुनी स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ के आदिवासी जनजातीय योगदान के भूमिका। वार्ताकार हवे अंचल के जाने माने लोक साहित्यकार डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा।
1: संगवारी मन, स्वतंत्रता दिवस के 80वें जयंती के अवसर पर हमन आज बात करबो छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन में अपन सब कुछ निछावर करैया उन जनजाति आदिवासी सेनानियों के बारे में, जेकर बारे में न तो इतिहास में ज्यादा कुछ लिखे गए हैं और न सामान्य जनता उनकर बारे में ज्यादा कुछ जानते। संगी मन, असल में कोनो आंदोलन हुआ है, वो आंदोलन में हजारों लाखों लोग भाग लेते हैं, पर इतिहास में नाम बस कुछ गिने चुने नेता मन के आते। सबके नाम देना संभव घलो नहीं है, किंतु इतिहास से अलग साहित्य और विशेषकर लोक साहित्य होते, एमा उन सेनानी मन के नाम घलो मिल जाते जेला इतिहास भुला दिए गए है। शिष्ट साहित्य के सिवाय लोक साहित्य में ऐसा सेनानी मन के उल्लेख ज्यादा हावय। लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य एवं जनश्रुति के द्वारा गांव के मनखे ऐसन सेनानी मन के सुरता अपन मन और दिमाग में सकेल के रखे हावय। संगी मन, छत्तीसगढ़ के जनजाति आदिवासी नायक बिरसा मुंडा और कंगला मांझी के बारे में आप मन ला इतिहास में ज्यादा कुछ नहीं मिला, किंतु छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य और जनश्रुतियों में आप मन ला एकर भरपूर जानकारी मिल जाही। संगवारी मन, इतिहासकार मन स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआत 1857 के सैनिक विद्रोह ले मानते, जो मोर विचार में उचित नहीं है। काबर की महाराणा प्रताप जौन अकबर के विरुद्ध युद्ध करे रहिस और शिवाजी महाराज जौन मुस्लिम शासन के विरुद्ध युद्ध करे रहिस, तेहू ता एक प्रकार ले स्वतंत्रता आंदोलन के युद्ध कहे जा सकत है। ये बात आउ है कि पूर्ण रूप से संगठित आंदोलन के शुरुआत 1857 ले माने जा सकत है। संगवारी मन, मुस्लिम शासन काल तक जनजाति आदिवासी मन में हुकूमत के प्रति विरोध के घटना कम दिखा

आई पड़ते। एकर कारण ये है कि मुस्लिम शासक जौन शासन बाहर ले यहाँ हमार भारत वर्ष में आईन, ये सुदूर वन और वन अंचलों में और गांव में रहने वाले जनजाति और आदिवासी लोगों के जीवन में कोनो बाधा या अड़चन नहीं डालिन, ना उनकर जीवन में कोनो हस्तक्षेप करिन। किंतु अंग्रेज ता व्यापारी के रूप में ये देश में आए रहिन, लूटे बारे देश का, ता उमन जहां पैसा दिखाए वहां उमन प्रवेश कर जाए। यही कारण है कि वो गांव और आदिवासी मन के शोषण घलो शुरू कर दिन। अंग्रेज मन अपन साथ नवा नवा मशीन और उपकरण घलो लाए रहिन, जेकर कारण व्यापार काफी बढ़िस और व्यापारी मन सुविधा पाके सुदूर जंगल और गांव तक पहुंचे लागिन। जंगली उपज गोंद चिरौंजी जंगली औषधि उन्हें काफी सस्ता भाव में मिल जाए। एकर बाद जो है अंग्रेज मन के शासन काल में विदेश ले ईसाई मिशनरियां घलो आईन। ये ईसाई मिशनरियां शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर छत्तीसगढ़ के सुदूर गांव और वनवासी अंचलों में पहुंच के और भोले भाले आदिवासी मन के गरीबी और अशिक्षा के और डर दिखा के फायदा उठाकर कराए लागिन। ये सब बात के प्रभाव छत्तीसगढ़ के जनजाति आदिवासी मन पर बहुत पड़िस। उमन देखिन कि हमार संस्कार और रीति रिवाज माँ ये सब चीज के प्रभाव पड़त है और वो अलग हो जात है। आदिवासी मन ला अपन संस्कृति म खतरा दिखाई देस और उन मन शासन ले विद्रोह कर दिन। संगवारी मन एकर पहली कि मैं छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति आदिवासी जो सेनानी है एकर बात करूं, ये बात के खुलासा कर देना चाहत हूं कि आज देश के जौन विकास और सुख सुविधा हम देखत हन एला पाए बर हमार पुरखा मन गजब के बलिदान दिए हैं। लाखों लोग के कुर्बानी ले हमला ये आजादी मिले है, लेकिन ये बात सच है जैसा कि राष्ट्रीय कवि श्री कृष्ण सरल हा कहे है कि ये सच है याद शहीदों की हम सबने आज भुलाई है, ये सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है। मैं इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के भाव जगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। संगी मन आज के दिन उन बलिदानी शहीद मन ला सुरता करना, उनका आभार करना और उन मन के जीवन ले राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति के भाव ग्रहण करना हमार परम कर्तव्य है। अब बात स्वतंत्रता आंदोलन के। दरअसल इतिहासकार मन के मुताबिक भारत वर्ष में स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआत सन 1757 के प्लासी के लड़ाई के बाद माने जाते। 18वीं सदी ले लगभग 22 विद्रोह दर्ज किए गए हैं अंग्रेजी शासन के खिलाफ, जबकि 19वीं सदी में कुल 76 विद्रोह होइस, जेमा 28 विद्रोह था सिर्फ आदिवासी जनजातियों द्वारा किए गए है। आदिवासी विद्रोह के एक कहानी सन 1763 में हुए सन्यासी विद्रोह के साथ ही शुरू हो गए रहिस। ए प्रकार ले हम अंग्रेजी शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआत सन 1700 ले मान सकत हन। और एमा ध्यान दिए की बात ये है कि ये आंदोलन के शुरुआत पढ़े लिखे शिक्षित मन के द्वारा नहीं, बल्कि अनपढ़ कहे जाने वाले निरक्षर आदिवासियों द्वारा शुरू किए गए रहिस। कोनो कवि कहे हैं, हमको गंवार कहने वालों हमने भी गोली खाई है, भारत माँ की आजादी को हमने भी जान गंवाई है। इतिहासकार और विद्वान मन छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआत सन 1774 के बस्तर के हलवा विद्रोह ले मानते हैं, जब वहां के आदिवासी मन राज परिवार और अंग्रेजी शासन के अन्याय के विरोध में बगावत कर दिन। एकर सिवाय बस्तर में भोपाल पट्टनम विद्रोह सन 1795, तारापुर और मेरिया विद्रोह सन 1842, लिंगागिरी विद्रोह सन 1856, कोई विद्रोह सन 1859, मुरिया विद्रोह सन 1876 मा होय रहिस, जेमा भारी संख्या मा आदिवासी तीर कमान और

अपन पारंपरिक वेशभूषा में सम्मिलित हुए रहिन। एकर सिवाय छत्तीसगढ़ में सोना खान जमींदारी के जमींदार वीर नारायण सिंह के बलिदान के कहानी बहुत प्रसिद्ध हावय। दरअसल 50-60 के दशक में छत्तीसगढ़ में भीषण दुष्काल पड़े रहिस। आम आदमी दाना दाना बर तरसत रहिन, छोटे छोटे लड़का भूख ले मरत रहिन। जबकि यही बेरा में व्यापारी मन अंग्रेज शासन के साथ मिलके जमाखोरी कर ज्यादा पैसा के लालच में अनाज चुपके चुपके बाहर भेजत रहिन। वीर नारायण सिंह उन व्यापारी मन के पास गईस और उनला समझाइस कि भूख प्यास ले मरत गरीब जनता पर थोकुन ध्यान देना चाहिए। व्यापारी मन नहीं मानिन तो आखिर में वीर नारायण सिंह ला बहुत गुस्सा आईस और वो अपन साथी संगी संग मिलके उन जमाखोर व्यापारी मन के गोदाम लूट के गरीब भूखा मरत जनता में बांट दिस। व्यापारी मन एकर शिकायत बाद में अंग्रेज शासन मा करिन। अंग्रेज शासन कोमा खान मा फौज भेज के वीर नारायण सिंह ला गिरफ्तार करके जेल मा डाल दिन। किंतु वीर नारायण सिंह जेल ले भाग गए। बाद मा फिर ओला गिरफ्तार करके 10 दिसंबर सन 1857 मा रायपुर मा जोन मेर अभी जय स्तंभ चौक बनाए गए है उहे वही चौक मा सब जनता का आगू मा फांसी मा लटका दिए गई।

कवि लक्ष्मण सिंह मस्तूरिया ये घटना के ऊपर खंड काव्य लिखे है, जेकर दो तीन लाइन है। वीर नारायण सिंह तुम्हारे त्याग और बलिदान से आग के शोले निकलते अब भी सोना खान से। ये घटना ला देख के आम जनता के मन में अंग्रेजी शासन के खिलाफ नफरत और विद्रोह के भावना पैदा हो गए रहीस, जेकर परिणाम स्वरूप जनवरी सन 1858 में श्री हनुमान सिंह जौन अंग्रेजी शासन में सैनिक के पद में काम करत रहिस, अपन अंग्रेज ऑफिसर जेकर नाम सिंडवेल रहिस, मेजर पद में कार्यरत रहिस, वो सिंडवेल के ऊपर में हनुमान सिंह तलवार ले 7 बार वार करिस, जेकर कारण मेजर सिंडवेल के वही समय में मृत्यु हो गए। अत के नहीं, हनुमान सिंह अपन साथ काम करैया सैनिक मन ला घलो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करे बर उकसाइस, और जेकर कारण सैनिक मन अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिन, और उन सबला गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाए गईस, और 17 सैनिक मन ला फांसी के सजा सुना दिए गईस। किंतु ये बीच में मौका पाकर हनुमान सिंह जेल ले भाग गईस। हनुमान सिंह के त्याग और वीरता ला देख के ओला छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे घलो कहे जाते। वैसे कुछ विद्वान और इतिहासकार मन छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन के पहली शहीद बस्तर जिला के परलकोट गांव के जमींदार ठाकुर गेंद सिंह ला मानते हैं। ठाकुर गेंद सिंह के अगुवाई में 24 दिसंबर 1824 में बस्तर के अबूझमाड़ गांव में अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक बहुत बड़े जनसभा के इंतजाम करे गए रहिस। ये सभा में भाग लिए बर गांव गांव में बुलौवा के रूप में धावड़ा पेड़ के जो डगाली होते तेला पठो गए रहिस। डगाली भेजे के पाछू मकसद ये रहिस कि डगाली के पाना सुखाए के पहली सबो झनला सभा के स्थान में पहुंच जाना है। इस भारी जनसभा के बाद बस्तर के जनता में अंग्रेजी

0: शासन के विरोध में आग औ भड़क गए रहिस। सामान्यतः सीधे साधे शांत स्वभाव के आदिवासी अब मरने मारने पर उतारू हो गए। सरकारी खजाने और अंग्रेजों के समर्थक व्यापारियों के गोदाम लूटे जाने लगे। अंग्रेजों के विरुद्ध जगह जगह सभा होए लागिस। जन आंदोलन जंगल के आगे के समान चारों कोती बगरे लागिस। वो जनसभा में 14 जनवरी सन 1885 में ये सभा होए रहिस। जनता के गुस्सा भड़के के बाद अंग्रेजी शासन अपन पूरा ताकत ले ओला खत्म करे के उद्यम में भिड़ गए। और सफल नहीं हो पाइस तब अंग्रेजी सेना है मराठा शासन ले मदद मांगिस। और अंग्रेज और मराठा दोनों के सेना मिलके परलकोट गांव ला चारों कोती ले घेर लीन। और 20 जनवरी सन 1825 में गेंद सिंहला अंग्रेज शासन द्वारा गिरफ्तार कर लिए गईस। और वही दिन ओला जगदलपुर मा राजमहल के आगो मा फांसी मा लटका दिए गईस। भारतवर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन मा छत्तीसगढ़ के जनजातीय आदिवासियों द्वारा किए गए भूमकाल आंदोलन के भी काफी नाम और चर्चा होते। भूमकाल के मतलब है अपन जमीन पर लड़ाई। असल मा आदिवासी मन जल जंगल और जमीन मा अपन अधिकार मानत हावे। जंगल उनकर जीवन है और जंगल की रक्षा करना उनकर परम कर्तव्य है। अंग्रेज मन अपन स्वार्थ पूर्ति बर नवा नवा कानून बना के जंगल के अधिकार ले आदिवासी मन सो छीनत रहिस। ये सब ला देख के अक्टूबर सन 1909 के दिन जौन दिन बस्तर के दशहरा उत्सव रहिस, बस्तर के राजमाता स्वर्ण कुंवर हर एक ठिन जनसभा बुलाइस। वो जनसभा में राजमाता आदिवासी मनला अंग्रेजी शासन के जंगल नीति के विरोध में सशस्त्र क्रांति करे के आह्वान करिस। और क्रांति के अगुआ नेता गुंडाधुर ला बनाइस। गुंडाधुर बस्तर के एक छोटे से गांव मेथरम के रहिये रहिस। गुंडाधुर के अगुआ बने के बाद नौजवान मनला क्रांति दल में जोड़िस। और अंग्रेजी शासन के जंगल नीति के विरोध में बगावत करे लागिस। गुंडाधुर और ओकर संगी मन गोरिल्ला युद्ध के उस्ताद रहिन। उन मन अंग्रेजी सेना और अधिकारी मनला अपन छद्म युद्ध ले बहुत परेशान करिन। गुंडाधुर और ओकर संगी मन के डर के मारे अंग्रेज सैनिक और अधिकारी मन पहाड़ और जंगल मा गुफा मा छिपत फिरत रहिन। आखिर मा अंग्रेज अधिकारी के लालच में फंस कर गुंडाधुर के एक ठिन संगी हा गद्दारी कर दिस। वो गद्दार संगी के गद्दारी के कारण 10 फरवरी 1910 को गुंडाधुर को धोखे से अंग्रेज सैनिक मन पकड़ लिन। और वही दिन ओला फांसी पर लटका दिए गईस। गुंडाधुर के बाकी साथी मन घलो पकड़ के जेल में डाल दिए गईन। ये प्रकार अंग्रेजी शासन द्वारा 6 मार्च 1910 को भूमकाल विद्रोला घलो खत्म कर दिए गईस। संगवारी मन ये प्रकार हमन देखत हन कि भारतवर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति आदिवासी मन के बहुत बड़ा योगदान रही से। इतिहासकार और विद्वान मन स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बहुत कुछ लिखे हावे पर लागते कि वो मन जनजाति आदिवासियों और आंचलिक नेताओं मजदूरों और किसानों की उपेक्षा किए है ऐसे मोर मानना है। और जो सम्मानजनक स्थान उन मनला मिलना चाहिए मोर विचार मा तेन इतिहास में नहीं मिल पाइस। मैं एक बार फिर कहत हूँ कि आज जोन सुख सुविधा के उपभोग हम करत हन, आज जोन हमार देश प्रगति और खुशहाली के ऊंचाई पार करत है तेकर पाछू उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मन के त्याग और बलिदान है। नीव के पथरा भले दिखाए नहीं भुइया मा बहुत नीचे गड़ाए रहते पर बड़ा बड़ा कई मंजिला के बिल्डिंग ओखरे ऊपर टिके रहते। ये बात ला झन भुलाहा और झन भुलाहा उन त्याग और बलिदान करैया हमार स्वतंत्रता के अमर सेनानी का। काबर की जैसे कि कोनो कवि कहे है शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। जय हिंद।
1: स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ के आदिवासी जनजाति योगदान के संदर्भ में जानकारी देवत रहिन ए अंचल के साहित्यकार लोक साहित्य के जानकार डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा। तो देखो

संगवारी मन, कतका कठिन संघर्ष रहिस ए आजादी ला पाए के, औ अपन जीवन के परवाह किए बगैर सच्चा देशभक्ति के उदाहरण प्रस्तुत कर बलिदान दे दीन कतको शहीद मन, ओकरे कारण आज हमन एक खुले हवा में सांस लेवत हवन। एक बात ला हमन ला सुरता रखना है कि हमर एकता ही हमर ताकत है। धर्म, जाति, आचार विचार, वेशभूषा ए सब के भेदभाव ला भुला कर हमन ला हमर देश ला मजबूत बनाना है। ओकर बाद ही सही मायना में देश के विकास के हमर सपना हा साकार होही। तो ही कामना के संग आज के भुइया के बोली कार्यक्रम यही सिरात है। सुप्रिया ला अनुमति देवा। जय जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भुइयां की बोली। आज आपने सुना छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय संघर्षों के भूमिका पर डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा की वार्ता। प्रस्तुति थी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

मिलकर साथ में सबको, हर किसी को साथ लाना है, सभी अपराधों को खत्म करने को, बस हमें चेतना जगाना है। महिलाओं पर अत्याचार और बाल मजदूरी, ये सब बस बन जाए इतिहास। नशे की लत और सड़क दुर्घटनाओं से ना हो अब किसी जीवन का नाश।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2026 को स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर गीत शर्मा उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान रोपाई व्यासी में खरपतवार नियंत्रण। इस विषय से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665923100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 20 अगस्त 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। हमारे फोन नंबर एक बार और नोट कर लें। फोन नंबर है 2665923100026 और एसटीडी कोड है 07752। सूचना समाप्त हुई।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा।

ये कागज के टुकड़े नहीं जनाब, ये तो गुजरे कल से हमारी मुलाकात कराती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है आप सभी का आज की महिला सभा में, जिसमें आज मैं हूँ प्रज्ञा सिंह राणा। स्वीकार कीजिए प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार, सलाम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जय जोहार। बहनों, कितना अच्छा मौसम हो गया है ना, धरती एकदम हरी भरी लग रही है। लग रहा है धरती भी वर्षा ऋतु का स्वागत हरियाली की चुंदरी ओढ़कर मुस्कुरा कर कर रही है। ऐसे समय में तो लग रहा है बस कहीं घूमने जाया जाए और प्रकृति के पास ढेर सारी तस्वीरें खींची जाए। सच में पिछले साल इसी समय हम लोग उत्तराखंड

उसे देखकर खुद से सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या वह लड़की आज भी जिंदा है मेरे अंदर। बहनों, कुछ तस्वीरें सिर्फ बीते हुए कल को याद करने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल की शुरुआत भी हो सकती है। बिल्कुल, और इसलिए तस्वीर खींचते रहिए, हंसते हुए, सीखते हुए, गिरते हुए, उठते हुए, अपने सपनों को पूरा करते हुए, सब

0: SBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
0: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
3: आइए बहनों, कौशल विकास में सुनते हैं बिलासपुर की स्नैक रेस्क्यूअर अजीता पांडे जी को।
4: बहनों, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम कौशल विकास, जहां हम उन हुनरमंद लोगों से रूबरू होते हैं जिन्होंने अपने हुनर को अपनी पहचान और समाज की सेवा का माध्यम बनाया है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही साहसी और हुनरमंद शख्सियत मौजूद है जो सांपों को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करने का काम करती है। जहां आमतौर पर सांप को देखकर डर और घबराहट होती है, वहीं इन्होंने अपने कौशल और प्रशिक्षण के जरिए इस डर को जिम्मेदारी में बदला। जी हाँ, आज हमारे साथ है स्नैक रेस्क्यूअर यानी कि सांपों को पकड़ने वाली शख्सियत अजीता पांडे जी। स्नैक रेस्क्यू सिर्फ साहस का काम नहीं, बल्कि इसमें सही जानकारी, धैर्य, सावधानी और सांपों के व्यवहार की समझ बेहद जरूरी होती है। जी हाँ, तो आइए जानते हैं अजीता पांडे जी की इस अनोखे हुनर की कहानी को और सुनते हैं एक स्नैक रेस्क्यूअर बनने का सफर। अजीता जी, सबसे पहले आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: सबसे पहले हमें ये बताइए, आप सांपों को रेस्क्यू करने वाले क्षेत्र से कैसे जुड़ी?
5: जैसे बच्चे अपने घरों को देख के सीखते हैं, वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि जैसना घर द्वार तैसना कपाट, मतलब घर का जैसा माहौल होगा बच्चे वैसे ही बढ़ेंगे। मैंने शुरू से ही अपने घरों में जीव दया देखी है, संवेदनशीलता देखी है, करुणा देखी है। घरों में जब भी सांप आते थे, मेरे घर वाले कभी मारते नहीं थे, तो मुझे लगा कि इनका होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जैसे मैं बड़ी होती गई, तब मुझे ऐसा समझ आया कि ऐसे एक वन्य जीव है जो हम इंसानी रहवास में होते हैं और उनका होना बहुत जरूरी भी है। कि सांपों को जब लोग देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो उनकी मृत्यु हुई है, हर सांप जहरीला होता है और हर सांपों को मार दिया जाना चाहिए। पर वहां पे मुझे ऐसा लगा कि इनको भी बचाने के लिए किसी न किसी को आगे आने की जरूरत है। वाइल्ड एनिमल जिनका होना एक्चुअल में बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए, खाद्य श्रृंखला के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, बट उनको बचाने के लिए हाथ बहुत ज्यादा कम आते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी सेवा में लग जाए।
4: जी, जब आपने ये कार्य शुरू किया था तो घर परिवार या आसपास के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी?
5: कहते हैं संघर्ष का जो समय होता है वो काफी अकेला कर देता है, और जैसे ही सफलता आती है बहुत सारे लोग जुड़ते जाते हैं। शुरुआत में तो थोड़ी सी मुश्किलें ये आई कि सांप पकड़ने वाले को एक नजर में सपेरा कहा जाता है, सर्प रक्षा या फिर सर्प मित्र ना कह के सपेरे के नाम से जब जोड़ा जा रहा था तो काफी ज्यादा चीजें बदलने लगी थी। घर परिवार में भी बहुत सारे, समाज में भी समस्याएं आई, लेकिन मेरे घर वाले काफी ज्यादा सपोर्टिव, मेरी बहनें बहुत ज्यादा मेरा सपोर्ट करती हैं। तो जिस वक्त मेरा संघर्ष चल रहा था उस टाइम में मेरे घर वाले साथ थे, मेरी बहन साथ थी, और जैसे ही अभी अब सब सफलता मिल गई है तो रिश्तेदारी, वैसे भी रिश्तेदारी निभाना चाहते हैं।
4: जी, ये तो आपने सही कहा। जब हम किसी भी सांप को रेस्क्यू करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान में रखनी चाहिए अजीता जी?
5: एक सबसे अच्छा रेस्क्यूअर वो होता है कि सांप को रेस्क्यू करते वक्त सांप को भी तकलीफ ना हो, आसपास के लोगों को भी तकलीफ ना हो और खुद को भी तकलीफ ना हो, वही एक अच्छा रेस्क्यूअर बन सकता है। तो सांप चाहे जहरीला हो या फिर बिना जहर वाला हो, बहुत ही रिस्पेक्टफुली उसे रेस्क्यू करना चाहिए।
4: सबसे ज्यादा मुश्किल किस तरह के स्थानों में आती है? घर में, खेत में, जंगल में या किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में?
5: मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी अगर रेस्क्यू कर रहा है तो केवल घरों पे करे जहाँ उनका होना थोड़ा खतरा हो सकता है, उनको उनके जगहों से रिलोकेट ना करें। इसके साथ ही बहुत ज्यादा अगर चुनौतीपूर्ण की बात कही जाए तो हमारे पहुंचने से पहले ही लोग काफी ज्यादा उन्हें परेशान कर दिए होते हैं, निकालने की कोशिश में डंडे से मार दिए होते हैं, फोरेड मिट्टी तेल या धुआं का उपयोग जब कर चुके होते हैं तब सांप काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गया होता है, तो वो उस वक्त हमारे जो रेस्क्यू होती है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और बहुत ज्यादा मुश्किल होता है उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू करने में।
4: जी, हमारे समाज में काफी ज्यादा डर और भ्रांतियां हैं सांपों को लेकर के।
5: जी, हमारे समाज में जैसे हमारे पूर्वज कहते आते हैं ना, लोग उसमें क्वेश्चन नहीं करते हैं कि ऐसा क्यों कहा होगा, मानते हैं वो साइंटिफिक, ऐसे कोई रीजन नहीं देते।

0: चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी।

0: लेकिन फिर भी उनका कोई ना कोई कहने का कारण वही रहता है कि हम सांपों से दूरी बना ले। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जैसे असड़िया के लिए अगर हम ले लें, जो कि नॉन वेनमस है कम्प्लीटली, जिसे अंग्रेजी में रेड स्नेक कहा जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ी में असड़िया या फिर धामन कहा जाता है। ये पूर्ण रूप से हार्मलेस नॉन वेनमस है, मतलब इनके अंदर कोई भी विष नहीं है, इनसे किसी भी प्रकार की जनधन की हानि नहीं हो सकती। चूंकि भ्रांति यह है कि यह सांप, चूंकि नाम असड़िया है, तो असाढ़ में इसका जहर होता है, जो कि पूरी तरह भ्रांति है। कभी भी वेनम या फिर विष जो रहेगा वो सावन भादो असाढ़ देख के नहीं आएगा, रहेगा तो आठों काल बारह महीना रहेगा, नहीं रहेगा तो कभी भी नहीं रहेगा। इसके साथ ही एक भ्रांति ये भी है कि उसके दांत में जहर ना हो के उसके पूंछ में है, तो ऐसा कभी नहीं होता। अगर वेनमस स्नेक है तो अगर वेनम होगा तो उसके फेंस ग्लैंड में ही होगा। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो भ्रांतियां हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अब इससे निकलनी चाहिए।
1: जी, तो ये सांप जो है हमारे घर पर क्यों आता?
0: सांपों का हम इंसानों के रहवास तक पहुंचने का मुख्यतः तीन कारण है। सबसे पहले आहार या शिकार के लिए, क्योंकि आहार या फिर शिकार उनका हमारे घर तक क्या करेगा। जैसे कि काफी ज्यादा बरसात होने की वजह से मेढक, टिड्डे, छिपकली सूखे जगह की तलाश में हमारे घर तक आ जाते हैं। अब वो उनका तो आहार है, इसकी वजह से सांप हमारे घर तक आते हैं। हमारा अनाज जहाँ रहेगा वहां तक चूहे आएंगे, और चूहे जहाँ रहेंगे वहां पे सांप आएगा।
1: जी।
0: दूसरा कारण है अपने शरीर का तापमान सामान्य बनाने के लिए। जैसे ठंड के समय में उनको बहुत ज्यादा ठंडी लग जाती है, उनको भी तकलीफ होती है। एक जिंदा जीव है, चूंकि बोलते कोल्ड ब्लडेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बर्फ में रख दिया जाए, तो ठंड उन्हें भी लगती है। वो अपने शरीर के तापमान को अपने अनुसार सामान्य बनाने के लिए, बास्किंग लेने के लिए, गर्माहट लेने के लिए कभी कभी हमारे घरों तक आ जाते हैं। इसके अलावा तीसरा कारण ये है, गर्मियों के समय में अब उन्हें भी काफी ज्यादा गर्मी लगेगी, चूंकि हमारा घर टाइल्स का है, हमारे यहाँ का टेम्परेचर बाहर के हिसाब से काफी सामान्य होता है, इसकी वजह से वो आ जाता है। एक कारण हम ले सकते हैं, उनके घरों तक पानी भर जाता है, तो छाए की तलाश में, सूखे जगह की तलाश में वो हमारे घर तक आ जाता है।
1: जी, ये सांप अगर हमारे घर पर आ ही गए हैं तो क्या करना चाहिए?
0: अगर कोई भी सांप इंसानी रहवास तक पहुंच गए हैं तो केवल दूर से नजर रखना है। फोरेड, मिट्टी तेल, धुआं, इसका उपयोग बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से नहीं करना है। आप अपने आसपास के वन विभाग को या फिर स्नेक रेस्क्यूअर को या फिर जीव सेवकों को जानकारी दीजिए। सांप को सुरक्षित रेस्क्यू करा के उसे उसके एरिया के अनुसार रिलीज कराइए। कभी भी खुद से कोशिश ना कीजिए, अगर करते भी हैं तो सुरक्षित तरीके से कीजिए कि उससे आपको भी तकलीफ ना हो और सांप को भी तकलीफ ना हो।
1: जी, चलिए, ये आ गए, हमने सावधानी बरती और रेस्क्यू करवा दिया कि वो वापस चले गए। अगले बार में हम ऐसी क्या सावधानी रखें कि सांप हमारे घर पर ना आए?
0: सांप हमारे घर पे, जैसे मैंने बताया, तीन कारणों से आया, तो हम तीन ही तीन कारणों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि घर के बाहर ऐसे कूड़ा करकट नहीं रखेंगे, पोर्च वाले जैसे एरिया पे पेपर वगैरह का स्टोर करके रख लेते हैं, तो ऐसे जगहों पर नहीं रखना है, क्योंकि ये जब रहेंगे तो दूसरे जो जीव है उसे अपना आशियाना बनाने वहां तक पहुंच जाएंगे। साफ सुथरा रखना है। दूसरी बात ये है कि घरों पे पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। इसके अलावा ये है कि आप कभी भी कूड़ा करकट वगैरह से या फिर कबाड़ वाली जगह से अगर कुछ सामान निकाल रहे हैं तो पहले डंडे से ठक ठकाइए, उसके बाद हाथ डालिए, क्योंकि सर्पदंश केवल एक दुर्घटना है। जैसे ट्रेन एक्सीडेंट होना, गैस फटना केवल एक दुर्घटना है, उसी प्रकार से सांप कभी भी किसी को भी प्लान करके मारने नहीं आता। वो जब तक अपने जान का खतरा महसूस नहीं होगा वो कभी भी किसी को भी हार्म नहीं करेगा। इसलिए हमारी सावधानी, हमारी सतर्कता हमारी जिम्मेदारी है।
1: अगर किसी सांप ने घर के किसी सदस्य को काट लिया है तो तुरंत के लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या करना चाहिए?
0: मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास या फिर कहीं पे भी सर्पदंश की दुर्घटना घट रही है, केवल अस्पताल जाइए, क्योंकि जितनी जल्दी हम अस्पताल मरीज को पहुंचा सकते हैं उतनी ही ज्यादा संभावना बढ़ेगी उनका जीवन बचाने के लिए। उसे धोना, उसे बांधना, ये सब करने की वजह से आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। जितनी जल्दी हो अपने पास में जो सरकारी अस्पताल हो वहां पहुंचने की कोशिश कीजिए। जो चीजें हमें मूवीज वगैरह में दिखाई जाती है, उस जगह को काट देना है, उस जगह को बांध देना है, उस जगह को चूस देना है, वो तो और बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे सामने वाले को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो जाएगी।
1: जी, सही कहा। अजीता जी, कोई भी सांप जहरीला है कि नहीं, कैसे पहचाने?
0: मैं तो आप सभी से यही सरल शब्दों में कहना चाहती हूँ कि पहचानने के लिए फिर आपको करीब जाना होगा, और आप जब करीब जाएंगे तो सर्पदंश होने की जो दुर्घटना है उनकी संभावना है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सांप सांप होता है, उससे डरिए, उनकी इज्जत कीजिए। अगर आपके घरों तक सांप आ जाता है तो रेस्क्यूअर को जानकारी दीजिए, सुरक्षित रेस्क्यू कराइए, और बहुत ज्यादा सांप को पहचानने के लिए करीब जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे सर्पदंश होने की दुर्घटना बढ़ जाएगी।
1: जी, सही कहा आपने कि हमें कोई जरूरत ही नहीं है पहचानने की।
0: Yes.
1: अभी तक का आपका सबसे चुनौतीपूर्ण या यादगार रेस्क्यू कौन सा है?
0: एक रेस्क्यू था जहाँ पे मुझे पहुँचने में 12 मिनट लगे हुए थे, और वहाँ मेरे पहुँचने से पहले ही लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा परेशान कर दिया था। उन्हें लग रहा था कि कहीं घर के अंदर न घुसे, और वो हुआ ही वैसा ही कि वो आंगन से पेड़ में चढ़ते चढ़ते वो उनके घरों तक पहुँचने ही वाला था। मैं पहुँची तो वो काफी ज्यादा अग्रेसिव था, और वो सांप था कोबरा, अच्छे बड़े साइज में था, और चूंकि दीवार के ऊपर था तो मुझे बहुत ही ज्यादा

सुरक्षित रेस्क्यू करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मैं जब टेल पकड़ती थी तो वो सामने फन फैला के आ जाता था, टेल छोड़ती थी तो वापस वो घरों के अंदर जाने की कोशिश करता था। उनके घर में बहुत सारे छोटे बच्चे भी थे, तो वहां पे मुझे बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए लगा क्योंकि अगर मैं अभी रेस्क्यू नहीं करी तो बाइट होने की संभावना काफी ज्यादा है बाद में। इसलिए मुझे जैसे भी है मैंने रेस्क्यू किया और लोगों को यही समझाया कि रेस्क्यू करके आते तक केवल नजर रखना है, किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे एक रेस्क्यू की जिम्मेदारी बन रही है आपको बचाने की, सांपों को बचाने की, वैसे कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बन रही है जो रेस्क्यू

0: वो हुआ ही वैसा ही कि वो आंगन से पेड़ में चढ़ते चढ़ते वो उनके घरों तक पहुंचने ही वाला था। मैं पहुंची तो वो काफी ज्यादा अग्रेसिव था और वो सांप था कोबरा, अच्छे बड़े साइज में था। और चूंकि दीवार के ऊपर था तो मुझे बहुत ही ज्यादा सुरक्षित रेस्क्यू करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी, चूंकि मैं जब टैल पकड़ती थी तो वो सामने फन फैला के आ जाता था, टैल छोड़ती थी तो वापस वो घरों के अंदर जाने की कोशिश करता था। उनके घर में बहुत सारे छोटे बच्चे भी थे तो वहां पे मुझे बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए लगा क्योंकि अगर मैं अभी रेस्क्यू नहीं करी तो बाइट होने की संभावना काफी ज्यादा है बाद में। इसलिए मुझे जैसे भी है मैंने रेस्क्यू किया और लोगों को यही समझाया कि रेस्क्यूअर के आते तक केवल नजर रखना है, किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे एक रेस्क्यूअर की जिम्मेदारी बन रही है आपको बचाने की, सांपों को बचाने की, वैसे कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बन रही है जो रेस्क्यूअर आ रहा है उन्हें बचाने की।
1: जी सही कहा। सांप हमारे पर्यावरण के लिए और खेती के लिए किस तरह उपयोगी है अजीता जी?
0: आपने सुना होगा कि सांपों को किसानों का दोस्त कहा जाता है क्योंकि सांप ऐसे प्रजातियों को नियंत्रित करता है जो हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह है। जैसे मेंढक की प्रजाति अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो भी तकलीफ हो जाएगी, चूहों की प्रजाति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारे अनाज पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये ऐसे जीव है जो पारिस्थितिक तंत्र को मैनेज करती है, खाद्य श्रृंखला को मैनेज करती है और ये हमारे पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी है। तो इनका होना भी उतना ही जरूरी है जितना हम इंसानों का होना है।
1: क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिसे लोग सांप समझ रहे हैं और वास्तव में वो सांप था ही नहीं?
0: हाँ जी, ऐसा होता है हमारे साथ कई बार कि लोग सांपों को घर के अंदर आते तो देखते हैं बट वहां पे हमारे पहुंचते तक खड़े नहीं होते और सारे कबाड़ वगैरह हमने साफ कर दिया और फिर अंत में ऐसा पता चलता है कि सांप तो यहाँ था ही नहीं क्योंकि वो खड़े होकर नजर रखते ही नहीं है, तो हमारा जाना यहाँ पे बेवजह हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी लोग ऐसे अलमारी के पीछे या फिर ड्रॉर वगैरह के नीचे ऐसे पूंछ देख लेते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सांप है, और जब हम जाके वहां पे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो चूहों का पूंछ होता है। तो कई बार हम सांप के साथ में चूहों का भी रेस्क्यू करते हैं।
1: सांप के अलावा भी आप किसी और जानवर का आपने रेस्क्यू किया?
0: हाँ जी हाँ, चूंकि अब मेरे घर वाले ही बहुत ज्यादा संवेदनशील है, जैसे रोड में रहने वाले गाय वगैरह हो गए जिनका स्पॉट में ट्रीटमेंट मुश्किल है, उनको जरूरत है एक शेल्टर की या फिर एक छोटे से घर में आंगन की, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं घर तक ले आती हूँ, उनका ट्रीटमेंट करती हूँ। ट्रीटमेंट होने के बाद रिहैबिलिटेशन वाले कंडीशन में फिर उनको रिलीज किया जा सकता है तो हम उन्हें वापस एरिया पे रिलीज करते हैं, नहीं किया जा सकता स्थिति नहीं है तो फिर वो मेरे घर पे ही रहते हैं। और ऐसे ही कई कुत्ते हैं, स्वान है जिसे कहा जाए, जिनके कोई ऑनर नहीं है, वो रोड में रहने वाले बच्चे हैं, अगर उनको भी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है तो हम अपने जितनी हमारी क्षमता है उनके अनुसार हम रेस्क्यू करके इलाज वगैरह कराते हैं।
1: जी,
0: और मैं नगर निगम से भी और काफी जगहों से भी यही अनुरोध करना चाहती हूँ, अगर ये आपके में कैपेबिलिटी है तो आप प्लीज अपने एरिया के बच्चों को एनिमल बर्थ कंट्रोल में भेज के उनका बर्थ कंट्रोल जरूर कराएं, वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि जैसे इनकी जो प्रजाति है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है तो डॉग बाइट के केसेस बढ़ते हैं जिसमें गलतियां अक्सर इंसानों की होती है बट गलत हमें से डॉग्स हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम इनकी प्रजाति को नियंत्रित करते हैं, वैक्सीनेशन पे ध्यान देते हैं तो सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक तो कंट्रोल की जा सकती है।
1: एक और मजेदार सवाल पूछना चाहती हूँ कि सांप अगर बोल पाते तो आप उससे क्या पूछती?
0: मैं हमेशा सांपों को या फिर जो भी एनिमल्स रेप्टाइल्स में अगर मैं रेस्क्यू करती हूँ तो एक वाइब जो है वो काफी ज्यादा मैच होती है और लोगों को इन चीजों से अगर जो मुझे पसंद करते हैं उन्हें ये बहुत अच्छा लगता है। और एक तरफ से शायद मैं इन्हीं की वजह से जानी जाती हूँ कि जैसे मैं रेस्क्यू के टाइम में ठीक है ना बेटा चले जा क्या हो गया, अगर मैटिंग के टाइम में मैं रेस्क्यू करी तो रिलीज करने के टाइम में उनको सॉरी बोलना, वो एक मेरा अपना वाइब है, मेरे जुबान से ऑटोमेटिक ये चीजें निकल जाती चल ना बेटा हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी बहुत प्रेम से बोलते होंगे अगर मैं लेट हो जाती हूँ तो कहाँ रह गई थी मुझे मार देते। जैसे हम रिलीज करके भी अगर आते जाते हो फिर कभी उस रास्ते में जाते अगर वो सांप हमें दिख जाता अरे अजीता कैसी हो तो ये चीजें लगता है कि भाई उनको तो बोलना आना चाहिए था, तो वो लोगों को भी ये बोलते मत मार आ रही होगी तो ठीक है मेरे बच्चे जैसे है।
1: अच्छा, आप उन्हें अपने बच्चों की तरह
0: यस मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को हर एक जीव को अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करना चाहिए।
1: सही कहा आपने। और अगर सारे मनुष्य वो अपने पारिस्थितिक के सभी जीवों को अपने संतान के समान माने, जैसे प्रकृति सभी को अपने बच्चे समझती है, तो फिर हमारी प्रकृति भी काफी हद तक संतुलित ही रहेंगी।
0: और मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है प्रकृति को बैलेंस बनाने की, उनको संतुलित करने की, वो ऑटोमेटिक खुद कर लेगा।
1: अजीता जी, जो सपेरे होते हैं वो सांप को लेकर के जगह जगह घूमते हैं तो ये किस हद तक सही है?
0: बिल्कुल, अगर हम इसको आध्यात्मिकता के नजर से देखें तो भी गलत है, अगर हम इसको कानून के रूप से देखें तो भी गलत है। जैसे कि हम महादेव को मना रहे हैं और हम उनकी ही औलाद के साथ में क्रूरता कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, तो महादेव कहाँ तक खुश होंगे। सपेरे भी यही करते हैं, सांपों को सावन आने से, महाशिवरात्रि नागपंचमी आने से काफी समय पहले रेस्क्यू करते हैं, उनके दांतों को क्रूरता पूर्वक तोड़ देते हैं, सुई को गर्म करके उनके ग्लैंड जला देते हैं और उन्हें हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं, और हम अपने आध्यात्मिकता की वजह से उन्हें दूध पिला देते हैं, उनकी पूजा करते हैं।

0: ना कहीं हम हर साल हजारों सांपों की अप्रत्यक्ष रूप से हत्या कर रहे होते हैं
1: जी,
0: है ना। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ये वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत भी ये एक प्रकृति का जीव है, ये संरक्षित करने वाले जीव है। किसी भी वन्य जीवों को प्रदर्शित करना, उनके अवध में पैसा कमाना, उनके साथ क्रूरता करना, उनको शोषण करना, उनको कहीं पे जाके प्रदर्शन करना कानूनन अपराध है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि इंसान होने के लिए आप अपना इंसानियत निभाएं। कहीं पे भी अगर सपेरे दिखते हैं तो आप 112 को, आसपास के वन्य जीव जो रेस्क्यूअर है उनको या फिर वन विभाग को जानकारी दीजिए और उन्हें समझाइए कि दादा ये गलत है, आप कुछ और काम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप प्रकृति के किसी जीव को आप अपहरण करके उनके अवध में पैसा कमाएं।
1: जी सही कहा आपने और काफी संवेदनशील बात कही आपने। अजीता जी, आपने डर को अपनी ताकत बनाया है, उन महिलाओं और लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी जो कुछ अलग करना चाहती है लेकिन समाज या अपने डर की वजह से कदम नहीं बढ़ा पाती है?
0: मैं बस यही कहना चाहती हूँ, नीयत सही रखना प्रकृति के लिए। नीयत अगर अच्छी होगी तो सारा कुछ संभव है, बस संघर्ष में कोई साथ नहीं होगा। बट आप सफल जब हो जाएंगे तो हजारों तालियां आपको सुनाई देंगी। तो संघर्ष से बिल्कुल मत डरिए, जितना ज्यादा संभव हो पाए कीजिए, क्योंकि जीवन एक बार मिला है, काश के लिए कभी मत छोड़िए, क्योंकि हम सब कर सकते हैं।
2: बहनों, आज की बातचीत ने हमें यह समझाया कि कौशल सिर्फ रोजगार का साधन नहीं है बल्कि समाज के लिए योगदान का जरिया भी बन सकता है। हमारी मेहमान ने अपने साहस, धैर्य और प्रशिक्षण से यह साबित किया कि जिस काम से हम डरते हैं उसे सही ज्ञान और सावधानी के साथ एक जिम्मेदारी में बदला जा सकता है। अजीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने और अपने अनुभव साझा करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों,
0: सावन चल रहा है तो महादेव को खुश करने के लिए बहुत बहुत तरीके अपनाए जाएंगे। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि अच्छे कर्म और अच्छे नियत के साथ में किसी भी जीव को बिना परेशान के महादेव को खुश कीजिए, क्योंकि पशुओं के नाथ ही तो हैं पशुपतिनाथ। आप सभी को सावन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। जय श्री राम। सावन चल रहा है तो महादेव को खुश करने के लिए बहुत बहुत तरीके अपनाए जाएंगे। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि अच्छे कर्म और अच्छे नियत के साथ में किसी भी जीव को बिना परेशान के महादेव को खुश कीजिए, क्योंकि पशुओं के नाथ ही तो हैं पशुपतिनाथ। आप सभी को सावन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। जय श्री राम।
1: आइए आप सुनते हैं नेवर गिव अप डे में आराध्या नामदेव को।
3: नमस्कार, मैं आराध्या नामदेव कभी हार ना मानने के दिवस पर आपसे कुछ बातें करना चाहूँ। कहा जाता है मुश्किलें इंसान को रोकने के लिए नहीं बल्कि उसकी ताकत पहचानने के लिए आती है। आज इस दिन के अवसर पर मैं बात करना चाहूँगी उन महिलाओं की जो जिंदगी में कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों ना करें फिर भी अपने कदम आगे बढ़ाती रहती हैं। एक महिला कि जिंदगी में कई भूमिकाएं होती है, वह बेटी है, बहन है, पत्नी है, माँ है, बहू है, दोस्त है और कई बार पूरे परिवार की सबसे मजबूत कड़ी भी होती। लेकिन इन जिम्मेदारियों के बीच कहीं ना कहीं उसके अपने सपने पीछे छूट जाते। कभी परिवार की जिम्मेदारियां उसे रोकती हैं, कभी समाज की बातें, कभी आर्थिक परिस्थितियां और कभी उसका अपना डर। लेकिन नेवर गिव अप डे हमें याद दिलाता है रुकना विकल्प हो सकता है लेकिन हार मान लेना जरूरी नहीं।
1: बहनों, इसी के साथ वक्त हो चला है कि आज की महिला सभा से विदा लिया जाए। बहनों, आप महिला सभा में अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं और अपनी फरमाइश लिखकर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mahilasabhabsp@gmail.com। तो जरूर अपनी पसंद लिखिए, हम आपके नाम के साथ उस गीत की फरमाइश पूरी करेंगे। फिलहाल के लिए आज का महिला सभा यहीं तक। आज की महिला सभा की प्रस्तुति दी है प्रज्ञा सिंह राणा ने। नमस्कार।

अभी महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज और कल के मुख्य कार्यक्रम। पहले आज के शेष कार्यक्रम।

अब से कुछ देर बाद शाम 6:20 पर और 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। शाम 7:30 पर किसानवाणी कार्यक्रम रायपुर से रिले किया जाएगा। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत में आप सुनेंगे सुनीता राव के गाए कुछ गीत। रात्रि 8:15 पर रजनीगंधा कार्यक्रम का आनंद आप लेंगे और रात्रि 9:15 से विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। ये थे आज के मुख्य कार्यक्रम।

0: सावन चल रहा है तो महादेव को खुश करने के लिए बहुत बहुत तरीके अपनाए जाएंगे। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि अच्छे कर्म और अच्छे नियत के साथ में किसी भी जीव को बिना परेशान किए महादेव को खुश कीजिए, क्योंकि पशुओं के नाथ ही तो हैं पशुपतिनाथ। आप सभी को सावन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। जय श्री राम। सावन चल रहा है तो महादेव को खुश करने के लिए बहुत बहुत तरीके अपनाए जाएंगे। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि अच्छे कर्म और अच्छे नियत के साथ में किसी भी जीव को बिना परेशान किए महादेव को खुश कीजिए, क्योंकि पशुओं के नाथ ही तो हैं पशुपतिनाथ। आप सभी को सावन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। जय श्री राम।
1: और अब कल के मुख्य कार्यक्रम। कल प्रातः 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा आराधना। प्रातः 6:30 पर खेती की बात में धान को कीटों से कैसे बचाएं विषय पर सामयिक सुझाव दिए जाएंगे। वाचन स्वर होगा अभिनव गोराह का। प्रातः 6:35 पर रामचरितमानस गान का प्रसारण किया जाएगा। नवविहान कार्यक्रम के अंतर्गत फ्लैगशिप में सुनिए। प्रातः 6:45 पर कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन। 7:05 पर आज सुबह कार्यक्रम आप सुनेंगे और 7:30 पर पुरानी फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा यादों के झरोखे से। सुबह 8:30 पर छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के कार्यक्रम अमराई में आसना ओगरे विज्ञान विज्ञान निधि ओगरे और साथियों के साथ ही प्यारे लाल विश्वकर्मा संतराम भानु और साथियों के गाए कुछ लोकगीत आप सुनेंगे कार्यक्रम अमराई में। हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10 से 11 तक। सुबह 11 से प्रायोजित कार्यक्रम एनसीआरटी का प्रसारण किया जाएगा। सुबह 11:30 से शाम 5 तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। शाम 5:05 प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण किया जाएगा। शाम 5:05 पर चित्रपट संगीत का आनंद आप लेंगे। शाम 5:35 पर युवा जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। आज की बात में चर्चा होगी हमारा जीवन और फोटोग्राफी पर। क्रम युवा पसंद होगा, सवाल जवाब होंगे, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी पर चर्चा होगी, प्रस्तुति होगी नेमी चंसा होगी। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 6:20 पर और शाम 7:00। शाम 7:30 पर ग्राम सभा का प्रसारण होगा। इसमें बेरा के गोट का विषय होगा पोषण वाटिका कुपोषण से मुक्ति। भेंट वार्ता क्रम में आकाशवाणी गांव में आपको सुनवाएंगे गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के किसानों व कृषि विशेषज्ञ से की गई बातचीत। रिकॉर्डिंग व संपादन हरीश माणवा का और प्रस्तुति संयोजन डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। रात्रि 8:00 सुगम संगीत में आप सुनेंगे अभिजीत सावंत के गाए कुछ गीत। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। शाम के 6:10 होने वाले हैं कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ी में समाचार रायपुर से रिले किए जाएंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। बाढ़ जैसे आपदा ले निपटे के तैयारी ला परखे पर आज रायपुर में राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित करेगी। पर्यावरण प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण ला बढ़ावा दे के उद्देश्य ले छत्तीसगढ़ के जम्मू जिला में हरेली बर्ड फेस्टिवल के आयोजन करेगी। और संस्कृति और राजभाषा संचालनालय मुख्यमंत्री लोक

0: कलाकार प्रोत्साहन योजना पर प्रदेश के लोक कलाकार मंडले 31 अगस्त तक मंगाए आवेदन। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ में बाढ़ जैसन प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत और बचाव काम सुनिश्चित करे के संग आने आने विभाग और संबंधित एजेंसी के बीच बने ढंग ले समन्वय स्थापित करे के उद्देश्य ले आज मंत्रालय में राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित करेगी। एकर आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण और राजस्व आपदा प्रबंध विभाग डहर ले केंद्रीय गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के मदद ले करेगी। ये दौरान बाढ़ प्रबंधन प्रभावित मल्ला मदद मौसम विज्ञान और जल संसाधन विभाग के बीच समन्वय और चेतावनी के संगे संग सार्वजनिक सूचना प्रणाली के माध्यम ले डाउन स्ट्रीम के गाँव मल्ला पहली ले सचेत करे ऊपर गोटबात करेगी। उन्हें बाढ़ आपदा के समय NDRF SDRF नगर सेना और आने आने बचाव दल में आपसी समन्वय ऊपर घलो गोट बात हुई। बैठक में राजस्व आपदा प्रबंध के सचिव समी आबदी आपदा के दौरान तुरते निर्णय संसाधन के सुघर उपयोग और जम्मू जुड़े विभाग के बीच मजबूत समन्वय ऊपर जोर दी। राजस्व आपदा प्रबंध विभाग के अधिकारी मन बताइने कि 20 अगस्त के राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज आयोजित करी जाही। इमा प्रदेश के जम्मू जिला के अधिकारी मन शामिल होही। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राजा आज रायपुर में समान नागरिक संहिता UCC समिति के सदस्य मल्ले भेंट करी। ये दौरान डॉ. सलीम राजा समिति के सदस्य मल्ला आम नागरिक मल्ला UCC के आने आने पहलू मल्ला समझाए बर सरल भाषा में एठिन पुस्तक प्रकाशित कराए के सुझाव दिन। सदस्य मन राज्य के प्रबुद्ध नागरिक सामाजिक संगठन और आम जनता मल्ले UCC के ड्राफ्ट पर अपन सुझाव साझा करे के आग्रह करी। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन मानिकपुर ओपन कास्ट एक्सपेंशन परियोजना के प्रस्तावित जन सुनवाई लेके ACCL कोरबा के महाप्रबंधक ले चर्चा करी। ए दौरान उमन मुआवजा पुनर्वास और पुनर्स्थापना ले जुड़े लंबित काम के निराकरण और काचांदी नाला डायवर्सन के प्रारंभिक निरीक्षण रिपोर्ट मिले के बाद जन सुनवाई आयोजित करे के निर्देश दिए। खबर के मुताबिक मानिकपुर ओपन कास्ट एक्सपेंशन परियोजना के तहत कोयला उत्पादन क्षमता 5.25 MTPA ले बढ़ा के 7 MTPA करे जाए के प्रस्ताव है। एक हर बार 21 अगस्त की जन सुनवाई होना है। मुख्य सचिव विकासशील के अगुवाई में काली रायपुर में राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन के राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश में डेयरी क्षेत्र के विकास दुग्ध उत्पादक के फायदा महिला दुग्ध उत्पादक के भागीदारी बढ़ाए और दूध संग्रहण के संगे संग विपणन व्यवस्था मजबूत करे ऊपर चर्चा हुई। संगे संग बस्तर और सरगुजा संभाग में डेयरी विकास ला लेके विशेष जोर देगी। पर्यावरण प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण ला बढ़ावा दे के उद्देश्य ले छत्तीसगढ़ के 33 जिला में 14-16 अगस्त तक हरेली बर्ड फेस्टिवल के आयोजन करेगी। ये अभियान में 1000 ले ज्यादा प्रतिभागी मन भाग ली। ये दौरान प्रदेश भर में 35 बर्ड वॉक आयोजित करेगी। 3 दिन में 954 ई बर्ड चेकलिस्ट के माध्यम ले 211 पक्षी प्रजाति के दस्तावेजीकरण करेगी। हरेली बर्ड फेस्टिवल के उद्देश्य सिर्फ पक्षी मन की गणना नहीं करना है बल्कि नागरिक विज्ञान के माध्यम ले छत्तीसगढ़ के पक्षी विविधता के वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण करना हवे। शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा के लालच दे के करीब 1,15,00,000 रुपए के ठगी करैया 4 जिन आरोपी मल्ला रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार करे है। ये आरोपी मल्ला महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ले पकड़े गए है। आरोप है कि ये मन छत्तीसगढ़ के 3 जिन मनखे ले करोड़ों रुपए के ठगी करे है। 3 जिन आरोपी मल्ला गिरफ्तार करके रायपुर लाए गए है। पुलिस आरोपी मल्ले जब्त मोबाइल के जाँच करत है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बाकी समाचार कोती। संस्कृति और राजभाषा संचालनालय मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन

0: योजना बर प्रदेश के लोक कलाकार मन ले 31 अगस्त तक आवेदन मंगाए हे। योजना के तहत नृत्य संगीत, लोक नाट्य, लोक गाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार, वाद्य यंत्र वादक, शिल्प कलाकार, छत्तीसगढ़ी पाक कला और छत्तीसगढ़ी सौंदर्य कला ले जुड़े कलाकार मन ह आवेदन कर सकत हे। पात्र कलाकार मन ला चिन्हारी पोर्टल में पंजीयन कराना जरूरी होही। चुने गए कलाकार मन ला हर बछर 12 से 24 हजार रुपया तक प्रोत्साहन राशि दे जाही। संस्कृति विभाग डहा ले रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में 21 ले 25 अगस्त तक पावस प्रसंग के आयोजन करे जाही। कार्यक्रम में वर्षा ऋतु के प्राकृतिक सुंदरता, उमंग, उल्लास और संवेदना मल्ला शास्त्री नृत्य और संगीत के माध्यम ले अभिव्यक्त करे जाही। कार्यक्रम हर दिन संध्या 7 बजे ले शुरू होही। छत्तीसगढ़ श्रोता मंच कोती ले भिलाई मां काली ले अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन के आयोजन करे जाही। 2 दिन के ये सम्मेलन के पहली दिन काली 19 अगस्त के भिलाई के सेक्टर 6 स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सभागार में और 20 अगस्त के भिलाई के सिविक सेंटर स्थित महात्मा गांधी कला मंदिर में कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। साइबर जागृति अभियान के तहत रायपुर के शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में आज छात्र छात्रा और इंटर्न्स पर विशेष साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन करेगी। ये दौरान पुलिस अधिकारी मन ह युवा मन ला साइबर अपराध के नवा तरीका, ऑनलाइन धोखाधड़ी ले बचाव और बुनियादी साइबर सुरक्षा के विषय में जागरूक करी। कार्यक्रम के दौरान युवा मन ला अभियान के मुख्य थीम साइबर जागृति की एक सेल्फी ले जोड़ेगी। रायपुर विकास प्राधिकरण RDA ह टाउनशिप योजना शुरू करे हे। नवा रायपुर के तीर पीरदा तुलसी गांव के करीबन 355 एकड़ भूमि में प्रस्तावित ये टाउनशिप पर भूस्वामी मल्ले दावा आपत्ति मंगाए गए है। योजना के तहत 879 भूस्वामी मल्ले दावा आपत्ति मंगाए गए है। RDA के CEO अवनीश शरण बताई है कि प्रस्तावित योजना में भूस्वामी मल्ला 40% विकसित जमीन ल लौटाए के प्रावधान है, जौन ल दिसंबर महीना तक पूरा करे के लक्ष्य राखे गए है। अब थोड़ा की समाचार सार में। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग 28 अगस्त के राखी तिहार ला देखत प्रदेश के कोषालय और जम्मू बैंक मन पर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा करे है। मुख्यमंत्री ऋषिदेव साय है काली जसपुर जिला के बगिया में जसपुर वन मंडल के जन जागरूकता अभियान में आधारित गज रथ यात्रा भाग 2 के विमोचन करी। रायगढ़ जिला में नजुल पट्टा नवीनीकरण की प्रक्रिया अब सरल हो गई है। जिला प्रशासन ह ई नजुल व्यवस्था लागू करे हे। एकर तहत नजुल पट्टा धारक मन ह मोबाइल फोन ले घर बैठे पट्टा नवीनीकरण पर आवेदन कर सकही। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चक्रधर मंडल में 5वां लाइन के कमिश्नरिंग पर 25 सितंबर ले 14 अक्टूबर तक नॉन इंटरलॉकिंग के काम होही। एकर सेती 25 सितंबर ले 14 अक्टूबर तक 16 ट्रेन रद्द रही। उन्हें कुछ एक ट्रेन मन के रूट में बदलाव करे जाही। और सामान्य भविष्य निधि ले जुड़े लंबित प्रकरण के निराकरण पर दुर्ग स्थित जिला कोषालय अधिकारी कार्यालय में काली ले 3 दिन के शिविर के आयोजन करे जाही। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग प्रदेश भर में अब तक हुए बारिश के आंकड़ा जारी करे है। एकर मुताबिक अब तक औसतन 731 मिलीमीटर ले ज्यादा वर्षा दर्ज करे जा चुके हैं, जो पाछू 10 बछर के औसत बारिश के करीबन 99% हवे। विभाग के मुताबिक सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिला में सबले ज्यादा पानी गिरे है। उन्हें कांकेर और सुकमा जिला में वर्षा के आंकड़ा सामान्य ले कमती हवे। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। बाढ़ जैसन आपदा ले निपटे की तैयारी ला परखे बर आज रायपुर में राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित करेगी। पर्यावरण, प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण ला बढ़ावा दे के उद्देश्य ले छत्तीसगढ़ के जम्मू जिला में हरेली वर्ल्ड फेस्टिवल के आयोजन करेगी। और संस्कृति और राजभाषा संचालनालय है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना पर प्रदेश के लोक कलाकार मन ले 31 अगस्त तक मंगा है आवेदन। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावा थे। जय जोहार।
1: अभी छत्तीसगढ़ी में समाचार रिले किए जा रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने। ईमेल करेंगे सुने कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम का

आगाज़ करते हैं किशोर कुमार के गाए फिल्म मंजिल के इस खूबसूरत गीत से, जिसे लिखा है योगेश ने और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने। और इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइशें आई हैं मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गवाणकर, सरिता, प्रिंस, एकांश गवाणकर, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीम मल्होत्रा, डी ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, अंबागढ़ चौकी से हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, छत्रपति शंभाजी नगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि और शीतल राजेश, कोटिया कला दुर्ग से हैं संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा साहू, लच्छनपुर से हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश और कुमार साहू, डुमराव से हैं वलीउल्लाह अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत मोदी और इफ्साल ताज, कोटवा नारायणपुर बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, उषा, अमित राय और हैप्पी राय, नरवेल महाराष्ट्र से हैं पी एस नवहारकर, निर्मला, विशाल नवहाकर, सोंगा मगर लोट से हैं फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन, कुम्हार गली श्रीरामपुर से हैं अशोक दले, सविता, अनिकेत दले, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका दले, कर्मा चौक लोहारीडी जिला कवर्धा से हैं अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी सुखांत, लीलेश्वरी खुशांत, निशांत साहू, रोहांसी से हैं मुकेश साहू, नंदिनी, मनीष, मयंक, जानकी साहू, गांव नथाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी से हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं मंजिल फिल्म से किशोर कुमार का गाया ये गीत।

तो श्रोताओं, आज तो सुबह से ही झड़ी लगी हुई है और रिमझिम रिमझिम बारिश हो ही रही है, और इस मौके पर ये गाना भी बहुत जम रहा था। तो आइए अब सुनते हैं अगला गीत दीवाना फिल्म से अलका याग्निक और विनोद राठौर के युगल स्वरों में। गीत समीर के हैं और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने, और इस गीत के को सुनना चाहा है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन पल्लवी राजेश्वरी वर्मा ने, पटियाला से हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, यवतमाल से हैं राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन रोशनी, प्रियांशी मनवर, दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका भानु, पाखुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, कालेगांव जाफराबाद से हैं सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन, वीना, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, नानघाट कातलबोड़ से हैं भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर, ऋतु और राजपूत, डोंगरगांव से हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका निष्का और तन्मय गजभिये, करावली से हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत, सोनम वर्मा, बक्सर बिहार से हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, सुरीत रमेश साहू, कैदी मुड़ा रायगढ़ से हैं पुरुषोत्तम सिंह, उषा ऋषभ सिंह, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुर से हैं अनंता भगत, अरुणा सुलोचना भगत और चेतन भगत, सादुल शहर राजस्थान से हैं राम कुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़, दिल्ली शहर से हैं आसमा परवीन, आमना परवीन और वली भाई अंसारी, संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं दीवाना फिल्म से ये गीत।

भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और

0: प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: और आइए अगला गीत सुनते हैं। बहुत ही प्यारा गीत है श्रोताओं, बंदनी फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में है ये गीत। गीत के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं और धुन बनाई है SD वर्मा ने, और इस खूबसूरत से गीत को सुनना चाहा है हमारे इन श्रोताओं ने। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान अब्बासी, अवान अब्बासी ने। गिरिडीह झारखंड से हैं मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफ्रा नवाज चाहत। बिलासपुर से हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी। देवरी भाटापारा से हैं KR साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली छत्री। सावतपुर से हैं ऋषि सेन, रितेश, कंचन, माही सेन। जमशेदपुर से हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया। मुंबई से हैं आदिबा नाज, फातिमा, नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी। जालंधर से हैं संदीप जलोटिया, संदीप जाटोलिया। तेलंगाना भवरंगीर से हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन। देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। बहादुरा नागपुर से हैं वैशाली, शैलेश गवाणकर, टुक टुक प्रिंस, एकांश, सुमित गवाणकर और ध्वनि गवाणकर। जालंधर से हैं मीना कौर और मन्नत नूर। यवतमाल पंजाब से हैं रामटेके, यशोधरा, श्रव्या रामटेके। भाटापारा से हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, भुवन कुमारी। ओवरेठीपारा भाटापारा से हैं अनीता साहू, वीणा, नेहा, मोनिशा साहू। खंडवा से हैं अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म बंदनी से लता मंगेशकर का ये खूबसूरत सा गीत।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2026 को स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर गीत शर्मा उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान रोपाई व्यासी में खरपतवार नियंत्रण। इस विषय से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665923100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 27752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 20 अगस्त 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। महिला सभा सूचना है। श्रोताओं, आप महिला सभा में अपनी फरमाइश के गीत श्रोताओं आप महिला सभा में अपनी फरमाइश के गीत लिख कर भेज सकते हैं और सुन सकते हैं। आपकी फरमाइश हमें मेल के जरिए मेल कीजिए mahilasabha@gmail.com। में महिला सभा का प्रसारण होगा हर मंगलवार और गुरुवार शाम 5:35 से।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं
3: आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
5: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारी पर रखने आज रायपुर में राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की गई। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग बने खाबो बने रहबो नाम से प्रदेश भर में 7 दिवसीय विशेष जनजागरूकता अभियान चला रहा है। पर्यावरण, प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में हरेली बर्ड फेस्टिवल का हुआ आयोजन। और गोरेला पिंडरा मारवाही जिले में आज से शुरू हुई 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने तथा विभिन्न विभागों और संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से आज मंत्रालय में राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की गई। इसका आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से किया गया। इस दौरान बाढ़ प्रबंधन, प्रभावितों को सहायता, मौसम विज्ञान और जल संसाधन विभाग के बीच समन्वय और चेतावनी तथा सार्वजनिक सूचना प्रणाली के माध्यम से डाउनस्ट्रीम के गांवों को पहले से सूचित करने पर चर्चा की गई। वहीं बाढ़ आपदा के समय एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, नगर सेना और अन्य बचाव दलों में आपसी समन्वय पर भी चर्चा हुई। बैठक में राजस्व और आपदा प्रबंधन की सचिव शम्मी आबिदी ने आपदा के दौरान त्वरित निर्णय, संसाधनों के बेहतर उपयोग और सभी संबंधित विभागों के बीच मजबूत समन्वय पर विशेष जोर दिया। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 20 अगस्त को राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी, इसमें प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारी शामिल होंगे। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने बने खाबो बने रहबो अभियान के तहत प्रदेश में 7 दिवसीय विशेष जनजागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। अभियान के पहले दिन कल प्रदेश के विभिन्न जिलों में मिठाई दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट, कन्फेक्शनरी, थोक विक्रेताओं, खाद्य निर्माण इकाइयों और अन्य

खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नमूने लिए गए और कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों को रखने अथवा पैक करने में अखबारी कागज का उपयोग नहीं करने तथा खाद्य पदार्थों में प्रतिबंधित रंगों का प्रयोग नहीं करने के संबंध में व्यापारियों और खाद्य व्यवसाय संचालकों को समझाइश दी गई। उद्योग मंत्री लखनलाल देवंगन ने मानिकपुर ओपन कास्ट एक्सपेंशन परियोजना की प्रस्तावित जनसुनवाई को लेकर एसईसीएल कोरबा के महाप्रबंधक से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापना से जुड़े लंबित कार्यों का निराकरण तथा काचांदी नाला डायवर्सन की प्रारंभिक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही जनसुनवाई आयोजित करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि मानिकपुर ओपन कास्ट एक्सपेंशन परियोजना के तहत कोयला उत्पादन क्षमता को 5.25 MTPA से बढ़ाकर 7 MTPA किए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए 21 अगस्त को जनसुनवाई होनी थी। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने आज विभागीय अधिकारियों के साथ बस्तर परिक्षेत्र के अभियंताओं और ठेकेदारों की बैठक लेकर निर्माणाधीन सड़कों, पुल पुलियों और भवनों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में निर्माणाधीन सड़कों और पुल पुलियों को दिसंबर महीने तक पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही हर 15 दिनों में कार्य की प्रगति की समीक्षा करने को कहा। श्री बंसल ने निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने वाले और निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर उनके अनुबंध निरस्त करने के निर्देश दिए। संस्कृति और राजभाषा संचालनालय ने मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के लोक कलाकारों से प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। योजना के अंतर्गत नृत्य संगीत, लोक नाट्य, लोक गाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार, वाद्यंत्र वादक, शिल्प कलाकार, छत्तीसगढ़ी पाक कला और छत्तीसगढ़ी सौंदर्य कला से जुड़े कलाकार 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। योजना के तहत पात्र कलाकारों का चिन्हारी पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य होगा। चयनित कलाकारों को हर वर्ष 12 से 24 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर करीब 1,15,00,000 रुपए की ठगी करने वाले 4 आरोपियों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में छापेमारी कर पकड़ा गया है। आरोप है कि इन लोगों ने छत्तीसगढ़ के 3 व्यक्तियों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया है। पुलिस आरोपियों से जब्त मोबाइल की जांच कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। पर्यावरण, प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में 14 से 16 अगस्त तक हरेली बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस अभियान में 1,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रदेश भर में 35 बर्ड वॉक आयोजित किए गए। 3 दिनों में 954 ई बर्ड चेकलिस्ट के जरिए 211 पक्षी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया। हरेली बर्ड फेस्टिवल का उद्देश्य केवल पक्षियों की गणना करना नहीं बल्कि नागरिक विज्ञान के माध्यम से छत्तीसगढ़ की पक्षी विविधता का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण करना था। संस्कृति विभाग द्वारा रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में 21 से 25 अगस्त तक पावस प्रसंग का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की प्राकृतिक सुंदरता, उमंग, उल्लास और संवेदनाओं को शास्त्रीय नृत्य और संगीत के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाएगा। कार्यक्रम हर दिन शाम 7 बजे शुरू होगा। प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारियों के प्रभार में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। आज सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 22 आईएएस अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं। इसके साथ ही गरियाबंद, कांकेर, मुंगेली, सक्ती और कबीरधाम जिले के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। तुलिका प्रजापति कबीरधाम जिले की नई कलेक्टर होंगी। वहीं जयश्री जैन सक्ती, अमृत विकास तोपनो मुंगेली, कुंदन कुमार कांकेर और रणबीर शर्मा गरियाबंद जिले के नए कलेक्टर बनाए गए हैं। वहीं भारतीय वन सेवा के अधिकारी विवेक आचार्य की सेवाएं वन विभाग को वापस लौटा दी गई हैं। उनके स्थान पर सौमिल रंजन चौबे को पर्यटन मंडल का प्रबंध संचालक बनाया गया है। गौरेला पिंडरा मारवाही जिले में आज से 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू हो गई है। केंद्रीय आवासन और शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस मौके पर पिंडरा के फिजिकल कॉलेज मैदान में मंच निर्माण के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने 10 लाख और विधायक अटल श्रीवास्तव ने 5 लाख रूपये देने की घोषणा की। 21 अगस्त तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 5 संभागों से 14 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 500

0: 40 खिलाड़ी विभिन्न खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। स्पर्धा में जिम्नास्टिक के मुकाबले गोरेला में खेले जाएंगे, वहीं क्रिकेट, ताइक्वांडो और कबड्डी के मुकाबले पेंड्रा में आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ श्रोता मंच की ओर से भिलाई में कल से अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन के पहले दिन कल 19 अगस्त को भिलाई के सेक्टर 6 स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सभागार में और 20 अगस्त को भिलाई के सिविक सेंटर स्थित महात्मा गांधी कला मंदिर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई है। हालांकि उत्तरी छत्तीसगढ़ में आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि यह स्थिति उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने अवदाब के कारण बनी है।
1: आगामी 24 घंटे में अवदाब क्षेत्र जो है पश्चिमी उत्तर पश्चिमी का और झारखंड और बिहार का तरफ जाने की संभावना है। इस प्रभाव से आज और कल

0: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने अवदाब के कारण बनी है।
1: आगामी 24 घंटे में अवदाब क्षेत्र जो है पश्चिमी उत्तर पश्चिमी का और झारखंड और बिहार का तरफ जाने की संभावना है। इस प्रभाव से आज और कल प्रदेश में विस्तार रूप से वर्षा होने की संभावना है। कल प्रदेश में वर्षा का गतिविधि थोड़ा कम होने की संभावना है, लेकिन उत्तर छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव ज्यादातर होने की चांसेस है। आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है सरगुजा संभाग के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए।
0: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर प्रदेश के कोषालय और सभी बैंकों के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध शासकीय और निजी महाविद्यालयों में चालू शैक्षणिक सत्र के BSc कृषि ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में 5वीं लाइन की कमीशनिंग के लिए 25 सितंबर से 14 अक्टूबर तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होगा। इसके चलते 25 सितंबर से 14 अक्टूबर तक 16 ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया जाएगा और सामान्य भविष्य निधि से संबंधित लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए दुर्ग स्थित जिला कोषालय अधिकारी कार्यालय में कल से 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारी परखने आज रायपुर में राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की गई। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग बने खाबो बने रहिबो नाम से प्रदेश भर में 7 दिवसीय विशेष जन जागरूकता अभियान चला रहा है। पर्यावरण प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में हरेली बर्ड फेस्टिवल का हुआ आयोजन और गौरेला पिंडरा मारवाही जिले में आज से शुरू हुई 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरक अछार से हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

अभी प्रादेशिक समाचार रायपुर से रिले किए जा रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। लीजिए सुनते हैं, ईमेल करेगी सुने कार्यक्रम का शेष भाग। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म जुर्माना से लता मंगेशकर का गाया ये गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, धुन बनाई है आरडी बर्मन ने, और इस गीत को सुनना चाहा है हमारे इन श्रोताओं ने। गांव जाखोद से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश, दीपक, पूजा खटक। लगहान पंडरिया से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुकमणी बघेल, साहिल भारती बघेल। जमानिया गाजीपुर यूपी से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल। गांव हीरा वाली फजिलका पंजाब से हैं सुभाष गुदारा, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु गुदारा। जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, गर्वी, हिमांश। रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी। डबवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया नारंग। बुलढाणा वडशिंगी महाराष्ट्र से हैं अमोल मानकर, शोभा ताई मानकर, दीपाली और श्लोक मानकर। जनकपुरी सहारनपुर से हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल विलिस डिकेस्ट्रो। बठेना से हैं परमेश्वर साहू, राजवती, टोप सिंह, काजल, पूर्वी, हेजल, राजेश और रेशमा साहू। नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं वेद मिड्डा, अलका मिड्डा। बुड़सरा नैला से

प्रमोद कुमार साहू, विभा वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू राजकोट से हैं। जूली, जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी गुमला झारखंड से हैं। नजमुल हुदा, एस एम जावेद और शगुफ्ता अंजुम तेलंगाना निजामाबाद से हैं। शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना तखतपुर से हैं। मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा पानीपत से हैं। नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म जुर्माना से लता मंगेशकर का गाया ये गीत।

अभी आपने सुना जुर्माना फिल्म से लता मंगेशकर का गाया ये खूबसूरत सा गीत, और आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म नजर देश परदेश से किशोर कुमार की आवाज में। गीत के बोलन अमित खन्ना के हैं और संगीत राजेश रोशन का है, और सुनना चाहा है इस गीत को हमारे इन साथियों ने। लोरमी चचेड़ी से कमल कांत मरावी, प्रमीला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी, सौंदा जिला धमतरी से हैं कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक सेन, कुम्हार गली कोलगांव से हैं पांडु चंदन, उषा प्रतीक्षा, रमेश चंदन, पांडुरंग कुमार, रायगढ़ से हैं शिवकुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान, आदर्श नगर मालौट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरभ, शाइना शर्मा, मेंडी शर्मा, नाभा जिला पटियाला पंजाब से हैं सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और गुरमंत कौर, मनु, जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, धनौरी तेलीवाला से हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी और आलिया आयान। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म देश परदेश फिल्म से ये गीत।

ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से, रेडियो दोस्त आपकी ऐश्वर्या के साथ। और आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म सावन को आने दो से, जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की आवाज़ में। गौहर कानपुरी का गीत है और राजकमल जी का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहा है हमारे इन श्रोताओं ने, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, नरगोड़ा से हैं कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। गांव फ्रांसी हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, महसौल सीतामणि बिहार से हैं मुसर्रत जहानास, तलहत फरहत, रिफत नुजहत, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। हिंगोली महाराष्ट्र से हैं शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान उत्तम जामदाड़े। भूचो कैंचिया भटिंडा पंजाब से हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन, अभिजोत। गुजरात से हैं प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, पूजा परिहार। रायगढ़ बिहार से हैं उमा, राजपवन, संजय, दीपक और कमल उमा। लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। अडार नांदघाट से हैं माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा। पिपरिया से हैं कमल कांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता। समडील नवापारा से हैं मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, दीति, राधे, दीपक, अंकु और राघव गुप्ता। राजकोट से हैं राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी। सरगुजा मेनपाट से हैं अजीता पॉल, प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा। छोटी बलिया करजत मुंबई से हैं अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन। पीपल लोड सरगांव से हैं दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा। पाहदा पलारी से हैं नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, निशांत लखनलाल, सावित्री बाई देवांगन। खमरिया से हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। वीरगाम राजकोट से हैं रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म सावन को आने दो से, जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा का गाया ये गीत।

और आइए अगला गीत सुनते हैं धन दौलत फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की युगल स्वरों में। गीत के बोल मजरू ने लिखे हैं और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने, और इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइशें आई हैं बलौदा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, नेपा नगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र शाह, दत्रेंगी भाटा पारा से हैं हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा।

दहाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से हैं श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल बाठे। पलारी से हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल, यशस्वी वर्मा। देवरी भाटापारा से हैं गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा।

गणेश राम मिस्त्री, टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता प्रियंका प्रशांत, प्रियम थांदी, वामिका और वाणी थांदी। करनाल से हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, माया कुमार। निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से हैं जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर। गंडई पंडरिया से हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन। रसेड़ा से हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु, डाली, पूर्वेश साहू। इंदौर मध्य प्रदेश से हैं नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी खर्चे, स्वाति और प्रयाग चौधरी। बागबहरा भद्रसी से हैं पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा, कौशल सेन। फजीका पंजाब से हैं भूषण खेरा, विशाल, विशु, लाडी, सलानी, ट्विंशी, वानी और आरबी खेरा। पांडर कौड़ा से हैं अनिर बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री बुरांडे। खोंदला उदयपुर सरगुजा से हैं जीवन धन सिंह पैकरा, गुरनी करिश्मा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि, ऐश्वर्या पैकरा। भाटापारा से हैं प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत राघवेंद्र साहू। दिल्ली से हैं लाल बाबू दीवाना, उमा राज और दिव्या भारती। छत्तीसगढ़ से हैं प्रभा जाटव, डौली, कबीर जाटव और देवशंकर जमादार। भूत कछार लोरमी से हैं दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम। रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं उदय भानपाल, जयसिंह, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश पाल और दिव्यांश बघेल। अकोला से हैं सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद, गौरव मंदूरकर, आरव और अर्पिता। पैंठड़ से हैं सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, जिसिया जाधव। पौड़ी भाटा कलतरा से हैं दिलीप चंदन, चोवा राम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा, प्रांजल चंदन। जालंधर से हैं संदीप मक्कर, ज्योति मन्नत, भारत मक्कर और कमल साहनी। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक, बलवीर। सहारनपुर से हैं सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली नारंग। बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। पुरानी भिलाई तीन चरोदा से हैं नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून, जिशान अहमद सिद्दीकी, शहनवाज अहमद सिद्दीकी। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से हैं चंदूलाल सिंगरोल, नारायणी सिंगरोल, नोमेश सिंगरोल, नेहा और वान्या सिंगरोल। दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म धन दौलत, फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर में ये गीत।

गीत के साथ ही आज का ईमेल करेगी सुने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7:30 हुए हैं। कुछ ही देर में किसानवाणी कार्यक्रम के लिए जुड़ते हैं हम रायपुर केंद्र से।

संगवारी हो, आप बेरा है हेलो किसान वाणी के। आज के विषय है शीतकालीन पुष्पों की नर्सरी। ये विषय में आप मन की जिज्ञासा और समस्या के समाधान पर हमारे संग स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश कुमार साहू, वैज्ञानिक पुष्प विज्ञान महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग। संचालन कराते हैं निधि शर्मा और प्रस्तुत करता है शशि प्रकाश पांडे।

0: संगवारी हो, हमर यहाँ रिकिम रिकिम के फूल लगाए जाते हैं और फूल के तो बड़ महत्ता है। हर मौसम में फूल के बड़ उपयोगिता है। देखो चाहे वो पूजा पाठ के काम बुता रहे, चाहे सामाजिक काम बुता रहे, फूल हर मौसम में हमन मल्ला काम आते। सजावट में घलो हमन मल्ला फूल काम आते। फिर शीतकालीन फूल के नर्सरी कौन ढंग से करे जाए, ये काबर जरूरी है, सही बेरा का होते और ओखर बर हमन मल्ला कौन कौन बात के ध्यान रखना चाहिए, ये जम्मो बात के जानकारी और आप मन के जिज्ञासा के समाधान करे खातिर हमारे संग में स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर मुकेश कुमार साहू जी। आप मन पुष्प विज्ञान महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग ले हो। आप मन के स्वागत करथन साहू जी। राम राम।
1: राम राम
0: साहू जी। हमारे संगवारी मन के फोन कॉल आवत है, सुनथन संगवारी मन का पूछना चाहते। हेलो किसान वाणी, कौन बोला था गा, कहाँ ले?
2: मैं दानीराम चंद्रवंशी बोला था भैया, लखनपुर कावरधस।
0: हाँ चंद्रवंशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के, का पूछना चाहते हो आज आप मन?
2: पुष्प खेती के उखर थरहा दे बार बीज कहाँ से मिली भैया, वही पूछे बार लगा था, लगाना है कि?
1: राम राम चंद्रवंशी जी, जैसे आपने कहा कि आपको फूलों के बीज चाहिए, तो अगर आप व्यावसायिक रूप से फूलों की खेती करना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार के भारत में जो ICR के संस्थाएं हैं, जैसे IIHR हो गया, ICR की पुणे, DFR पुणे की है, और इसी तरह IRI दिल्ली की, ऐसे बहुत से संस्थान हैं, वहां से आप बीज खरीद सकते हैं। उसी प्रकार आप चाहें तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से बीज खरीद सकते हैं, और आप चाहें तो महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सांकरापाटन दुर्ग से आप बीज खरीद सकते हैं। और जैसे चंद्रवंशी जी ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन प्रश्न किया है, क्योंकि बीज ही नर्सरी की या फसल की प्रथम सीढ़ी है, तो हमें जब भी बीज खरीदें या खरीदना हो तो एक स्वस्थ बीज ही हम कहीं से भी हम खरीदें, और जहां के लिए हम खेती करना चाह रहे हैं उस वहां की जलवायु के अनुसार ही हमें बीज का सिलेक्शन करना चाहिए, चयन करना चाहिए, ताकि हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। और अगर व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ना है तो हम और भी अच्छे उपयुक्त हाइब्रिड बीज का चुनाव करें, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें।
2: बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
0: आशा करते हैं चंद्रवंशी जी के आप मन की समस्या के समाधान हो गए हुई, फोन करे एकर खात मन के बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो किसान वाणी, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
3: हाँ दीदी, राम राम।
0: राम राम।
3: मैं मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू बोला था।
0: हाँ साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के।
3: आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हाँ कैसे चला थे काम बुता आप मन के?
3: काम बुता बढ़िया चला थे, अभी निंदाई कोड़ाई है और थोड़ा पानी वानी है तो नहीं गिर पाते।
0: अच्छा, वो कोती पानी नहीं गिरी से कई बखत?
3: अभी उतका पानी नहीं गिरी जितना भरना चाहिए धान मान बर, थोड़ा पानी की समस्या है। हाँ अब तो वही बोर वगैरह पानी है, वही डाले थान, काम चलाना है ठीक है। जब तक वर्षा के जन प्राकृतिक रूप से नहीं गिरी तब तक खेत के जन प्यास है वो नहीं बुझा पाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो साहू जी, आज की जो विषय है हमारे शीतकालीन पुष्पों की नर्सरी, तो ये विषय से जुड़े आप मन के कुछ प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है, तेला आप मन पूछ सकते हो हमारे विशेषज्ञ मन ले।
3: डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: तो हमला जैसे गेंदा है कि नर्सरी तैयार करना है किसी व्यवसायिक रूप से, तो खाली हमला का करना पड़ी, खेती पर का लगी, खातु माटी पानी, ताकि हमला फूल की खेती बढ़िया से हो सके, वो हमारे पर लाभ मिल सके, ये जानकारी आप दे के कष्ट करो।
1: साहू जी, जैसे आपने कहा कि आपको नर्सरी पहले तैयार करना है ना, और उसके बाद खेती की है। साहू जी, सबसे पहले बात यह है कि नर्सरी हमें जब भी जगह बनाना है या नर्सरी कहीं तैयार करना है, तो नर्सरी के लिए एक अच्छा स्थान का चुनाव करना चाहिए। ऐसे जगह में नर्सरी का चुनाव करना चाहिए जहां सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो, मतलब पानी की उपलब्ध हो। जैसे आप बता रहे हैं कि आपके पास बोर की सुविधा है, तब तो बहुत अच्छी बात है। उसी प्रकार जल भराव की समस्या ना हो ना, और अतिरिक्त पानी निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, तेज हवाओं से पौधों को सुरक्षा हो सके। जहाँ से आप, ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ आप नियमित निगरानी कर सके, क्योंकि वो नर्सरी है तो ज़्यादा ध्यान देने की, देखभाल करने की आवश्यकता होती है।

0: साथ ही साथ आपकी नर्सरी का स्थान परिवहन की सुविधा हो, ताकि आसानी से आप अगर व्यवसायिक स्तर पर नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो वहाँ से परिवहन की सुविधाएं आसानी से हो। अब बात करते हैं नर्सरी बेड के बारे में। ये तो नर्सरी की स्थान के बारे में हो गई, अब नर्सरी का बेड जैसे तैयार करना है तो सर्वप्रथम आपको नर्सरी का बेड तैयार करने के लिए ज़मीन की जुताई 2-3 बार करनी चाहिए अच्छे से। फिर जो बड़े बड़े ढेले हैं उनको आप छोटा छोटा महीन बना लें और 1 मीटर चौड़ा और 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची बेड बनाएं, और उसका अगर साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, नहीं है तो आप 3 मीटर लंबा रख सकते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। और ऐसी कम से कम अगर गेंदा की नर्सरी है 8 से 10 बेड आपको बनाने पड़ेंगे, और इस जिससे आप 1 हेक्टेयर में आसानी से गेंदा की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए याद रखिएगा, अगर आप बीज लेते हैं तो विश्वसनीय स्रोत से आप बीज खरीदें। और इसके लिए गेंदा के बारे में बात करें तो 1 से 1.5 kg बीज पर्याप्त रहता है 1 हेक्टेयर, मतलब 2.5 एकड़ की खेत की प्रतिरोपण के लिए, रोपाई के लिए। और जब पौधे आपके जब आप रोपाई करें तो ये ध्यान में रखें कि जब पौधा 20 से 25 दिन के हो जाएं, ये सबसे उपयुक्त होता है, उपयुक्त अवस्था होती है। जब 3 से 4 उसमें पत्तियां आ जाएं, तो इस प्रकार के जो स्वस्थ पौधे हैं, याद रखिएगा स्वस्थ पौधों के ही हमें जो हमारा खेत है वहाँ हम उसको प्रतिरोपित करें। और कोशिश करें कि हम जब भी प्रतिरोपित करें, रोपण करें, तो शाम के समय करें और मतलब दोपहर के बाद करें। तो इस तरह के से हम अपनी अच्छी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और दूसरी एक और तकनीक है नर्सरी तक उगाने के डेट में, पोट्रे नर्सरी जिसको बोलते हैं। तो आप देखे होंगे बाजार में विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के पोट्रे आते हैं जिसमें सेल बने रहते हैं, मतलब खांचा बना रहता है 106 का 109 का, ऐसे अलग अलग। तो प्लास्टिक के ट्रे रहते हैं जिसमें खासतौर पे आपको बहुत आसानी होगा, ऐसे जो ट्रे रहते हैं बहुत ही सस्ते कीमत पे आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे, और जिनमें आप आसानी से सॉइललेस मीडिया का उपयोग करके, जैसे कोकोपीट हो गया, परलाइट हो गया, वर्मिकुलाइट हो गया, और उसके साथ मिक्स करके आप उसको एक एक बीज को एक एक सेल में लगा सकते हैं। तो इससे जो पौधा तैयार होता है काफ़ी मजबूत होता है, हेल्दी रहता है, और ये आसानी से आप एक जगह से दूसरे जगह इसको परिवहन कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, अगर गेंदा की बात आती है तो ये बीज से हुआ गेंदे का प्रवर्धन, आप जैसे पूर्व में मैं बताया था कि आप उसके ऊपर पोर्शन को काट करके, ऊपर भाग को काट के, टर्मिनल कटिंग जिसको हम बोलते हैं, उससे भी उसका प्रवर्धन कर सकते हैं, और इससे कम समय में आपका पौधा तैयार हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी पौधे स्वस्थ हैं जिनमें किसी प्रकार के कीट एवं बीमारियां ना हो, ऐसे पौधों के ऊपरी भाग को आप 4 से 5 सेंटीमीटर वाले भाग को आप कट करें। कट करने के बाद आजकल हार्मोन्स आते हैं जो जड़ फैलाव को इनहांस करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, तो ऐसे हार्मोन्स IBA या रूटेक्स मार्केट में आपको मिल जाएंगे। तो इन्हें आप उनको बस टच करा के आपके तैयार कोकोपीट या फिर जो भी आपका मीडिया है आप उसमें लगाएं, तो आसानी से आप एक कम समय में आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप खुद के लिए भी कर सकते हैं, और चाहें तो व्यावसायिक रूप से इसकी नर्सरी आप खुद बना के नर्सरी के रूप में आप बेच सकते हैं।
1: जानकारी दे उखाली, बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। साहू जी, आप मन फोन करे हो, आप मन के अंतसले धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: हेलो किसानवाणी।
3: हाँ दीदी, मैं भगत राम पटेल बोला था, सिंगारबाड़ी घुटकू बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले। राम राम।
2: राम राम पटेल जी, कैसे चले थे आप मन के काम बूता?
3: बढ़िया दीदी, ये नदी के जिन मौसम है ना, वहाँ बिल्कुल ऐसे पानी गिरा थे कि हमार काम भी चला थे, और बढ़िया लगातार पानी भी गिरा थे, तो मन जिन्हें बहुत गदगद है दीदी।
2: बढ़िया। आज के जो हेलो किसानवाणी के विषय आप मन ला मालूम हो ही, शीतकालीन पुष्पों की नर्सरी। हाँ, तो अपन लगाते हो का फूल उल अपन बारी बकरी में?
3: अब थोड़ थोड़ खेती सबके करे पड़ते दीदी, एक जन भाई लंग खेती के फूल की खेती करवाथन, एक जन सब्जी खेती करवाथन, और सब बिल्कुल ऐसे है कि लगे हुए काम करा रखन, तो कार्य जिन्हें बढ़िया सुचारू रूप से चलते दीदी।
2: बिल्कुल, अब देखो मौसम का जुड़ा गए है ना, और अब पुष्पों की जिन खेती है देखा जाए तो यही बखत रही थे जिन जड़ पकड़ थे के आप मन तना में लगा थे, कोनो बीज के थरहा लदा डालत हे। ये विषय से जुड़े कुछ सवाल हो ही, शंका
3: हाँ
2: हो ही,
3: दीदी।
2: तिला अपन हमारे विशेषज्ञ मन से पूछ सकते भैया।
3: हाँ दीदी।

0: हमन आज जानना चाहथन कि जेन हमन फूल के खेती करना चाहथन शीतकालीन, तो उनकर जे नर्सरी तैयार करे खातिर हमन ला कोन कोन बात के ध्यान करना है, और ठंड के समय मा कौन सा पुष्प की खेती हम कर सकत जेकर से हमका अच्छा उत्पादन मिल सकत है, एकरे बारे में जानना चाहत रहे दीदी।
1: बिल्कुल, तो विशेषज्ञ मन बतावत है भैया जी।
2: राम राम पटेल जी, जैसे आपने कहा कि कौन से महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें नर्सरी में, तो सबसे पहले है कि हम जो भी बीज खरीद रहे हैं वो बीज एक अच्छी संस्था से खरीदे। दूसरी चीज, जब हम बीज खरीदते हैं तो उसमें ये देखे कि उसमें जर्मिनेशन परसेंट कितना है, मतलब कितना हम बीज लगा रहे हैं तो कितना उगे, उसकी एक्सपायरी डेट कब है, तो उसके हिसाब से हमें उन बीजों को खरीदना चाहिए। दूसरी बात आती है कि हमें सही समय पर रोपण करें। सही समय पर हम नर्सरी तैयार करेंगे तो मार्केट में सबसे पहले हम ये देख लेना चाहिए कि बाजार में कब फूल जो है ज़्यादा बिकता है या ज़्यादा रेट पे बिकता है। जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ या पूरे भारत में जो सामान्य रूप से देखते हैं कि दिवाली के अवसर पर जब फूल का रेट बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप इस तरीके से प्लानिंग करें कि आप नॉर्मल जो सामान्य मौसम है या सामान्य सीजन है उसके विपरीत आप ऐसे समय पे जिस पे फूलों की खेती या फूलों का मूल्य जो है बहुत ज़्यादा रहता है, 150-200 रुपया किलो तक पहुंच जाता है, तो ऐसे आप प्लानिंग करें। ध्यान रखें कि जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तो करीबन 20 से 25 दिन लग जाता है, मोटा मोटा एक महीना, तो उससे पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए एक कि मैं इस दिन लगाऊंगा तो दिवाली इतने दिन है, और गेंदा में जो भी आप वैरायटी किस्म लगाते हैं उसका एक ले लीजिए कि कितने दिन में इसमें फूल आते हैं। सामान्य तौर पर 50 से 60 दिन बाद उसमें अच्छे से फूल आना शुरू हो जाते हैं, और इसकी तोड़ाई आप 3-4 से 5 बार तक गेंदा की कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक प्लानिंग बनाएं ताकि मैं मैक्सिमम रेट पे जाता है उस रेट पे हम बेच सकें। तो ये चीज़ें कि आपको प्लानिंग करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक आपको इनकम हो। उसी प्रकार जब हम आप नर्सरी तैयार करते हैं तो नर्सरी में ये रहता है कि आप अच्छी भुरभुरी, आप चाहें तो पोट्रे नर्सरी का उपयोग कर सकते हैं, या जब हम नर्सरी बेड बनाते हैं तो नर्सरी बेड अच्छी तरीके से ऊंचाई वाली 10 से 15 सेंटीमीटर हाइट वाली बनाए ताकि किसी प्रकार से जल भराव की स्थिति ना हो, बीमारियों का प्रकोप ना हो, कीटों का प्रकोप ना हो। और जब भी आप नर्सरी में सिंचाई करें तो हल्की सिंचाई करें, ज़्यादा जल भराव से बचें। और दूसरी चीज़, जब आप पौधा तैयार करते हैं नर्सरी में और मुख्य खेत में जब प्रतिरोपित करते हैं तो उससे पहले पौधों को हार्डनिंग करना। हार्डनिंग से मतलब यह है कि जैसे हम कहीं बैठे हैं, जैसे एसी रूम में बैठे हैं और सीधे धूप में नहीं जा सकते, उसी प्रकार क्या है, पौधा जो है बहुत नाजुक रहता है, हम उसको सेवा करते हैं, एक अच्छा वातावरण देते हैं और सीधे धूप में जाके लगा देंगे, अगर धूप में जाके लगा देंगे तो वो अपने आप को वो तैयार नहीं कर पा रहा था कि उतने धूप में आप 30-40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आप उसको लगाएं, तो इसलिए उसे हार्डनिंग पहले करना जरूरी है। गेंदा के अलावा आप लगा सकते हो सेवंती, लगा सकते हो ग्लेडुलस, लगा सकते हो चाइना स्टार, लगा सकते हो ना, एकर डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसी तरह के और कुछ सीजनल है जैसे पेंजी है, कैलेंडुला है, एंटी राइनम है, फ्लॉक्स है, कार्नेशन है, स्वीट पे है, एकर आप खेती आसानी से कर सकते हो और अधिक से अधिक मुनाफा पास। और एक बात और शामिल करना चाहूँ, आप सरकार की योजना, विभिन्न प्रकार की योजना चलते हैं, वो योजना के फायदा लेके आप ग्रीन हाउस, पॉली हाउस बना के जो कट फ्लावर जो हमन बोलथन, जैसे गुलाब हो गए, आपके ट्यूब जरबेरा हो गए, आर्किड हो गए, ऐसे फूल आप अगर करो एकर खेती तो आप दूसरे प्रदेश में भी आप आसानी से इसकी मार्केटिंग आप आसानी से कर सकते हैं, और इनका प्राइस और ज़्यादा रहता है। तो आप संबंधित, आपके अगर पास में महाविद्यालय हैं, कृषि महाविद्यालय, उद्यानिकी महाविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र, उनसे भी आप चर्चा कर सकते हैं और तकनीकी जानकारी उनसे ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप चाहें तो उद्यानिकी विभाग से भी आप परामर्श ले सकते हैं।
0: बहुत सुंदर जानकारी दिए डॉक्टर साहब, एक आप मल्ला आकाशवाणी परिवार ला गाड़ा गाड़ा बधाई, जय जोहार, राम राम।
1: राम राम, राम भैया। हेलो किसान वाणी।
3: हेलो आकाशवाणी रायपुर।
1: हाँ हाँ
3: हाँ, मैं पलारी बलौदी राम सागर शुक्ला बोला था।
1: बताओ शुक्ला जी, आज हम मन के जिन विषय है शीतकालीन पुष्पों की नर्सरी।
3: हाँ,
1: तो ये विषय से जुड़े अपन के का जिज्ञासा का समस्या है।
3: अपन बेल के भी पेड़ है उमा बागवानी में, तो बेल पेड़ में ज्यादा मतलब सावन महीना में कीड़ा आ जाते, पत्ता मतलब ज्यादा खाते का कारण?

0: उमा का ठीक न क्या
1: तो एकर समाधान हमर विशेषज्ञ मन बतावत हैं।
2: जैसे शुक्ला जी आपने कहा कि सावन में बेल के पौधे आपके हैं तो उसमें जो पत्ते आ रहे हैं उसमें कीड़ा आ रहा है, तो क्या होता है कि यह भी जो सावन में लगातार बारिश होती है तो ऐसे समय में ना जो बेल जिसको हम भगवान शिव पे भी चढ़ाते हैं तो ये समय पत्ती आने का सबसे उपयुक्त समय रहता है। आप देखेंगे कि छोटे छोटे पत्तियां उसमें आती हैं और कीड़े जब रहते हैं, जब पत्तियां छोटी होती हैं तो उसको खाने के लिए आतुर होती है, मतलब ये उनके लिए उपयुक्त भोजन रहते हैं। तो उन इस कारण और दूसरी चीज मौसम का एक अपना रुझान हो जाता है या एक स्थिति बन जाती है जो कीड़ों के लिए उनके प्रजनन दर को बढ़ाने में सहायता कर, तो जिससे इनकी मात्रा जो है बढ़ जाती है। और चूंकि उनके पास पत्ती के रूप में खाद्य पदार्थ भी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होते हैं ऐसी स्थिति में सावन के मौसम में, तो इसलिए ज़्यादा आक्रामक रूप से हमें या ज़्यादा तादाद में देखने को मिलता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है, 5 ml पर लीटर के हिसाब से आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकती। याद रखिए इसमें ध्यान रखना है आपको 5 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये चीज़ याद रखिए कि जब बारिश का मौसम हो तो उससे बच के रखने, मतलब ऐसे टाइम में बारिश होने की संभावना हो ऐसे टाइम में स्प्रे नहीं करना चाहिए।
0: हाँ, हाँ।
2: जब मौसम खुला हो ऐसे समय में हमें, हाँ। क्योंकि सावन के मौसम में लगातार बारिश होती रहती है, तो इस चीज का आप ध्यान में रखें।
0: हाँ, हाँ। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया बताया आप।
1: हेलो किसान वाणी।
3: हेलो किसान वाणी, नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते, कौन बोला होगा, कहाँ ले?
3: मैं दक्षिण सितारे बिहार के वैशाली जिला से बोला था।
1: हाँ सितारे जी, का पूछना चाहते हो विशेषज्ञ मन ले? पुष्प के बारे में पूछना है यार, शीतकालीन पुष्पों की नर्सरी।
3: जी, फूल लगाना चाहता हूँ, गेंदा का, गुलाब का, उसके नर्सरी कैसे किया जाए?
1: हाँ, तो गुलाब की नर्सरी कौन ढंग से करना है, कैसे करना है, तेला विशेषज्ञ मन बतावत है।
2: राम राम किसान भाई। जैसे आपको गुलाब की, जैसे आपने कहा कि आपको गुलाब की नर्सरी तैयार करनी है, तो गुलाब का जो प्रवर्धन होता है अगर व्यावसायिक रूप से देखें तो हम लोग टी बडिंग बोलते हैं, मतलब आँख के समान जो कली रहता है उससे हम उसका प्रोपोगेशन करते हैं। दूसरी है कि इसमें कटिंग से करते हैं, मतलब 8 से 10 सेंटीमीटर लंबाई के तने का हम उपयोग इसके प्रवर्धन के लिए करते हैं। तो वो सबसे पहले आपको ये चाहिए कि इसके आपको मदर प्लांट खरीदना पड़ेगा या आप कहीं से कटिंग, जहां संबंधित अच्छे संस्थाएं हैं और जो कहीं प्राइवेट नर्सरी हैं, तो ऐसे नर्सरी से आप ऐसे पौधे खरीदें। और इन पौधों का आप अगर व्यावसायिक रूप से करना चाहें तो कटिंग से आप तैयार कर सकते हैं या टी बडिंग से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि गुलाब एक बहुवर्षीय पौधा है, इसकी खेती आप 7 से 8 साल तक लगातार कर सकते हैं। कुछ आपको उचित प्रबंधन करके आप इसमें अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कट फ्लावर के रूप में जाएंगे तो आपको इसके लिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की ओर जाना पड़ेगा, मतलब ग्रीन हाउस पाली हाउस के अंदर इसकी खेती करनी पड़ेगी। और ओपन कंडीशन में, खुले वातावरण में करना है तो लूज फ्लावर का उपयोग आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी संस्था हो या कहीं से आप पौधा तैयार किया है तो आपका बरसात का समय स्टार्ट होता है या ठंड का समय तक आप आसानी से इनकी कटिंग से पौधा तैयार कर सकते हैं या टी बडिंग के द्वारा आप पौधा तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको जब हम कटिंग तैयार करते हैं तो रूट ट्रेनर की आवश्यकता होती है, ये भी मार्केट में आपको कम रेट पे आसानी से मिल जाएगा। और इसके लिए आप नर्सरी तैयार करेंगे तो इसके लिए सॉइल लेस मीडिया, जिसको हम आर्टिफिशियल मीडिया बोलते हैं, मिट्टी रहित मृदा मीडिया माध्यम बोलते हैं, ऐसे माध्यमों का जिसमें कोकोपीट, परलाइट हो गया, वर्मिकुलाइट हो गया, ऐसे माध्यम का उपयोग करके आप कटिंग आसानी से तैयार कर सकते हैं। और ये जो पौधे कटिंग से आप तैयार करेंगे वो कम समय में आपको फूल प्रदान करेंगे।
3: सही सलाह के लिए बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद,
1: धन्यवाद। हेलो किसान वाणी।
4: हाँ दीदी, मोर मैं भरे राम राम।
1: राम राम का कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
4: मैं नवागढ़ कटाई जिले में करत छत्तीसगढ़ ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था। वहाँ दीदी
1: वर्मा जी के बहुत बहुत स्वागत है। बताओ वर्मा जी,
4: हाँ,
1: आज का प्रश्न पूछना चाहते हो हमारे विशेषज्ञ मन ले?
4: हाँ जैसे दीदी, हमन फूल के शीतकालीन फूल के खेती करना चाहता था वहाँ, तो एक नर्सरी प्रबंधन और लगा के विधि और जिसे हमन बीज लेना चाहता, तो यही जम्मू बात बात

0: पिछली बार फोन लगाए हवा दीदी।
1: राम राम। जैसे
0: हाँ,
1: आपने कहा
0: राम राम
1: कि
0: भैया, राम राम।
1: हाँ, नर्सरी तैयार करना है फूलों की ना।
0: हाँ भैया।
1: हाँ, जैसे आपको नर्सरी तैयार करना है, जैसे नर्सरी आप जिस फूल का चाहें उसके हिसाब से आप तैयारी करें। जैसे आज के दौर में या अभी मार्केट के हिसाब से गेंदा की हो गई, आपको वर्बीना की हो गई, चाइना एस्टर की हो गई, डायंथस की हो गई, इनकी कार्नेशन की हो गई, इन कैलेंडुला की हो गई, इसकी नर्सरी आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। जैसे कि नर्सरी हम तैयार करते हैं तो आप नर्सरी खेत में भी तैयार कर सकते हैं और पोटरे में भी तैयार कर सकते हैं। जब हम इनकी नर्सरी तैयार करते हैं तो नर्सरी तैयार करने के लिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम अच्छी किस्म के बीजों का सिलेक्शन करें, और जब भी हम इसका प्रवर्धन करना है, नर्सरी तैयार करना है, उससे पहले इसको किसी फफूंद नाशक से उपचार करें। इसके बाद ही हम इसको चाहे कोकोपीट में हो चाहे जमीन पे हो उस पे हम लगाएं। दूसरी बात यह है, जब जो पौधे कुछ ऐसे बीज होते हैं जो बहुत ही महीन होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनको हमें ज़्यादा गहराई पे नहीं बोना है। उनको हम चाहे तो हम उसको रेत के साथ उसको मिला के उसकी नर्सरी तैयार करें। और जो भी अगर छोटे महीन बीज हैं तो उनको 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में ही उनको लगाना चाहिए। ज़्यादा गहराई पे लगाएंगे तो उसमें जर्मिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, सही तरीके से नहीं हो पाएगी, जिससे पौधा तैयार होने में दिक्कत होगा। और आगे बात करें कि इसके खेती के बारे में, तो आप उचित समय पे सही तरीके से फील्ड तैयार करें, जो मेन आपका खेत है वो तैयार करें, और उस तैयार खेत में जो स्वस्थ पौधे हैं उन्हीं पौधों का प्रतिरोपण करें, जिससे आपको अच्छे से अच्छे पौधा मिले और उससे अच्छी उपज प्राप्त हो सके।
0: ठीक भैया, बहुत सुंदर जानकारी दे डॉक्टर भैया, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, आप मन आज हमारे श्रोता मन की फोन कॉल में आए प्रश्न की, उमन की जिज्ञासा की शंका के समाधान करे हो, अतका उपयोगी जानकारी दे हो कि शीतकालीन पुष्पों की नर्सरी कौन ढंग से कर सकते हैं, ओकर तैयारी कैसे होना चाहिए, सही बेरा का है, कौन कौन बात के ध्यान रखना चाहिए, संगे संग पौधों में जिन हार्डनिंग का होते ओकर पोर्ट नर्सरी हम कैसे बना सकते हैं, ये जम्मो जानकारी आप मन हमर संगवारी मन ला देव, एकर खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद। राम राम।

0: संगवारी हो, अभी सुनत रहिन फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। आज के विषय रहिस पुष्पों की नर्सरी। आप मन के सवाल के जवाब देवत रहिन है डॉक्टर मुकेश कुमार साहू, वैज्ञानिक पुष्प विज्ञान महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग।
1: संचालन करत रहिन निधि शर्मा और प्रस्तुत करता रहिन शशि प्रकाश पांडे।

0: हम है भारत के किसान हम,
1: किसान हम,
2: किसान हम।
3: निधि अब अब रहे कृषक प्रश्न मंच में आज के प्रश्न पूछे के तो बता देव संगवारी मल्ला आज के हमार प्रश्न है जैविक खेती में कौन कौन से खाद डाले जा सकते। संगवारी हो प्रश्न एक बार और सुन लेवा, जैविक खेती करे में कौन कौन से खाद डाले जा सकते। ये प्रश्न के जवाब हमार तीर एक हफ्ते के भीतर मेल के माध्यम ले पहुंच जाना चाहिए। मेल भेजे पर हमार ईमेल पता लिख लेवा, हमार पता है संगवारी हो राय आज के प्रश्न 23@gmail.com।
4: निर्मल भैया, पांचवा हफ्ता की हमारे प्रश्न रही से वर्षा के मौसम में पशुधन में

0: कौन कौन से रोग बीमारी होते? एकर सही जवाब आए थाइलेरिया खुरहा चपका रोग मन होते। और ये प्रश्न के सही जवाब में हमर तीर मेल आए है, ये संगवारी मन के,
1: ये संगवारी मन निधि गांव तेंदु भाटा मगरलोड जिला धमतरी ले उमेन कुमार निषाद महेश्वरी देविका पोषण शिवा भूपेश दिव्यांश निषाद
0: सिंगारबाड़ी गुटकुले भगत राम पटेल सोनम मानवी पटेल मन
1: लोरमी ग्राम चचेड़ी ले कमलकांत मरावी प्रमिला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी
0: मदनपुर।

0: सोनम मानवी पटेल मन
1: लोरमी ग्राम चचेड़ीले कमल कांत मरावी प्रमिला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी
0: मदनपुर कवर्धाले श्रवण कुमार साहू योगेश साहू राहुल साहू मन
1: बठेना पाटन जिला दुरुगले बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा रेखा पार्थ कश्यप
0: गर्रापार बांधा बाजार ले गंगाराम साहू सुलोचना मानवेंद्र और राकेश साहू मन
1: धमधा ग्राम सुखरी कला ले अमित जंघेल शकुन जंघेल आरुषि ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल
0: परसा टोला अंबाकर चौकी ले है ओम प्रकाश मसिया सिलोचनी तुषारनी खुमेंद्र मसिया मन है
1: त सही जवाब भैया जम्मू संगवारी मल्ला हमार कुतिले कोरी कोरी बधाई आज के कृषक मंच बस इहे तक।
0: मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर ले मिले जानकारी के अनुसार काली प्रदेश के कतको जगह में हल्का मध्यम बारिश होए के संभावना है। कल चेतावनी दी गई है कि एक दो जगह में भारी वर्षा और गरज चमक के संग में वज्रपात हो सकत है। अवैया दो दिन तक मौसम ऐसने बने रही और हल्का ले मध्यम वर्षा होए के संभावना रही। ये रही किसानवाणी प्रायोजक रही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अब बता दे संगवारी मल्ला काली के कार्यक्रम काली के चौपाल माँ गोठबास संघ आज के किसान में भेंट हुई ओम प्रकाश सेन गांव निशदा आरंग जिला रायपुर ले संघ में गीत संगीत और कृषक प्रश्न मंच तो होबेज करी तो संगवारी हो चलन अब देवा विदा जम्मू संगवारी मल्ला निर्मल साहू
0: और निधि शर्मा के
1: राम राम, राम।

अभी किसानवाणी कार्यक्रम रायपुर से रिले किया जा रहा था। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुनीता राव के गायक कुछ गीत।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का सुगम संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आइए उमाशंकर पांडे जी से सुनते हैं साइबर जागृति पर जानकारी।
1: नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमाशंकर पांडे। लीजिए सुनिए साइबर जागृति अभियान आधारित आवश्यक चेतावनी। आज विज्ञान के युग में मोबाइल फोन, नेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि बहुत ही उपयोगी हैं, किंतु तब जब हम सभी पूरी तरह चैतन्य रहे, सजग रहे। जैसे छात्राओं और महिलाओं से अनुरोध है, अपने स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की प्राइवेसी सेटिंग मजबूत रखें, गुप्त रखें, अनजान लिंक से बचकर रहे, फर्जी वेबसाइट से सतर्क रहे। अनजान महिला या पुरुष के फ्रेंड रिक्वेस्ट पर 100 बार विचार करें, तभी कदम आगे बढ़ाएं। किसी की मीठी और अपनत्व भरी बातों पर और उनके सलाह पर सहज विश्वास न करें, क्योंकि साइबर के अपराधी उल्लू हर शाख पर बैठे हैं। स्वयं बचकर रहें और को भी इससे बचाएं। और किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या आने पर डायल 1930 पर तत्काल कॉल करें। जनित मिश्रदेव, बिलासपुर पुलिस, छत्तीसगढ़।

मिलकर साथ में सबको, हर किसी को साथ लाना है, सभी अपराधों को खत्म करने को, बस हमें चेतना जगाना है। महिलाओं पर अत्याचार और बाल मजदूरी, ये सब बस बन जाए इतिहास। नशे की लत और सड़क दुर्घटनाओं से ना हो अब किसी जीवन का नाश।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का स्वागत है। आप सभी को ऐश्वर्य का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कुछ लोग शब्दों से इतिहास रचते हैं तो कुछ अपने अभिनय से यादों का संसार बना जाते हैं। आज का रजनीगंधा ऐसी ही दो महान हस्तियों को समर्पित है, गीतों को कविता का स्पर्श देने वाले गुलजार साहब और अपने सहज एवं जीवंत अभिनय से हर किरदार में जान फूंक देने वाली अरुणा रानी जी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये संगीतमय सफर गुलजार साहब की रचनात्मक दुनिया से। गुलजार एक नाम नहीं बल्कि एहसासों की पूरी एक दुनिया है। उनका जन्म 18 अगस्त 1934 को वर्तमान पाकिस्तान के झेलम जिले की दीना कस्बे में हुआ। विभाजन के बाद वे भारत आए। जीवन की कठिन परिस्थितियों से उन्होंने कई छोटे बड़े काम किए, लेकिन शब्दों से उनका रिश्ता कभी नहीं टूटा।

0: धीरे धीरे उनकी लेखनी ने हिंदी फिल्म संगीत को एक नई पहचान दी। उन्होंने ऐसे गीत लिखे जो समय के साथ और भी गहरे होते चले गए। गुलजार साहब कहा करते हैं, शब्द अगर दिल से निकले तो सीधे दूसरे दिल तक पहुंचते हैं, और शायद यही कारण है कि उनके गीत सुनते समय ऐसा लगता है जैसे कोई हमारी अपनी ही बात कह रहा हो। उनकी रचनाओं में प्रकृति भी है, प्रेम भी है, विरह भी है और उम्मीद भी, उजली किरण भी। श्रोताओं, सन 1975 में आई फिल्म आंधी का ये गीत प्रेम की परिपक्वता और रिश्तों की गहराई को बेहद खूबसूरती से व्यक्त करता है।
1: बरसों बाद निकली हूं, ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं।

श्रोताओं, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो केवल सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। जैसे कि तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ये गीत उन्हीं गीतों में से एक है। श्रोताओं, गुलजार साहब की विशेषता यही है कि वे प्रेम को शोर नहीं बनने देते, बल्कि उसे खामोशी की भाषा में व्यक्त करते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए भी यादगार गीत लिखे, युवाओं के लिए भी, और जीवन के हर पड़ाव को शब्द दिए। एक बार गुलजार साहब से किसी ने पूछा कि आप इतने अलग अलग और नए शब्द कहाँ से लाते हैं, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, शब्द कहीं बाहर से नहीं मिलते, वे लोगों की जिंदगी में छिपे होते हैं, बस उन्हें ध्यान से सुनना पड़ता है। यही सुनने और महसूस करने की कला उन्हें सबसे अलग बनाती है। श्रोताओं, आप सुनते हैं मासूम फिल्म का एक ऐसा गीत जिसने लाखों लोगों की आंखें नम कर दी। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी ऐसे पल आते हैं जब ये गीत उनके मन की आवाज़ बन जाते हैं।

जिंदगी से शिकायत भी है और उसी से प्यार भी। गुलजार साहब की इसी द्वंद और संवेदनाओं को लता जी की आवाज ने लाखों लोगों की आंखों को नम कर दिया था। राष्ट्रीय पुरस्कारों से लेकर आस्कर और ग्रेमी सम्मान तक का सफर तय करने वाले गुलजार आज भी उतनी ही सादगी से लिखते हैं जितनी सादगी से जीते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर से कार्यक्रम रजनीगंधा ऐश्वर्य के साथ। आज का ये कार्यक्रम गीतकार, कवि और निर्देशक गुलजार तथा हिंदी सिनेमा की बहुमुखी अभिनेत्री अरुणा रानी के जन्मदिन पर आधारित है। श्रोताओं, भारतीय सिनेमा में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका चेहरा पर्दे पर आते ही दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरुणा ईरानी भी उन्हीं कलाकारों में से एक हैं। उन्होंने कभी चुलबुली सहेली बनकर दिल जीता, तो कभी दमदार चरित्र अभिनेत्री के रूप में, तो कभी माँ की भूमिका निभाकर दर्शकों को भावुक कर दिया। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता रही है कि उन्होंने कभी किसी एक छवि में बंधना स्वीकार नहीं किया। श्रोताओं, अरुणा ईरानी का जन्म 18 अगस्त 1946 को मुंबई में हुआ। फिल्मी माहौल में पली बढ़ी अरुणा जी ने बहुत कम उम्र में अभिनय शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में छोटे छोटे किरदार निभाए, लेकिन अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर वे हिंदी सिनेमा की सबसे व्यस्त अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं। 300 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कॉमेडी, नृत्य, पारिवारिक, सामाजिक और गंभीर हर तरह की भूमिकाओं में अपनी अलग पहचान बनाई। एक बार एक निर्देशक ने उनसे पूछा, आप हर तरह का किरदार इतनी सहजता से कैसे निभा लेती हैं? तो अरुणा ईरानी का जवाब था, मैं अभिनय नहीं करती, मैं उस किरदार को जीने की कोशिश करती हूँ। यही वजह है कि उनके निभाए पात्र आज भी दर्शकों की स्मृतियों में जीवित हैं। आइए अब सुनते हैं वर्ष 1971 की सुपरहिट फिल्म कारवां का एक ऐसा गीत जिसने उस दौर में धूम मचा दी थी और वो आज भी उतना ही लोकप्रिय है।

वाह, आज भी ये गीत सुनते ही बरबस होंठों पर मुस्कान आ जाती है। अरुणा ईरानी की ऊर्जा, उनकी लय और सहज अभिनय ने इस गीत को यादगार बना दिया। वो उन कलाकारों में हैं जिन्होंने नायक नायिका से इतर भूमिकाओं को भी दर्शकों के बीच में लोकप्रिय बनाया। श्रोताओं, अब जरा फिर लौटते हैं गुलजार साहब की उस दुनिया में जहाँ शब्द केवल लिखे नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। उनकी कविता में अक्सर चांद, बारिश, धूप, खिड़कियां, हवा और खामोशियां भी बोलती हुई प्रतीत होती हैं। गुलजार साहब की शैली से प्रेरित दो पंक्तियां पेश हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस मंजिलें अपना पता बदल लेती हैं। चलते रहिए, शायद अगला मोड़ किसी नई खुशी का इंतजार कर रहा हो। और अब सुनिए गुलजार साहब की लिखनी का एक और अनमोल रत्न, फिल्म इजाजत का ये गीत बिछड़ते रिश्तों की टीस और यादों की नमी को बेहद खूबसूरती से व्यक्त करता है आशा भोसले की आवाज़ में।

कितनी अद्भुत कल्पना, यादों को समान का रूप देकर गुलजार साहब ने भावनाओं को शब्दों में पिरो दिया, यही उनकी रचनात्मकता की पहचान है। श्रोताओं, बहुत कम लोग जानते हैं कि गुलजार साहब केवल गीतकार ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील निर्देशक भी हैं। आंधी, कोशिश, मौसम, अंगूर, इजाजत जैसी फिल्मों के माध्यम से उन्होंने रिश्तों, समाज और मानवीय संवेदनाओं को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उनकी फिल्मों में शोर नहीं बल्कि जीवन की धीमी गहरी धड़कन सुनाई देती है। उन्होंने कभी दोस्तों समय बदलता है, पीढ़ियां बदलती हैं, लेकिन कुछ रचनाएं और कुछ कलाकार कभी पुराने नहीं होते। वे हर दौर में नए लगते हैं क्योंकि उनकी कला इंसान के दिल से जुड़ी होती है। कहा जाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। गुलजार साहब ने संघर्षों के बीच अपने सपनों को शब्द दिए और अरुणा ईरानी ने छोटी छोटी भूमिकाओं से शुरुआत करके भारतीय सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में अपना स्थान बनाया। दोनों की यात्रा हमें यही सिखाती है कि प्रतिभा तभी चमकती है जब उनके साथ निरंतर परिश्रम और विनम्रता जुड़ी हो। आकाशवाणी परिवार की ओर से गुलजार साहब और अरुणा ईरानी जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर सृजनशील जीवन की मंगल कामना करते हैं। फन की रोशनी कभी बुझती नहीं, वक्त की आंधियां भी उसे मिटा नहीं पाती। जो दिलों में उतर जाए अपने हुनर से, वो उम्र भर तालियों में मुस्कुराता रहता है। श्रोताओं, गुलजार की लेखनी का एक ऐसा कि जो समय की नश्वरता और जीवन के अनमोल पलों का संदेश देता है, उसे प्रेम, विश्वास और मुस्कान के साथ जीना ही सबसे बड़ी कला है। शायद यही संदेश गुलजार साहब अपने गीतों के माध्यम से हमें देते हैं।

0: जी हाँ श्रोताओं, गुलजार साहब के इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की रजनीगंधा कार्यक्रम से अपनी रेडियो दोस्त ऐश्वर्य को दे अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: यादें याद आती, ये यादें।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का
0: का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले। दे दिया।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमरीका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। गोल में भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 372 रन का लक्ष्य दिया। मेजबान टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बनाए। और भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता

0: दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की चार प्राथमिकताओं को रेखांकित किया: टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदा से उबरने की क्षमता विकसित करना, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अभियान युवा ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनकी भावी उद्यमशीलता की यात्रा सुगम होगी। आज समाप्त हुए 2 दिन के सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के नेतृत्वकर्ता एक साथ आए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख प्राथमिकताओं, उभरते अवसरों और बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य पर विचार विमर्श किया गया। इस बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB ने पिछले एक साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने बताया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण सुविधा का विस्तार करके और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना जारी रखा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है। भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। श्री जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है।
3: जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए, उसके अलावे बहुत लोगों को इंजरीज भी आई हैं, और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है। और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडैरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल

0: में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और सीबीआई के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जाँच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। शीर्ष अदालत कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। मतदाताओं के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए 1 महीने का समय होगा। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि कम समय में पश्चिम बंगाल के विकास की नई नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज का आकलन जनता करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों को आदेश दिया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार से मिलवाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। ईरान ने दोहराया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य समुद्र यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमरीका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट।
2: ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए होर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना नाकेबंदी की समाप्ति, सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ईरान के साथ कोई वार्ता नियोजित नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने फलस्तीन के विदेश मंत्री और प्रवासी मामलों के मंत्री वारसेन अघा बेकियन शाहीन से मुलाकात की। फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत फलस्तीन द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इनमें विकास सहयोग से जुड़ी विभिन्न परियोजनाएं भी शामिल हैं। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372

0: रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत है, जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं लक्ष्य सेन और उन्नति हुडा ने सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में भारत के लिए नवनीत कौर, सुनेलिता तोपो, सुशीला चानू, दीपिका लाल रिमस्यामी और साक्षी राणा ने गोल दागे। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। वहीं एक बहुप्रतीक्षित मुकाबले में कल अम्स्टरडैम में भारतीय पुरुष टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक

0: से होगा। वहीं एक बहु प्रशिक्षित मुकाबले में कल अम्स्टरफेन में भारतीय पुरुष टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़क कर 24,155 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम और माहे, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में कल बादल गरजने तथा बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दक्षिणी आंध्र कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. BRICS nations reaffirm commitment to environmental protection and sustainable development. New Delhi stresses environmental action must address needs of developing countries. India says credibility of country's election machinery well established globally as US President Donald Trump praises poll system. Supreme Court to form high-powered panel to probe allegations of police excesses and violence against security personnel during Delhi students' protests. Pakistan's top court orders transfer of jailed former Prime Minister Imran Khan to hospital for medical examination. Iran reiterates Strait of Hormuz to remain closed till all its conditions agreed with US are fully met. In men's cricket, India tightened grip on Gal test against Sri Lanka on day 4, host reel at 84 for 4 at stumps chasing a 372-run target. And Indian women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand advanced to pre-quarterfinals of Badminton World Championships in New Delhi. And now the news in detail. BRICS nations today reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today said that BRICS nations also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations Framework Convention on Climate Change, and its Paris Agreement. The countries emphasized that enhanced international cooperation, including availability of finance from developed countries, is essential to enable developing countries to effectively address environmental and climate challenges, while advancing sustainable development and poverty eradication. India is chairing BRICS this year with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The BRICS ministers also expressed their appreciation for India's leadership in advancing the circular economy as an enabler of sustainable development. Earlier, speaking at the meeting, Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupinder Yadav, emphasized that environmental action must remain

0: माँ का घर था जहाँ बिजली भी नहीं थी। सुबह 6 बजे से उनके घर में वो रेडियो शुरू हो जाता था। एक वक्त ऐसा आया कि वो रेडियो जब खराब हुआ तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया।
1: एक कहानी जिसमें है संघर्ष और जिद।
0: राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा ये है कि पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती।
1: अभिनेता आलोक गागडेकर, बॉम्बे टॉकीज, 22 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए आशा भोसले की आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी। फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी।
3: अरे अरे अरे रुक जाओ ना जी, ऐसी क्या जल्दी

साथियों, अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज में वो नगमा जिसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत था सचिन देव बर्मन का। फिल्म का नाम था चलती का नाम गाड़ी। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, तर्ज है शंकर जयकिशन की। फिल्म का नाम है असली नकली।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना दिना दिना।
3: कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं आशा भोसले मन्नाडे और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है श्री 420।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगी। हाँ हाँ।

परीक्षा दी और फिर उनकी छुट्टियां शुरू हुई तो इस दौरान उन्होंने शौक शौक में एक नेपाली फिल्म में काम किया। इस फिल्म का नाम था फिरी भेटौला। ये साल 1989 की बात है। मजेदार बात यह है कि तब तक मनीषा का फिल्मों में जाने का कोई इरादा नहीं था। वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी। इस सपने को लेकर वो आ गई दिल्ली और उन्होंने धौला कुआं के आर्मी पब्लिक स्कूल में दाखिला ले लिया। जब तक मनीषा बनारस में थी वो अपने रिश्तेदारों के साथ रह रही थी, पर दिल्ली में अकेले रहने की वजह से वो काफी मजबूत और आत्मनिर्भर बन गई। उनके भीतर का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया।

0: अजीब इत्तेफाक हुआ। यहाँ उन्हें मॉडलिंग के असाइनमेंट मिलने लगे और इस तरह अभिनय की लौ उनके भीतर जल उठी। बस फिर क्या था, उन्होंने सोचा कि उस शहर चलें जो अभिनय का गढ़ है। वो चली आई समंदर के किनारे वाले शहर यानी माया नगरी मुंबई में।
1: ये

मुंबई में अपने हिस्से का संघर्ष करने के बाद मनीषा कोइराला को आखिरकार एक बड़ा मौका तब मिला जब जाने माने निर्देशक शोमैन सुभाष घई ने उन्हें अपनी फिल्म सौदागर के लिए साइन किया। पूरे फिल्म उद्योग में सनसनी सी फैल गई कि नेपाल से आई एक नई अभिनेत्री सुभाष घई जैसे बड़े निर्देशक की निगहवारी में फिल्मों में काम कर रही है। इस फिल्म में काम करना उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि सुभाष घई अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार को एक साथ लेकर आ रहे थे। इतने विराट अभिनेताओं के बीच अपनी पहचान बनाने की चुनौती थी मनीषा के सामने।

इसके बाद 1992 में आई फिल्म यलगार। इसके बाद आई फिल्म अनमोल और धनवान, जो कोई खास कमाल न कर सकी फिल्मी पर्दे पर। ऐसा लगा मानो मनीषा कोइराला समय की धुंध में खो जाएंगी। इसी बीच निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के लिए चुना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित इस फिल्म में उन्होंने रज्जू का किरदार निभाया। मनीषा कोइराला के सामने अपने आप को साबित करने की बड़ी चुनौती थी। ये वो दौर था जब पहले स्क्रीन टेस्ट के बाद विधु विनोद चोपड़ा ने कहा, मनीषा पूरी तरह से गैर अभिनेत्री हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें मनीषा की प्रतिभा पर यकीन हो गया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर्स के फिल्म फेयर पुरस्कार का नामांकन भी मिला।

1995 में मनीषा कोइराला ने मणिरत्नम के साथ फिल्म बॉम्बे में काम किया। उनके हीरो थे अरविंद स्वामी। इस फिल्म के लिए मनीषा कोइराला को मिला फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड।

इसके बाद सन 1995 में आई फिल्म अकेले हम अकेले तुम, जिसमें उनके हीरो थे आमिर खान। एक बार फिर उन्हें मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन।

सन 1996 में मनीषा कोइराला ने फिल्म मझधार में काम किया, जिसमें हीरो थे सलमान खान। सन 1996 में ही शंकर की फिल्म आई हिंदुस्तानी, जिसमें नजर आई मनीषा कोइराला। साल 1996 उनके लिए एक सुनहरा साल बन गया, जब आई संजय लीला भंसाली की निर्देशित फिल्म खामोशी द म्यूजिकल।

इस फिल्म में मनीषा ने मूक बधिर माता पिता की एक संवेदनशील बेटी का किरदार निभाया था। इस फिल्म में हीरो थे सलमान खान। ये फिल्म मनीषा कोइराला के फिल्मी किताब में सुनहरे पन्नों की तरह दर्ज हो गई। वे टॉप लीडिंग हीरोइन बन गई।

0: इस फिल्म में उनके अभिनय की बड़ी सराहना हुई। अपने मूक बधिर माता पिता के साथ उन्होंने अपने आँखों से अभिनय किया, उनके चेहरे के जज्बात संवाद बोलते नजर आए।
1: ये

सन 1998 में एक बार फिर उन्होंने मणि रत्नम के साथ काम किया। इस बार आई फिल्म दिल से, जिसमें हीरो थे शाहरुख खान। ये फिल्म उनके अभिनय की ऊंचाई थी। उनकी बोलती आंखें, उनकी मुस्कुराहट, उनके चेहरे की उदासी ने दर्शकों के दिल को छुआ।

0: बुझाए न बने, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब।
1: सन 1999 में आई फिल्म कच्चे धागे और फिर आई इंद्र कुमार की फिल्म

जिसमें उनके अभिनय की खूब सराहना हुई। सन 2001 में मनीषा कोइराला ने राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा में काम किया। इस फिल्म में रेखा, माधुरी दीक्षित

0: साल 2002 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी, साल 2003 में आई जयप्रकाश निर्देशित फिल्म मार्केट, साल 2005 अकबर खान की फिल्म आई ताजमहल, जिसमें मनीषा कोइराला ने जहां आरा का किरदार निभाया।
1: हर एक दिल यहां एक दिल तलाश करता है, वफा की, प्यार की मंजिल तलाश करता है। यहाँ परवाने शमा से करीब होते हैं, हसीन नजरों पे शहजादे शहीद होते हैं। यहाँ दिल लेने देने की अदा भी खातिर है, यहाँ के वादे बहुत दिल नशील होते हैं। जो बेकरार करे वो करार कहते हैं, इस बाजार को मीना बाजार कहते हैं।
0: साल 2007 में मनीषा कोइराला ने मनीष झा की फिल्म अनवर में काम किया। ये फिल्म हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रियंवत की कहानी पर आधारित थी। साल 2005 में संगीतम श्रीनिवास राव की फिल्म मुंबई एक्सप्रेस आई, जिसमें हीरो थे कमल हसन। अभिनेता इरफान खान के साथ मनीषा की एक फिल्म आई थी तुलसी मातृदेव भव, साल 2008 में फिल्म आई सिर्फ। साल 2008 में ही उन्होंने जाने माने निर्देशक ऋतुपर्ण घोष के साथ बंगला फिल्म में काम किया, फिल्म थी खेला। साल 2009 में दीप्ति नवल के निर्देशित फिल्म आई दो पैसे की धूप चार आने की बारिश। इस फिल्म में मनीषा कोइराला के अभिनय की बहुत प्रशंसा की गई। सन 2010 में मलयालम फिल्म आई इलेक्ट्रा, सन 2010 में नेपाली फिल्म धर्म आई, सन 2012 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म आई भूत रिटर्न। इसके बाद उन्होंने डियर माया फिल्म में काम किया। ओटीटी के लिए मनीषा कोइराला ने सीरीज लस्ट स्टोरीज में अभिनय किया। साल 2018 में राजकुमार हिरानी की फिल्म आई संजू, संजय दत्त की मां बनी मनीषा कोइराला ने अभिनेत्री नरगिस का किरदार निभाया था।

2000 में टीवी शो सवाल 10 करोड़ का, साल 2019 में फिल्म आई प्रस्थानम, साल 2023 में मनीषा कोइराला की फिल्म आई शहजादा।

नवंबर 2012 में मनीषा कोइराला को ओवेरियन कैंसर हो गया। इस बीमारी से वे हार नहीं मानी, उन्होंने बाकायदा इलाज करवाया और इस बीमारी से वे विजेता बनकर निकले।

मनीषा कोइराला के अभिनय सफर को केवल उनकी खूबसूरती से जोड़कर देखना उनके व्यक्तित्व के साथ नाइंसाफी होगी। मनीषा कोइराला का किरदार और उनका योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने समाज सेवा का भी काम किया। महिलाओं के अधिकारों के लिए वे लगातार लड़ती रही हैं। वे यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की गुडविल एम्बेसडर भी रही हैं। इन दिनों मनीषा

उइराला मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्पतालों, स्कूलों और सामाजिक संस्थाओं में भाषण देकर वे लोगों को प्रेरणा देती हैं। समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं वे।

सन 2015 में नेपाल भूकंप में राहत और सहायता का भी काम उन्होंने किया। वे एक किताब की सहलेखिका भी हैं, जिसका नाम है हील द स्टोरी ऑफ हर बैटल अगेंस्ट ओवेरियन कैंसर।

हाल ही में मनीषा कोइराला ने संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में मल्लिका जान की भूमिका निभाई है। इस वेब सीरीज में उन्होंने अपने अभिनय से मल्लिका जान के किरदार को जीवंत कर दिया।

हाल ही में मनीषा कोइराला ने संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में मल्लिका जान की भूमिका निभाई है। इस वेब सीरीज में उन्होंने अपने अभिनय से मल्लिका जान के किरदार को जीवंत कर दिया। इस वेब सीरीज की दर्शकों ने तो सराहना की ही, साथ ही साथ फिल्मी दुनिया के कई मशहूर सितारों ने भी मनीषा के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा की। मनीषा कोइराला की फिल्मी यात्रा आज भी जारी है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी अदाकारा मनीषा कोइराला पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। उनकी पहली नजर ने दिखाया जादू, फूलों का शामियाना बनाने को दिल मचल उठा, आसमान में सैर करने के लिए उड़ चला दिल। हर मौसम में दिल को नजर आया बोगनबिलिया का रानी गुलाबी रंग, हर हर्फ मोहब्बत का लफ्ज बन गया। न जाने क्या हुआ दिल को कि वो एक जिद्दी बच्चा बन गया। जमीन से आसमान की सैर करने पर लगेगी चोट, ये भूल गया दिल। उनकी पहली नजर ने दिखाया जादू कि दिल ने कहा मानना छोड़ दिया।

कोयल ने जब बागों में गाया गीत, जब पहाड़ों पर गिरी बर्फ, जब सर्दी में ओस की बूंदें सुबह के सूरज की किरणों का साथ पाकर मुस्कुराईं, जब क्यारियों में नए अंकुर फूटे, जब खिला गुलाबी फूल, तब तब उसकी यादों की आमद हुई, तब तब उसके मुस्कुराते होठ गुनगुनाए मोहब्बत के नगमे, तब तब नदी के दो किनारे एक साथ चलने को आतुर हो उठे।

उसकी हर अदा पर दिल कुर्बान हुआ। उसकी दिल फरेब नजरों ने जो जादू फेरा तो उस जादू का असर जिंदगी के हर लम्हे में तारी रहा। कौन कहे कि चुपके चुपके यूं दिल पर जादू चलाना ठीक नहीं।

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। उसकी मीठी मोहक बातों ने दिल पर कब्जा कर लिया, छोटा सा दिल, भला उसे क्या पता कि मोहब्बत की राहों में फूल संग कांटे भी होते हैं। मासूम दिल भला कांटों में उलझने से कहां डरता है। जादू भरी नजर ने ऐसे इशारे किए कि दिल चल पड़ा उस राह पर जहां से जुड़ती थी उसकी राहें। उसकी मोहब्बत की पुकार पर दिल को रोकना मुश्किल हो गया, उसका साथ जिंदगी का गीत बन गया।

भूलती नहीं वो आंखें जिनमें खुद के लिए प्यार का सागर था। उसने पलकें उठाई तो मोती झरे ऐसे समंदर की लहरों ने कई सीपियां एक साथ सौंप दी हों जैसे। उसकी पलकें झपकाने से नदी ने ठिठक कर देखा, झरने अपने रवानी में गुनगुना उठे। उससे मुलाकात क्या हुई, जीने का मकसद मिल गया।

ख्वाबों में तब्दील हसीन लम्हों को खोजता है दिल, शिकवे शिकायतों से लवरेज वो लम्हे गुम हो गए जिंदगी की जद्दोजहद में। वक्त उंगली छुड़ाकर दूर भागता रहा, हम वक्त का पीछा करते रहे, हसरतों की डोर पकड़कर दिल तेज रफ्तार गाड़ी की तरह भागता रहा जिंदगी की राहों पर।

0: मर जाएगी।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक फॉरगिव गिविंग बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को। वैसे मेरे अंदर बहुत वो वाली क्वालिटी नहीं है, ये मुझे ये पसंद नहीं है कि ये वही वही कुर्ते पहन के आ जाते हैं। यशपाल तुमको कौन सा रंग पसंद है?
3: जो कुर्ता हमेशा पहनता हूँ।
1: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: अभी विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जा रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में समाचारों के लिए हम जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
2: The impact of climate change,
3: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
1: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी